महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म उपकार से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, सुख में तो हर कोई साथ होता है, पर व्यक्ति तो वो है जो दुख के समय भी काम आए। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म गोपी से ये गीत।

0: दोस्तों, उतार चढ़ाव तो इस सफर का हिस्सा है। कभी रास्ता मखमली होता है तो कभी कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ, पर असली मजा तो इस सफर को तय करने में है। तो उठिए, मुस्कुराइए और एक नए हौसले के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि चलती का नाम ही जिंदगी है।
1: बम बम मकाब, बम बम मकाब, बम बम मकाब, बम बम मकाब, बम बम कक कक, अरे बम बम कक कक।

किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म चलती का नाम जिंदगी से आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का।

गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आज सवेरे का।

ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि

महात्मा गांधी का कथन है कि आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाती है, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

तिमिर गया रवि देखते, घुमते गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। कबीर दास जी ने बताया है कि अभिमान मनुष्य के सभी गुणों का नाश कर उसे ईश्वर से दूर कर देता है। वो कहते हैं कि अंधकार सूर्य को देखते ही गायब हो जाता है, यानी सूर्योदय होते ही अंधकार खत्म हो जाता है। उसी प्रकार गुरु के ज्ञान और शिक्षा से कुमति यानी कुबुद्धि नष्ट हो जाती है।

परमहंस योगानंद ईश्वर के प्रति समर्पण के विषय में कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे हाथ और पैर आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने मुझे इस दुनिया में निभाने के लिए एक निश्चित भूमिका दी है और मैं इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपके लिए है। खुद को भगवान के हवाले कर दें और आप पाएंगे कि आपका जीवन एक खूबसूरत धुन की तरह बन जाएगा। अगर आप सब कुछ भगवान की चेतना में करने की कोशिश करेंगे तो आप खुशी से देखेंगे कि हर दिन वो आपके लिए कुछ खास कर्तव्य चुन रहे हैं।

राम नाम का आश्रय ले बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं, अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों परमार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ जाना चाहते हैं। भाव ये है कि जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता, वैसे ही राम नाम के बिना कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता।

संत रूमी ने कहा है कि तुम्हारी आत्मा के भीतर एक जीवन शक्ति है, उस जीवन शक्ति की तलाश करो। हे यात्री, यदि तुम उसके तलाश में हो तो बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो और उसे खोजो।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,2000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 30 परम विशिष्ट सेवा पदकानि, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 50 अतिविशिष्ट सेवा पदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 दिनांके राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेष् उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50वें वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय, जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रिय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतत् उपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते, अन्येषु राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेश प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं, देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायां असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असमराज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्रीचौहानः श्वः अरुणाचलप्रदेशस्य जलप्लावितक्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां, कृषिक्षेत्राणां, सहायोद्धारशिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण, भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमाणस्य 57-दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रामार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने

चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। जैसे पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, और पैसा न हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में दोस्ती न हो तो जीवन बेकार है। गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, सुप्रभात। 7:11 और 24 सेकेंड। आइए प्रोग्राम का पहला सॉन्ग सुनते हैं आन मिलो सजना फिल्म से।

आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा। सूर्य उदय हुआ 5:26 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:23।

एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दे दें। 8:45 से आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। 10:30 पर कार्यक्रम होगा दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर घूमने चलेंगे सोनभद्र उत्तर प्रदेश, प्रोग्राम तस्वीर में। 1:10 पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल। 3:10 पर सुनेंगे आप प्रोग्राम मन भावन। और शाम 5:10 पर प्रोग्राम होगा गाते गुनगुनाते।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और हर सुबह हमारे जीवन में लेकर आती है एक नई आशा और उम्मीद की एक नई किरण। इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आइए शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे की, जो रोज सुबह ताजा तरीन खबरों के साथ आपको देता है वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं सर फिरोजी और मेरे साथ हैं वीसी प्रमोद। गुड मॉर्निंग प्रमोद।
1: गुड मॉर्निंग सर फिरोजी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयरिन वी गिव इन द लेटेस्ट इन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे। That is the 30th of June.
0: तो सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं वीसी प्रमोद।
1: बिल्कुल।
0: सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ता को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है।
1: द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी अनाउंस्ड इन द असेंबली दैट अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द बिल विल बी प्रेजेंटेड एट द शेड्यूल्ड स्टेट कैबिनेट मीटिंग ऑन द 2nd ऑफ जुलाई। Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Deshai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks.
0: केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा।
1: एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान विल बी ऑन अ 2-डे विजिट टू द नॉर्थ ईस्ट बिगिनिंग टुडे। मिस्टर चौहान विल होल्ड अ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग इन गुवाहाटी असम। द मीटिंग विल रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स ऑन क्रॉप्स, विलेजेस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन असम एंड एडजॉइनिंग एरियाज, असेस द प्रोग्रेस ऑफ ऑनगोइंग रिलीफ ऑपरेशंस एंड डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स फॉर फर्दर असिस्टेंस एंड इंटरवेंशन।
0: झारखंड में हर साल 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस आदिवासी क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान

0: दान की याद में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: द गोवा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्टेट वाइड बैनियन ट्री प्लांटेशन कैंपेन टू प्रमोट बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इनॉगरेटेड द ड्राइव बाय प्लांटिंग अ बैनियन सैपलिंग अंडर द एक पेड माँ के नाम इनिशिएटिव एंड अनाउंस दैट फ्री बैनियन सैपलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेट। The government aims to plant at least one banyan tree in every village and will also implement several environmental initiatives over the next 5 years to protect Devar Island's ecological heritage.
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरा और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देश का सहयोग करने की अपील की है।
2: Moving on to sports, in the FIFA World Cup, Brazil defeated Japan 2-1 in the round of 32 at Houston Stadium in Texas. The victory sent five-time champions Brazil into the next round. In another round of 32 match, Paraguay knocked out Germany after a 1-1 draw. Paraguay won the penalty shootout 4-3 to seal a historic victory.
0: तो वीसी, हमने श्रोताओं को बता दिया कि देश और दुनिया में क्या हलचल चल रही है, तो अब रुख कर लेते हैं अपने महानगरों की भी ओर।
2: एब्सोल्युटली, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई फर्स्ट।
0: बिल्कुल।
2: या तांबरम कॉरपोरेशन हैज वैक्सीनेटेड 41,449 स्ट्रे डॉग्स अगेंस्ट रैबीज आउट ऑफ एन एस्टिमेटेड 46,286 स्ट्रे डॉग्स इन द एरिया। ओवर द पास्ट 6 months, द कॉरपोरेशन कंडक्टेड 10 मैस वैक्सीनेशन ड्राइव्स to reduce the spread of rabies amongst dogs and lower the risk to humans. The area was divided into 5 zones and 10 teams vaccinated around 230 stray dogs every day. The Marine Products Export Development Authority will organize the second National Skill Olympiad on Seafood Value Addition in Chennai tomorrow. The competition will be held during Seafood Expo Bharat 2026 from the 1st to the 3rd of July. It aims to encourage innovation, improve quality standards, recognize skilled professionals, and promote value addition in India's seafood processing and export sector.
0: और अब रुख कर लेते हैं दिल्ली की ओर।
2: जी,
0: दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रूपये खर्च करेगी। इस नीति के तहत सड़क कर में छूट सहित दिल्लीवासियों को करीब 15,000 करोड़ रूपये का लाभ मिलेगा।
3: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: तो प्रमोद उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये नीति है हमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन से बिल्कुल राहत देगी।
2: जी बिल्कुल।
0: और एक और खबर है दिल्ली की ही। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया

0: also said that solar parks on 10,000 acres and long-term power purchase agreements have strengthened the state's energy security. Under the Gruha Jyoti scheme, 1.67 crore consumers receive free electricity at a cost of 21,000 crore rupees.
1: और अब रुक कर लेते हैं शहर मुंबई की ओर. मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा. आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
0: Moving on to Hyderabad, in a significant move to strengthen bilateral relations, Telangana and South Korea have agreed in principle to organize a grand Telangana-Korea cultural festival in Hyderabad on October 25th this year to strengthen cultural and tourism ties. During a meeting with a South Korean delegation, Tourism and Culture Minister Juppalli Krishna Rao said the festival will showcase the art, music, dance, cuisine and traditions of both regions. He also said the growing popularity of Korean entertainment in India will boost tourism, cultural exchanges and creative partnerships between Telangana and South Korea.
1: श्रोताओं, महानगरों की जानकारी के बाद अब वक्त हो चला है महानगरों के मौसम की जानकारी लेने का. सबसे पहले प्रमोद जहां से प्रोग्राम कर रहे हैं वहीं की जानकारी देते हैं श्रोताओं को. राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज यहां तेज हवा चलने की संभावना है. न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान के 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता में भी आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान के 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
0: एंड आई विल टेल यू द वेदर फ्रॉम द साउथ.
1: जी,
0: चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म. The temperature is expected to range between a minimum of 28 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 20 degrees, while the maximum may reach 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures are expected to range from 27 degrees to 34 degrees Celsius.
1: और वीसी, अब प्रोग्राम का वो पढ़ाव आ चुका है जहां हम किताब हिस्ट्री की, जो इतिहास की किताब है, उसके पन्नों को पीछे पलटते हैं और जानते हैं कि आज यानी जो पर्टिकुलर दिन है 30 जून का, वो क्यों इतिहास में दर्ज हो गया.
0: That's
1: तो
0: right.
1: बहुत कुछ बताएंगे श्रोताओं को आज के दिन के बारे में, लेकिन एक जो डे है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं.
0: एब्सोल्युटली, टुडे मार्क्स द 11th वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 30th ऑफ जून टू रेज अवेयरनेस अबाउट एस्टेरॉयड थ्रेट्स and the importance of space science. It commemorates the 1908 Tunguska event, when an asteroid or comet exploded in the atmosphere over Siberia, Russia, flattening nearly 2,000 square kilometers of forest and releasing energy comparable to about 185 Hiroshima atomic bombs.
1: और क्योंकि ये घटना दूरस्थ क्षेत्र में हुई थी, इसलिए इसका अध्ययन 1927 में वैज्ञानिकों के पहुंचने के बाद ही संभव हो सका. ये दिवस पृथ्वी के निकट आने वाले क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉयड की पहचान, निगरानी और अध्ययन को बढ़ावा देता है, ताकि भविष्य में संभावित खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. और श्रोताओं, आज की और घटनाओं का जिक्र करते हुए आपको सबसे पहले ले चल रहे हैं साल 1894 में, जब लंदन का प्रसिद्ध टावर ब्रिज थेम्स नदी पर आधिकारिक रूप से खोला गया. ये पुल लंदन के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक बन गया और आज भी थेम्स नदी पर एक महत्वपूर्ण मार्ग है.
0: That's right, 1905, 30th of June, German physicist Albert Einstein published his groundbreaking paper on the electrodynamics of moving bodies, officially introducing the historic scientific theory of special relativity to the world.
1: और आज ही के दिन 1936 में अमेरिकी लेखिका मार्गरेट मिशेल का ऐतिहासिक उपन्यास गॉन विद द विंड पहली बार प्रकाशित हुआ, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में से एक बन गया।

0: That's right, 1953, the first Chevrolet Corvette sports car rolled off the assembly line in Flint, Michigan, launching one of America's most iconic automotive legacies.
1: और इसके लगभग 7 साल बाद 1960 में कांगो गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ द कांगो ने दशकों के औपनिवेशिक शासन के बाद बेल्जियम से अपनी आधिकारिक और पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी.
0: 1997, the United Kingdom officially handed over the sovereignty of Hong Kong back to the People's Republic of China, concluding 156 years of British colonial administration.
1: और प्रमोद, अब समय आ चला है कुछ ऐसी हस्तियों को याद करने का जो आज ही के दिन या तो इस दुनिया में आई या हमसे जुदा हुई.
0: जी,
1: तो पुण्यतिथियों की बात करते हैं. पुण्यतिथि के क्रम में आज सबसे पहले याद कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी को, जिनको भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है. दादा भाई दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक थे. श्री दादा भाई नौरोजी का शैक्षिक पक्ष अत्यंत उज्ज्वल रहा. 1851 में इन्होंने गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया. 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने बनाई. अन्यत्र लंदन के विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर भी रहे. 1869 में ये भारत वापस आए. यहां पर उनका 30,000 रुपए की थैली और सम्मान पत्र से स्वागत किया गया. 1885 में आपने बम्बई विधान परिषद के सदस्यता ली. 1886 में हॉलबान क्षेत्र से पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ा लेकिन असफल रहे. फिर 1886 में ही फिन्सबरी क्षेत्र से पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हुए. इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, जो अपने समय की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है.
0: That's right. Today is the death anniversary of Balijepalli Kavi Lakshmikanta, who was an Indian playwright, novelist, poet, screenwriter, actor and freedom fighter. He is remembered for the magnum opus Satya Harish Chandrayamu, a play written in 1924, and for his works in Telugu cinema. He was born in Ikitampadu village of Guntur district near Bapatla in 1881 to Narasimha Shastri and Adilakshmamma. After matriculation in Kurnool, he worked for some time in the sub-registrar's office as Gumasta. He entered the film industry with encouragement by Chittalaju Pullaya and wrote dialogues and songs and acted in some Telugu films. His debut film as an actor was Varaha Vikrayam in 1939, and amazingly, we have a song from that movie. Let's listen to it.
1: Bilkul.
0: Well, I think there's some technical issue. So moving on to Gulab Singh, who was the first Maharaja of Jammu and Kashmir, a member of the Dogra dynasty. He was originally a commander and noble in the Sikh Empire. He sided with the British in the first Anglo-Sikh war and briefly became Prime Minister of the Sikh court in 1846. In the same year, he signed the Treaty of Amritsar with the British, establishing the state of Jammu and Kashmir under the sovereignty of the British Raj. This treaty formalized the transfer of all lands that were ceded by the Sikhs to the British in the Treaty of Lahore.
1: और अब जिक्र करेंगे आशा देवी आर्य नायकम का, जिन्होंने अनभिज्ञता को दूर करने और ज्ञान, प्रेम तथा विश्वास से भरी दुनिया बनाने की कोशिश की. इनकी आज पुण्यतिथि है. ये एक शिक्षाविद थी जो हमेशा नए तरीकों की तलाश में रहती थी, जो उनके छात्रों के मन में रुचि पैदा करें. वो महात्मा गांधी की नई तालीम और बुनियादी शिक्षा या सीखने की उनकी कार्यप्रणाली से आकर्षित थी. वो अपने छात्रों से प्यार करती थी और उनके छात्र उन्हें मां कहकर बुलाया करते थे. साल 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया.
0: Shall we move on to birth anniversaries?
1: बिल्कुल.
0: Yeah. So today is the birthday of Saeed Akhtar Mirza, an Indian screenwriter and director in Hindi films and television. He is the maker of notable parallel films such as Mohan Joshi Hazir Ho, Albert Pinto Ko Gussa Kyun Aata Hai, Saleem Langde Pe Matro and Naseem, which won two National Film Awards in 1996. Saeed Akhtar Mirza started his career as a documentary filmmaker in 1976, graduating to win films with the acclaimed Arvind Desai Ki Ajeeb Dastaan, about the frustrations of an idealistic youth caught in the trap of a feudal money culture. It won the Filmfare Critics Award for the best movie of the year. Meanwhile, he directed and produced popular TV serials like Intezar, Vakt, Nukkad, the first was set in the lower middle class of various communities which meet at a

0: आज हम प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि नागार्जुन को भी याद कर रहे हैं। नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्रोताओं, आप सभी में से ज्यादातर जानते होंगे कि नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिन्दी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से अपनी रचनाओं का सृजन किया। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में यात्री नाम से लेखन किया है। नागार्जुन की मुख्य रचनाओं में शामिल हैं रतिनाथ की चाची, नई पौध और वरुण के बेटे।
1: टुडे इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ सितारा, हु इज एन इंडियन एक्ट्रेस नोन फॉर हर वर्क्स प्रेडोमिनेंटली इन मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा फिल्म्स। शी हैज अपीयर्ड इन ओवर 100 फिल्म्स इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। सितारा मेड हर एक्टिंग डेब्यू इन 1986 विद द मलयालम फिल्म कावेरी, directed by Rajiv Nath. Throughout her career, Sitara has worked with several leading actors and acclaimed directors. Some of her notable Malayalam films include Nathakshatangal, Marivil Kavadi, Jathakam, Amaram, Chamayam, Guru, and the famous movie Dasharatham, which starred the Dadasaheb Phalke award winner Mohanlal. And we have a song from that movie. Let's listen to it.
0: Ji.

0: आज हम हिंदी के एक और प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक को भी याद कर रहे हैं प्रमोद
1: जी।
0: बात कर रहे हैं डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा की। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो रहे। डॉक्टर रघुवंश दोनों हाथों से अपंग थे, लेकिन फिर भी इस अपंगता को उन्होंने अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया। वो पैरों से लिखते थे, उन्हें कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संस्कृति एवं मानव मूल्य को आधार बनाकर लिखने वाले प्रोफेसर रघुवंश का हिंदी में नई आलोचना के सूत्रपात में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी लिखित कुछ मुख्य रचनाएं इस तरह हैं: तंतुजाल, अर्थहीन, छायालय, हरिघाटी, मानसपुत्र, ईसा आदि। और अब थोड़ा सा रुख जो होगा प्रमोद वो बॉलीवुड की तरफ होने वाला है
1: जी।
0: क्योंकि बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी की, जिनकी आज जयंती है
1: जी।
0: और भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक थे ये। कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और वर्ष 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों के कुछ छंद संगीतबद्ध किए थे।

श्रोताओं, भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय भी कल्याण जी को ही जाता है। वर्ष 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था।

इस पुरस्कार के अलावा वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके अलावा 1974 में प्रदर्शित फिल्म कोरा कागज के लिए भी कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। श्रोताओं, कल्याण जी ने अपने सिने करियर में लगभग 250 फिल्मों में संगीत दिया। और प्रमोद, हम काफी सदाबहार नगमे सुन चुके हैं, लेकिन एक और नगमा और सुन लीजिए।

0: और अब बात करेंगे चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव की, जो रसायन वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है। इन्हें CNR राव के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इन्होंने लगभग 1500 शोध पत्र और 45 वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी हैं। 16 नवंबर 2013 को भारत सरकार ने इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। चंद्रशेखर वेंकट रामन और अब्दुल कलाम के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये तीसरे वैज्ञानिक हैं। और वीसी प्रमोद, अब घड़ी की सुइयां जो हैं वो इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को यहीं विराम दिया जाए। और श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सर फिरोजी और वीसी प्रमोद को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: That's right, stay tuned for coming up next, Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin followed by morning news in English.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का

0: दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रूपये खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमरीका और ईरान के बीच होरमूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होरमूज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है।

0: सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रूपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख

0: exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आरजी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रूपये तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाजे के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। और फुटबॉल में अमरीका के ह्यूस्टन में ब्राजील जापान को 1-2 दो गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम से मुतालिक आयद आरजी जाबता जाती पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के तमाम पेट्रोल पंप पर मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजारत के बयान के मुताबिक मगरबी एशिया के बहरान के दौरान आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ, ताहम हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों को मुस्तहकम रखकर आम सार्फीन को इसके असरात से महफूज रखा। इसके नतीजे में खुर्दा कीमतों और बड़ी मकदार में ईंधन खरीदने वाले सार्फीन के लिए मुकर्र कीमतों में नुमाया फर्क पैदा हो गया। वजारत ने कहा कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए 12 जून को आरजी जाबता जाती इकदाम नाफिज किए गए थे, जिनके तहत पेट्रोल पंपों पर हर सारिफ या हर गाड़ी को रोजाना ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल फराहम करने की हद मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा सनअती इदारा जाती और कमर्शियल सार्फीन के लिए भी खसूसी जाबते नाफिज किए गए थे। इन इकदाम का मकसद डीजल की कालाबाजारी जखीरा अंदोजी और गैर कानूनी तौर पर ले जाने को रोकना और आम सार्फीन के लिए पेट्रोल और डीजल की बिला रूकावट दस्तियाबी को यकीनी बनाना था। आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। वजीर आला ने असेंबली में ऐलान किया कि 2 जुलाई को होने वाली रियासती काबीना की मीटिंग में इस कानून का इब्तदाई मसौदा पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात उत्तराखंड और आसाम के मॉडल को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर आला के मुताबिक यह कमेटी शादी तलाक बच्चों को गोद लेने समेत मजमुई तौर पर 9 मौजूआत का जायजा लेगी और 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासती हुकूमत यकसां सिविल कोड का हतमी मसौदा तैयार करेगी। अलबत्ता वजीर आला ने वाजे किया कि दर्ज फहरिस्त कबायल आदिवासी कुर्मी बिरादरी और कदीम मकामी कबायल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मरकजी इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्म सनअत को फरोग देने के मकसद से 2 बड़े फैसले किए हैं। ये फैसले कल नई दिल्ली में इत्तलाआत और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की सदारत में एक आला सतही जायजा मीटिंग में किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मीटिंग में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाने, भारतीय सिनेमा के माहौलियाती निजाम में उभरती टेक्नोलॉजी को मरबूत करने के इकदाम पर तवज्जो मरकूज की गई। वजारत ने कहा है कि इन इकदाम का मकसद भारतीय सिनेमा को आलमी सतह पर ज्यादा मुसाबिकती बनाना, बिलखसूस छोटे शहरों और देही इलाकों में सिनेमा के बुनियादी ढांचे में सरमाएकारी की हौसला अफजाई करना।

0: ना है। प्रसार भारती के चेयरमैन पुरसुन जोशी की सरबराई में अकाला सतह स्टडी कमेटी ग्रुप तश्कील दिया गया है जो भारतीय सिनेमा को दरपेश चैलेंजों और मौके का मुताला करेगा। ये शोबे को मजबूत बनाने के तरीके तजवीज करेगा और भारतीय फिल्मों को आलमी सतह पर ज्यादा मुसाबकती बनाने के लिए इकदामात की सिफारिश करेगा। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली में वोटरों के जाती मालूमात से मुतअल्लिक फार्म घर घर जाकर तकसीम करने का अमल आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अशोक कुमार ने कल नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बूथ सतह के ऑफिसर्स बीएलओ आज से अगले महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और जाती तफसीलात से मुतअल्लिक फार्म तकसीम करेंगे और अहल राय दहिंदगान से पुर किए हुए फार्म वसूल करेंगे। दिल्ली काबीना ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यकम जुलाई से शुरू होने वाली इस दूरंदेशी पर मबनी स्कीम के तहत कौमी राजधानी दिल्ली को 31 मार्च 2030 तक पूरी तरह से कार्बन के सिफर अखराज के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पॉलिसी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों, खासतौर पर कार्बन के सिफर अखराज वाली गाड़ियों पर मरकूज है। इसका मकसद दिल्ली को बतदरीज आलूदगी से पाक शहर में तब्दील करना है ताकि इससे लोगों को फायदा हासिल हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगले 4 वर्षों में मरहलावार इस पर अमल दरामद के लिए एक जामع मनसूबा तैयार किया है। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और साल बसाल रोड टैक्स माफ करने में 8 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मजमूई तौर पर दिल्ली के लोगों को इस पॉलिसी से तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के फवायद हासिल होंगे।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरियों की मौत हुई है जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की यह खुली जारहियत अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इख्तदार आला पर हमला और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। यह इकदाम पाकिस्तान के उस मुसलसल तर्ज अमल की अक्कासी करता है जिसके तहत वह अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अपनी सरहदों से बाहर तशद्दुद का सहारा लेता है। ताहम ऐसी कोशिशें बेसूद साबित होंगी। भारत ने हमले में हलाक होने वालों के अहल खाना से गहरी ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी, आजादी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का एदा किया है। भारतीय फौज ने उन मीडिया रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दरअंदाजी की है और वहां कैंप कायम किए हैं। भारतीय फौज ने कहा है कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद और गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मरकजी वजारत सेहत ने मरकजी हुकूमत के तमाम महकमों और इदारों को आवारा कुत्तों के हमलों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर आज से अमल करने की हिदायत की है। ये हिदायत उस वक्त सामने आई हैं जब हुक्काम आवारा कुत्तों के हमलों से निपटने, अवाम की हिफाजत और अदालती हिदायत की तामील के मकसद से इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। तमाम मुतालिका महकमों से कहा गया है कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर मुकर्रा मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाए। यह हुक्म गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसका मकसद अवामी मकामात को खासतौर पर बच्चों और मरीजों के लिए महफूज बनाना है जहां उनका रोज आना जाना होता है। हर साल 30 जून को संथाल इनकलाब की याद में हूल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कबायली इनकलाबियों सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: झारखंड के साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव में हर साल हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों को

0: दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन शहीदों ने कबायली सोसायटी के खिलाफ इस्तेहसाल और उनकी शनाख्त के तहफ्फुज़ की खातिर तारीखी जद्दोजहद की। उन्होंने मजीद कहा कि शहीदों की गिरा कदर कुर्बानी मुल्क के सभी शहरियों को तरगीब देती रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हूल दिवस के मौके पर संथाल इंकलाब के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर दाखिला ने कबायली शनाख्त और मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों को याद किया। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज़ से मुतालिक तनाजे को हल करने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आबनाए हुरमुज़ के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। आबनाए हुरमुज़ दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में से एक है, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% खाम तेल गुजरता है। गुज़िश्ता जुमेरात से शुरू होने वाली कशीदगी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मफाहमतनामे तक पहुंचने की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को मुतासिर किया। फुटबॉल में कल रात अमरीका के टेक्सस के ह्यूस्टन स्टेडियम में ब्राजील जापान को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। 5 बार के चैंपियन ब्राजील के लिए गैब्रियल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम में गोल किया। राउंड ऑफ 32 के एक और मुकाबले में जर्मनी और पैराग्वे का मैच 1-1 से बराबर रहा। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट के तहत मैच का फैसला किया गया। पैराग्वे की टीम ने अपने हवास पर काबू रखा और जर्मनी पर 3-4 से तारीखी जीत दर्ज की। इस तरह जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज शुमाल मशरकी भारत, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकल में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। आइंदा 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नजर सिक्योरिटी इदारों ने पंजाब से जम्मू कश्मीर तक यात्रा के पूरे रास्ते पर हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए हैं। यात्रियों की महफूज आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मॉक ड्रिल कर रही हैं। निगरानी के जदीद निजाम फाल किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज से शुमाल मशरकी रियासतों का दोरोजा दौरा करेंगे। जनाब चौहान आसाम के गुवाहाटी में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम।
1: कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स के दौरे को सफाए अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, सेशल्स के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हुए मोदी। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल घरेलू ईंधन से मुतालिक हंगामी इकदामात के खात्मे की खबर को भी उर्दू अखबारात ने सफाए अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा सहाफत ने सुर्खी लगाई, ईरान अमरीका माहदे की पेश नजर हुकूमत का अहम फैसला। राजस्थान और हरियाणा आबी तनाजे पर समझौती खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, तकरीबन 3 दहाइयों पुराना मसला हल। दिल्ली समेत 5 रियासतों कर्नाटक, मेघालय, झारखंड और महाराष्ट्र में आज से SIR के आगाज की खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई, इलेक्शन कमीशन की तमाम शहरियों से ताउन की अपील। अखबारों में शाया होने वाली अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह, अमरीका और ईरान हमले रोकने और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर मुत्तफिक।
0: आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद RC पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीरे आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तला तो नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज़ से मुतालिक तनाजे के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है। आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। 8:46 हो गए हैं। म्यूजिकल दिल्लगी सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, नमस्कार।

गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। 8:52 और 40 सेकंड म्यूजिकल दिल्लगी सुन रहे हैं आप। आइए अब सुनते हैं परदेश फिल्म से कुमार सानू की आवाज में ये अगला गीत।

0: सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव प्रस्तुत करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। अमरीका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। होर्मूज जलडमरू मध्य से वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कार्यकाल में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद।

नमस्कार श्रोताओं, नव प्रभात की रश्मियों के साथ चेतना के इस पावन स्वर प्रवाह में आपका अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी भटनागर, एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए कार्यक्रम म्यूजिकल दिल्लगी का इन पंक्तियों से करें आगाज। उदय हुआ अंबर में भास्कर और मिटा तमस का घेरा है, नई आस नई ऊर्जा लेकर आया ये सवेरा है। पग पग पर संगीत घुला है जीवन की इस नवरागिनी में, जागो रे अनुरागी मन, अब भोर ने तुम्हें घेरा है। सुबह के 9:11 और 45 सेकंड हो चुके हैं। शीतल मंद और सुगंधित समीर प्रकृति के आंगन में जीवन का एक नया अध्याय लिख रही है। ये बेला कर्म की है, ये बेला संकल्प की है, और ये बेला है स्वयं को राष्ट्र और समाज के चिंतन से जोड़ने की। आज का ये विशेष प्रातःकालीन सत्र ऐतिहासिक स्मृतियों, वैज्ञानिक चेतना और हमारी माटी के गौरवमयी प्रसंगों से सुसज्जित है। समय की इस बहती धारा में आज हम अंतरिक्ष के रहस्यों से लेकर संसद की दीर्घाओं तक की यात्रा करेंगे। हम नमन करेंगे भारत के उन महान सपूतों को जिन्होंने अपने ज्ञान, पराक्रम और साहित्य से माँ भारती का श्रृंगार किया। तो आइए, चाहे आप चाय की चुस्कियां ले रहे हों या गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रहे हों, सकारात्मकता के इस सुंदर ताने बाने में बंधते हैं और प्रारंभ करते हैं आज की इस वैचारिक और सुरीली यात्रा को इन सुरों के साथ।

श्रोता, देव की पंडित के स्वर में आपने ये गीत सुना। जावेद अख्तर के बोल थे और फिल्म साज का ये गीत है फिर भोर बई जागा मधुबन। श्रोताओं, जब हम सुबह के शांत आकाश को निहारते हैं तो अनंत ब्रह्मांड के रहस्य हमें चकित कर देते हैं। आज 30 जून है अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और हमारी अनमोल पृथ्वी की सुरक्षा के प्रति जागरूक करता है। इतिहास साक्षी है कि इसी तारीख को वर्ष 1908 में रूस की तुंगुस्का नदी के पास एक विशाल एस्टेरॉयड के प्रभाव से अब तक का सबसे बड़ा आकाशीय विस्फोट हुआ था। आज के इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और प्लैनेटरी डिफेंस यानी हमारी पृथ्वी की रक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करना है। आज के दिन वैज्ञानिक जगत नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या NEOs की ट्रैकिंग और अंतरिक्ष विज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड चेतावनी नेटवर्क यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क जैसी वैश्विक संस्थाओं के साझा प्रयासों से हम अपनी इस हरी भरी वसुंधरा को हमेशा सुरक्षित रख सकें। अब आइए हम भी कुछ चांद सितारों वाला एक ये गीत सुनें

सावन को आने दो फिल्म से येसुदास की आवाज में आपने ये गीत सुना। श्रोताओं, अंतरिक्ष और विज्ञान की इस गौरवमयी कड़ी में आज का दिन भारत के एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र को नमन करने का भी है जिन्होंने वैश्विक पटल पर भारत की मेधा का परचम लहराया। आज देश के प्रख्यात रसायन शास्त्री भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव का जन्मदिवस है जो इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने वाले गिने चुने वैज्ञानिकों में से एक हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के प्रणेता प्रोफेसर राव ने 1800 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं और विश्व के 60 से अधिक विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट सहित जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत हैं। राष्ट्र निर्माण और अनुसंधान को समर्पित उनका ये जीवन हमारी युवा पीढ़ी और हर भारतीय के लिए एक महान प्रेरणा है। तो आइए हम भी अपने सुरसफर में आगे चलें इस गीत के साथ।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

विज्ञापन के इस छोटे से विराम के बाद आप सभी सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रियांशी भटनागर के साथ हम जुड़े हैं इस विशेष कार्यक्रम में म्यूजिकल दिल लगी। तो स्मृतियों और प्रेरणा का ये कारवां गतिमान है। श्रोताओं, आज 30 जून का ये दिन वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस या वर्ल्ड पार्लियामेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है। 1991 में आज ही के दिन अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का गठन हुआ था और इसी की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की स्थापना की। अब लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले हमारे भारतवर्ष के लिए ये दिन अपनी लोकतांत्रिक जड़ों, जनप्रतिनिधित्व और संसद की गरिमा को सुदृढ़ करने के संकल्प का पर्व है। संसदीय इतिहास और हमारी लोकतांत्रिक यात्रा, इनकी जब भी बात हो तो एक महान भारतीय का नाम स्वतः ही इस दीर्घा में गूंजने लगता है, जिन्होंने आज से 125 साल पहले विदेशी धरती पर जाकर भारतीय अस्मिता और संसदीय प्रतिनिधित्व का परचम लहराया। उनके बारे में बात करें उससे पहले आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आज उन्हीं महान राष्ट्रभक्त और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि है। ये एक अद्भुत ऐतिहासिक संयोग है कि आज हम संसदीय दिवस भी मना रहे हैं और आज ही के दिन हम ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी को भी नमन कर रहे हैं। भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक दादा भाई नौरोजी ने ही अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से दुनिया के सामने भारत के आर्थिक शोषण का सच रखा था। स्वराज के विचार को स्वर देने वाले और राष्ट्र की चेतना को जगाने वाले इस युग पुरुष की पुण्यतिथि पर आकाशवाणी परिवार उन्हें कोटि कोटि नमन करता है। आइए अब सुनते हैं ये गीत, उनके सपने और हमारे सपने, सभी के बारे में।

श्रोताओं, दादा भाई नौरोजी ने जहां वैचारिक क्रांति से देश को सींचा, वहीं आज का ये दिन भारत के भौगोलिक सीमाओं को सुदृढ़ करने वाले एक महान योद्धा को भी स्मरण करने का है। आज जम्मू कश्मीर रियासत के संस्थापक और डोगरा राजवंश के प्रथम महाराजा वीर शिरोमणि महाराजा गुलाब सिंह की पुण्यतिथि है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जन्मे महाराजा गुलाब सिंह ने अपने पराक्रम और कुशल कूटनीति से न केवल एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों को भारत की सीमाओं का अभिन्न हिस्सा बनाया। राष्ट्र की सीमाओं और संप्रभुता के इतिहास में उनका ये योगदान अमर है। चलिए हम भी कश्मीर की घाटियों में ही पहुंच जाएं इस गीत के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम म्यूजिकल दिल्लगी में आपके मनपसंद गीतों के साथ। श्रोताओं, आज जन कवि वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन जी का जन्म दिवस है। जब भी देश के साधारण जन, शोषित और खेतों की बात होती है तो नागार्जुन जी की कविताएं याद आ जाती हैं। उन्होंने अकाल के बाद घर में आने वाले अन्न की खुशी में कुछ इन शब्दों में इसे बांधा था। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा है आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद।

श्रोताओं, जन कवि की ये पंक्तियाँ आज के संदर्भ में एक नया विश्वास जगाती हैं। देश के हर किसान के घर में भी दाने आए और उनका चूल्हा कभी उदास न रहे, इसी संकल्प को सिद्ध करती है सरकार की पीएम आशा योजना।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान एक महत्वाकांक्षी नीति है जो हमारे अन्नदाताओं को उनकी उपज का सही मूल्य और उनकी आय का संरक्षण सुनिश्चित करती है और मूल्य में गिरावट के दौरान उन्हें संकटग्रस्त बिक्री से बचाती भी है। इस योजना के चार प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है मूल्य समर्थन योजना प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसके तहत दालों और तिलहनों की सीधी खरीदी होती है और किसान इसके लिए ई समृद्धि पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। दूसरा है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, जो बाजार भाव कम होने पर नुकसान की भरपाई सीधे किसान के बैंक खाते में करती है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी बफर स्टॉक और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और बाजार हस्तक्षेप योजना मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं को और ऐसी ही बागवानी फसलों के दामों को भी नियंत्रित किया जाता है। इस गारंटी से करोड़ों रुपए सुसज्जित ये योजना हमारे अन्नदाताओं की आय की सुरक्षा कवच है। सच ही है, कविता जब नीति बनकर धरातल पर उतरती है तो राष्ट्र समृद्ध होता है।

श्रोताओं, अंतरिक्ष की सुरक्षा से लेकर संसद की गरिमा तक और राष्ट्रभक्तों के त्याग से लेकर किसान के खेत खलिहानों तक आज की ये प्रातःकालीन यात्रा अत्यंत समृद्ध रही। समय अब आपसे विदा लेने का संकेत कर रहा है। आशा है स्मृतियों और संकल्पों का ये ताना बाना आपके आज के दिन को एक नई ऊर्जा से भर देगा। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz पर। मैं प्रियांशी भटनागर लेती हूँ आपसे अनुमति पर कुछ ही समय के लिए। फिर मिलेंगे समाचार के पश्चात आपके मनपसंद कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में 10:30 पर, और उसके पश्चात 11:10 पर ले चलूंगी आपको एक नई यात्रा पर कार्यक्रम तस्वीर में। तो श्रोताओं, आशा है आपका आज का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा, और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by V.C. Pramod. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July 2026, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code, UCC, will be implemented in the state. The Chief Minister announced in the Assembly that a

0: 15 में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमरीका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीसा कुक को पद से हटाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 5-4 मतों से ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने कहा कि लीसा कुक को पद से हटाने से पहले उन्हें कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए था। अदालत ने माना कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद किसी भी अमरीकी राष्ट्रपति ने किसी गवर्नर को हटाने की कोशिश नहीं की थी। इस फैसले को फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि अदालत ने एक अन्य फैसले में राष्ट्रपति के अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने के अधिकार का दायरा बढ़ाया है। लीसा कुक ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज किया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल में नेशनल असेंबली ने विनियोग विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बालगे द्वारा पेश विधेयक बहुमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र में लागू कर नागरिकों के लाभ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में निजी विद्यालयों पर प्रगतिशील कर इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जो लोग खर्च उठा सकते हैं उन्हें उन लोगों की सहायता के लिए अधिक योगदान देना चाहिए जो वहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देश में एक तिहाई विद्यार्थी सामूहिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। मध्यम आय वाले लोगों के लिए राहत उपाय के अंतर्गत कर छूट सीमा बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि संवैधानिक निकायों के लिए बजट नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि मौजूदा सरकार की कार्यभार संभालने से पहले ही बजट सीमा तय कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट और कार्यक्रमों की घोषणा की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वेनेजुएला में भारतीय दूतावास ने बताया कि भारतीय सेना ने वहां एक अस्थायी फील्ड अस्पताल स्थापित किया है जहां भूकंप प्रभावित लोगों का उपचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सेना प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इससे पहले 28 जून को भारत ने शक्तिशाली भूकंपों से प्रभावित वेनेजुएला के लिए आपात मानवीय सहायता सामग्री भी भेजी थी। भारत ने कहा है कि इस कठिन समय में वे

0: वाला के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी योजना है और ना ही कोई आर्थिक नीति, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार ना बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने संबोधन में ये बात कही। सम्मेलन का विषय था कानून के शासन की रक्षा, भारत और स्वीडन के अनुभव। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में विधि सम्मत शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा केवल शक्ति नहीं बल्कि अदालतों को सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के सिद्धांत पश्चिम से ली गई औपनिवेशिक शासन उपरांत अवधारणा नहीं है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सहित कई देशों में तापमान के नए रिकॉर्ड बने हैं। यूरोप में 19 करोड़ से अधिक लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करना पड़ रहा है।
2: इटली में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट वाले शहरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्मनी, चेक गणराज्य, पोलैंड और हंगरी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। फ्रांस और जर्मनी में ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पेरिस में भी हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 21 जून से यूरोप में 1,300 से अधिक मृत्यु भीषण गर्मी से हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसिस ने कहा कि यूरोप अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जहां तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अलका सिंह।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से मात दी। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें पहले 1-1 से बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मोरक्को ने पेनल्टी में जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया। इससे पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में जापान पर 2-1 की जीत के बाद ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। गैब्रियल मार्टिनेली ने चोट के आखिरी क्षणों में विजयी गोल दागकर 5 बार के चैंपियन ब्राजील को राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में एक नई उपलब्धि दिलाई। एक दूसरे मुकाबले में पेराग्वे ने अतिरिक्त समय में 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को 4-3 से मात दी। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में ये जर्मनी की पहली हार है। इस जीत के साथ ही पेराग्वे विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। भारत ने वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप राहत कार्यों को तेज किया। और मोरक्को, पराग्वे और ब्राजील फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में आपकी ही मनपसंद गीतों की सुरीली माला लिए। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और संदेश ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं और हमारा प्रयास रहता है उन सभी संदेशों को कार्यक्रम में सम्मिलित करने का। आपके मन में कोई बात हो, कोई दुआ, कोई छोटा सा संकल्प या कोई खास संदेश, तो उन्हें भी आप हमें अपने प्रिय गीतों के साथ अवश्य भेजें। तो श्रोताओं, देरी कैसी, हमें जल्द ही लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर हमारे ईमेल पते पर fmgoldairdelhi@gmail.com। मैं पुनः ईमेल स्पष्ट करती हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। और क्या पता कहीं अगली सुरमई धुन आपकी ही पसंद से सजी हो। हम यदि आप सभी के संदेश ना शामिल कर पाए तो क्षमा कीजिएगा और आइए आरंभ करते हैं इस धुन से।

संगीत की इस लहर के बाद आइए सुनते हैं आपकी आवाज। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें संदेश लिख रहे हैं अपने फरमाइशी गीत के साथ। बसमत रोड महाराष्ट्र से रंजीत कारेगावकर, कंचन, सृष्टि और समरजीत हमें लिख रहे हैं। खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी रमेश, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना और आदलपुरा गोंगावा से संजय

अमनिया, माया, कान्हा और कृष्णा भी इनके साथ जुड़े हैं। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है, कहां से लिख रहे हैं ये नहीं लिखा है सुनील गायकवाड़ जी ने, महाराष्ट्र पुणे से लिख रहे हैं सुषमा राजवीर और अनन्या के साथ। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है सिद्धार्थ, अर्चना, प्रणय और हीरामन जी का। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और आराध्या कुमारी ये भी हमें सुन रहे हैं और अपना फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है। मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान और जीवयम इनके साथ जुड़े हैं। दिग्दर्शन जी भी इनके साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा जी इनके साथ जुड़े हैं, ये भी हमें सुन रहे हैं। मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल और जयवीर सिंह जी और डॉक्टर अमनदीप का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज इनके साथ जुड़े हैं। आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं आइए एक बार फिर पढ़ें आपके संदेश। सुदर्शन जी, अनीता, सिमरन लिख रहे हैं हमें शांतिनगर सोनीपत से। बहुत ही प्रिय संदेश इन्होंने लिख के भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अफरोज शेख लिख रहे हैं सुपाल बिहार से, नागर कोहरा जिला, राजनांदगांव छत्तीसगढ़।

ये भी हमारे साथ जुड़े हैं और ललित लिख रहे हैं हमें जम्मू कश्मीर से, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये गीत आपकी फरमाइश पर।

आइए श्रोताओं, फिर पढ़ें आपके संदेश और देखें किसने हमें कहां से और कौन सा गीत भेजा है। सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग ने हमें लिख भेजा है। मुरादाबाद से ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश में है ये। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर जी, इन्होंने भी हमें अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद और सूफिया हमें लिख रहे हैं बलीमरण से। यासीन जी जुड़े हैं हमारे साथ नाजमा बेगम, तौसीफ और कलीम के साथ गंज डुंडवारा से ही। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद से। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू हमारे साथ जुड़े हैं धनौरी तेलीवाला से। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी पसंद का एक गीत मुल्लापुर दाखा से।

समय शीघ्र ही इशारा करने वाला है, पर उससे पहले आइए नजर डालें फिर आपके भेजे हुए संदेशों पर। भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी ने हमें संदेश भेजा है। ये सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष हमारे साथ जुड़े हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। उमेश कुमार, दिनेश, अनुज और सोनित हमारे साथ जुड़े हैं खयाला से। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ सिटी से सतीश जी और विमला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आदर नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं और ताज जी भी इनके साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु, अदनान और फैजान भी हमारे साथ जुड़े हैं और इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा जी, राजू, नेहा और जगदीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जसोला विहार नई दिल्ली से राजेश जी, शीतल जी, राशि और सार्थक सावन का आह्वान कर रहे हैं, तो आइए हम भी इनके साथ जुड़ जाएं।

श्रोताओं, आपके संदेश, आपके अनुरोध और आपकी संवेदनाएं ही इस कार्यक्रम की रूह हैं। अपना प्रेम और प्रोत्साहन ऐसे ही भेजते रहिए, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। हाथ छुड़ाए जाते हैं अक्सर, मगर रिश्ते नहीं छुड़ाए जाते। मिलते हैं समाचारों के पश्चात। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ। और आपको शीघ्र ही करूंगी नमस्कार, पर कुछ और नाम भी ले लूं पहले। सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गाव्या और सुच्चा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रगेश और प्रीतेश जी और पूरा संघई परिवार हमारे साथ जुड़ा है। हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक हमारे साथ जुड़े हैं। और नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, अब आपको इस मधुर गीत के साथ मैं करती हूँ नमस्कार। मिलेंगे 11:10 पर और आपको लेकर चलूंगी एक अनोखी यात्रा पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमरीका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शहर एक नई दास्तान खोजते हुए। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तस्वीर और मैं प्रियांशी भटनागर आज आपको इस मनमोहक सफर पर अपने साथ लेकर चल रही हूँ भारत के उस अद्वितीय और पावन अंचल की ओर जहाँ हमारी संस्कृति के चार अलग अलग रंग कौन से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार एक सुंदर भौगोलिक कोलाज की तरह आकर आपस में मिल जाते हैं। तो चलते हैं कैमूर और विंध्य की अनंत श्रृंखलाओं के बीच बसे वैभवशाली सोनभद्र। श्रोताओं साल 1989 से पहले सोनांचल नाम से विख्यात इस पावन क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास अग्नि पुराण तक जाता है। संस्कृत में शोण का अर्थ है नदी की वो लाल रेत और भद्र का अर्थ है कल्याणकारी। इस मंगलकारी और पवित्र नदी के आंचल में सिमटे इस जिले की अनकही दास्तानों को आइए सुरों के धागों में पिरोते हैं। तो चलें निकल पड़ें इस सफर पर।

श्रोताओं, पावस पावन सोन नदी के किनारे जागृत होती है हमारी आध्यात्मिक चेतना। अपनी अनूठी पौराणिक मान्यताओं के कारण सोनभद्र को अत्यंत आदर के साथ गुप्त काशी कहा जाता है। इसका गौरवशाली उल्लेख रामचरितमानस और अग्नि पुराण में भी मिलता है। यहाँ के महलपुर में स्थित त्रिवेणी संगम पर सोन, रेणु और बिजुल नदियां एक दूसरे में समाहित होती हैं। इनका पावन जल ग्रीष्म ऋतु में भी कभी नहीं सूखता और गंगा नदी के ही समान इन्हें भी पवित्र माना जाता है और पूजा जाता है। और यहीं पर स्थित है श्रद्धा का अद्भुत केंद्र शिव द्वार धाम। यहाँ महादेव ने अघोरी रूप में अपनी गुप्त साधना की थी और यहीं स्थापित है 11वीं शताब्दी की भगवान शिव और माता पार्वती के काले पाषाण की अलौकिक प्रतिमा। इसके दर्शन मात्र से ही मन असीम शांति से भर जाता है, तो आप यहाँ आए तो अवश्य जाइएगा। चलिए, गुप्त काशी के इस दिव्य रूप को अंतर्मन में समेटकर आगे बढ़ते हैं इस सुंदर यात्रा पर इस मधुर संगीत के साथ।

श्रोताओं, अध्यात्म और इतिहास की इसी त्रिवेणी से आगे बढ़ते हुए अब हमारी तस्वीर हमें ले चलती है सोनभद्र की उन रहस्यमयी कंदराओं और गुफाओं की ओर। ये सदियों की गाथाएं अपने भीतर समेटे हुए हैं। डाला क्षेत्र के समीप स्थित शिव पार्वती अमर गुफा को आदिक शक्ति का एक अद्भुत केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि इस अलौकिक और दुर्गम गुफा में आज भी एक विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा का वास है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दूर दराज से श्रद्धालुओं का तांता लगता है। इसी पावन श्रृंखला में जब हम चुर्क के पंचमुखी महादेव पहुंचते हैं तो वहां हमें पांच मुखों वाली भगवान शिव की पांचवी शताब्दी की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा के दर्शन होते हैं। लेकिन विस्मय का केंद्र केवल ये प्रतिमा ही नहीं बल्कि इस पहाड़ी के निचले हिस्से में स्थित वो 16 ऐतिहासिक गुफाएं हैं। इनकी दीवारों पर आदि मानव द्वारा बनाए गए गेरुए रंग के भित्ति चित्र और आखेट के दृश्य आज भी मौजूद हैं। ये गुफाएं इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यहाँ की प्राचीन जनजातियों का नाता इस धरती से कितना गहरा और पुरातन है। प्रकृति और आस्था के इस अनूठे विस्मय को महसूस करने के बाद आइए लेते हैं सुरों का एक और सुंदर विश्राम। सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अब समय हो चुका है एक अल्प विराम का। लौटकर आपको बताएंगे धरती पर जीवन की शुरुआत के गवाह और दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म पार्क के विषय में। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और तस्वीर कार्यक्रम में मैं प्रियांशी आपको पौराणिक काल के रहस्यों को समेटे सोनभद्र की यात्रा पर ले चल रही हूँ। श्रोताओं, हमारी ट्रैवल डायरी में अगला पड़ाव है रॉबर्ट्सगंज से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर सोनभद्र शक्तिनगर स्टेट हाईवे 5A के पास स्थित सलखन जीवाश्म पार्क। वाराणसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में 25 हेक्टेयर में फैला ये पार्क दुनिया के सबसे बड़े और प्राचीन स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म क्षेत्रों में से एक है, जहां चट्टानों पर बने छल्ले लगभग 140 से 160 करोड़ वर्ष पुराने हैं, यानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का साक्षात प्रमाण है ये। तो आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर के सुरों में ये।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तस्वीर और मैं आपके साथ प्रियांशी आपको ले चल रही हूँ सोनभद्र की यात्रा पर। और हमारा अगला पड़ाव आपको सोनभद्र के एक सुंदर और आधुनिक ऐतिहासिक संदर्भ से रूबरू कराएगा। जब आप यहाँ के विंध्य पर्वतों की हरी भरी वादियों और घाटियों से गुजरेंगे, तभी आपको ज्ञात होगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1954 में जब वे यहां आए थे और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा था। यहां की प्राकृतिक सुंदरता वाकई आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। लेकिन सोनभद्र सिर्फ पहाड़ों और वादियों का घर नहीं है, ये देश की ऊर्जा राजधानी भी है। अगर आप इंडस्ट्रियल टूरिज्म या आधुनिक भारत के विकास को करीब से देखना चाहते हैं, तो यहाँ का रिहंद बांध और भारी मात्रा में मौजूद कोयले की खदानें आपके सफर को एक अलग ही अनुभव देंगी। और खास बात यह है कि नेहरू जी के उसी ऐतिहासिक दौरे के समय ही इस क्षेत्र का रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हुआ था और आज भी ये यात्रियों के लिए एक प्रमुख माध्यम है। तो पहाड़ों की इस हरियाली और ऊर्जा से भरे सफर पर आइए सुनते हैं ये गीत।

किशोर कुमार के सुरों से हम सब भी ऊर्जा से भर गए। तो अब चलिए आगे बढ़ें अपनी यात्रा पर। रोमांच के शौकीनों के लिए हमारा अगला सुझाव है बनारस से मात्र दो

आते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किले के ऊपर बने राम सागर और मीरा सागर तालाबों का पानी भीषण गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। इतिहास के इस अद्भुत और रहस्यमयी पन्ने को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जोड़ते हैं और आनंद लेते हैं इस मधुर गीत का।

तो प्रिय श्रोताओं, कुछ और मनोरंजक बातें करें सोनभद्र के बारे में। उससे पहले वार्ता करते हैं इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों की। अगर आप दिल्ली से सोनभद्र का सफर प्लान कर रहे हैं तो सड़क मार्ग से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप लगभग 9 घंटे और 30 मिनट में यहां पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो नई दिल्ली से रांची राजधानी जैसे ट्रेन आपको सोनभद्र स्टेशन ही पहुंचाती हैं। वाराणसी से इसकी दूरी मात्र 2 घंटे की है, जिसे आप आसानी से कैब या बस राइड के जरिए भी तय कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए सबसे उत्तम समय जुलाई से सितंबर

यानी कल से ही शुरू हो रहा है। तो चलिए आप और हम भी प्लान करें। ये एक बेहद बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। यहाँ 2 से 3 दिन का लोकल टूर आप बहुत कम खर्च में पूरा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत यहाँ के मुख्य स्टेशन रॉबर्टगंज और चोपन को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ व्हीलचेयर रैंप्स और सुलभ प्रसाधन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि हमारे दिव्यांग और वरिष्ठ सहयात्री भी इस पावन यात्रा का आनंद बिना किसी बाधा के ले सके। तो अपनी ट्रैवल फहरिस्त में इन जानकारियों को सुरक्षित कीजिए और चलिए आनंद लेते हैं इस रोमांचक गीत का।

श्रोताओं, चलते चलते आपको सोनभद्र का एक ऐसा रोमांचक रूप दिखाते हैं जो आपकी कल्पना को एक नया विस्तार देगा। अपनी इसी प्राकृतिक भव्यता, विंध्य की मनोरम वादियाँ और पौराणिक किलों के कारण सोनभद्र भारतीय सिनेमा विचारकों के लिए भी एक पसंदीदा रंगमंच रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली क्राउड फंडेड फिल्म यानी जन सहयोग से बनी और सामाजिक चेतना की ये कालजयी फिल्म आदरणीय श्याम बेनेगल जी की मंथन, इस फिल्म की गूंज भी सोनभद्र के अंचल के ग्रामीण जनजीवन से बेहद गहराई से जुड़ी रही है। इसके अतिरिक्त बंटी और बबली, गैंग्स ऑफ वासेपुर और क्षेत्रीय और शॉर्ट फिल्म्स जैसे दो दिल बंधे एक डोरी से, सरफरोश और एक लोटा पानी ऐसी आधुनिक

फिल्मों के कई दृश्यों ने भी यहाँ के विस्मयकारी दृश्यों को कैमरे में कैद कर लिया। और यदि आप प्रकृति का साक्षात चमत्कार देखना चाहते हैं तो मानसून के महीनों में यहाँ का रुख कीजिए। जुलाई से सितंबर के बीच यानी कल से शुरू होने वाला समय कैमूर की प्राचीन पहाड़ियों को चीर कर नीचे गिरते राजदारी और मुक्ता प्रपात जैसे प्रपात अपने पूरे वेग पर होते हैं। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से दूधिया पानी की तरह गिरते ये झरनों का गूंजता हुआ संगीत और चारों ओर फैली मखमली हरी चादर सैलानियों को एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाती है जहां पहुंचकर बस यही शब्द निकलते हैं, अद्भुत और अविस्मरणीय। तो सिनेमा इतिहास और प्रकृति का ये विरल संगम देखना अपनी अगली यात्रा में बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब रुख करते हैं इस सुरीले सफर के अंतिम पड़ाव की ओर इस ऊर्जावान गीत के साथ।

श्रोताओं, अग्नि पुराण के ऐतिहासिक संदर्भों से लेकर कैमूर की पहाड़ियों के प्राकृतिक वैभव तक आज तस्वीर कार्यक्रम के माध्यम से हमने सोनभद्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप को समझा। आशा है हमारे साथ तय की गई ये यात्रा आपको अत्यंत प्रिय लगी होगी। कल पुनः उपस्थित होंगे एक नए गंतव्य और उसकी प्रामाणिक गाथा के साथ। आज के इस अंक को यहीं विराम देने का समय हो चला है। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz पर। तस्वीर कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। इस मधुर गीत के साथ प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है।

0: जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Athens-headquartered Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India, NPCI, International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly, with transaction costs reducing drastically to a fraction of conventional transfer costs. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today emphasized that the vision of Vikasit Bharat cannot be achieved without developing the agriculture sector. Addressing the closing ceremony of Khet Bachao Abhiyan in Hisar, Haryana, Mr. Chauhan said the government is working on developing a mobile app that will provide information regarding soil and the amount of fertilizer the soil requires. He urged farmers to use fertilizers and insecticides in their farms in a balanced manner in order to maintain the health of the soil. He also advised farmers to adopt the practice of organic farming. Army Chief General Upendra Dwivedi today said the Indian Army derives its strength not from any single individual, but from the unwavering faith of its soldiers, commanders, veterans, families, and the citizens of

नमस्कार। संतोषम परम सुखम, नीति के दोहे में इस दोहे को हम में से अधिकांश ने पढ़ा और सुना तो होगा, पर इसे अमल में जिसने भी रखा है वो ही वास्तविक रूप से सुखी है, खुश है। क्या कहते हैं आप इस बारे में दोस्तों? आज के सुविचार

के साथ घर आंगन में मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट मनीषा बोस स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का। आपको बता दूं आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमें और जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी हमारा प्रसारण आप सुन सकते हैं। सच्चे दोस्तों की प्राप्त ही पर्याप्त है। जब ऐसा लगने लगे तो समझिए कि संतोष की राह पर आप आगे बढ़ रहे हैं और सच्चे सुख की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, क्योंकि संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। स्वयं के पास जितने भी संसाधन हैं, अगर हम उनसे तृप्त रहना सीख जाते हैं, संतुष्ट होना सीख जाते हैं, तो हमारे सुख की शुरुआत हो जाती है। अधिकांशतः हम सभी अधिक से अधिक धन और सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अधिक पाने की चाह में हमने दिन रात का सुख चैन खो दिया है ना? याद रहे दोस्तों, जीवन में मिली अच्छी चीजों के प्रति संतोष और कृतज्ञता का होना हमारे तनाव को कम करता है, साथ ही हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा बना के रखता है। पर इसका अर्थ ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप सपने देखना ही छोड़ दें, बल्कि सपनों के लिए आप आगे बढ़ें, लेकिन जो मिला है उसका सम्मान करते हुए। क्योंकि साथियों, जिस दिन नजरिया प्राप्त में पर्याप्त का हो जाए, तो देखने का ऐसा नजरिया जब होता है तो जीवन में अहोभाव की शुरुआत हो जाती है।

तीसरी मंजिल। इस फिल्म से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों, हर साल हमारे देश में जून से सितंबर के बीच का समय मॉनसून का होता है। ये बात और है कि इस साल जून का पूरा महीना बीत गया और बारिश का इंतजार अभी भी कई स्थानों में बरकरार है ना। ऐसे में बारिश का एहसास आज हम आपको अपनी आज की प्रश्नोत्तरी में कराएंगे। आपको बताना है कि बारिश की पहली यादगार क्या है, कैसी यादें जुड़ी हैं आपकी बारिश की बूंदों से, आपके जीवन में इससे जुड़ी सबसे खूबसूरत याद कौन सी है। अपनी यादें हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हर बारिश अपने साथ एक कहानी भी लेकर आती है। बताइए हमें अपने मैसेज के थ्रू fmgold@gmail.com पर, और सुनिए फिलहाल ये प्यारा सा गीत।

प्यासा सावन। इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज में ये गीत। और साथियों, हमारी प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमसे जुड़े हुए होते हैं, जिसमें एक संदेश मेरे पास आ चुका है और वो है नवीन भाटिया जी का। उन्होंने लिखा है कि एक बार खारी बावली शॉप के काम से वो गए थे और वहां बारिश में अटक गए और 2 घंटे फिर बड़ी मुश्किल से वहां से वो निकल पाए क्योंकि तेज बारिश थी और स्कूटी से उन्हें निकलना था। और आज भी वो दिन उन्हें याद है। सच कह रहे हैं आप कि बारिश जब होती है तो वो झमझमा कर होती है और कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी तैयारी में नहीं होते हैं, लेकिन बारिश का जो आनंद है वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है साथियों। और आपको बता दूं कि आपको भी संदेश करना है हमारे इस मेल आईडी पर fmgold@gmail.com पे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है और आज की प्रश्नोत्तरी बारिश की पहली यादगार क्या है आपकी, ये आपको बताना है। और बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सफर में, क्योंकि साथियों अब बात आज के दिन में क्या कुछ है खास उसकी करते हैं। जानते हैं कि आज है 30 जून और आज क्या खास है। आज है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। हर साल 30 जून को इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संसदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करना और नागरिकों के प्रति उनकी जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। उसी तरह आज प्रख्यात राजनेता, शिक्षाविद, विचारक, अर्थशास्त्री और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी को याद करने का दिन है, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और

भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखने और अंग्रेजों के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज के दिन हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही आज हिंदी और मैथिली साहित्य के महान साहित्यकार और प्रगतिशील लेखक बाबा नागार्जुन उर्फ वैद्यनाथ मिश्र जी की जयंती है। अपने बेबाग अंदाज और लोक जीवन से गहरे जुड़ाव के कारण उन्हें भारत का आधुनिक कवि भी कहा गया है। साहित्य जगत में उनके समृद्ध लेखन का आधार उनकी बहुभाषीय दृष्टि, गहरी लोक संस्कृति और यथार्थवादी चेतना रही। बहुजन समाज, किसान मजदूरों की पीड़ा और प्रगतिशील विचारों का रेखांकन उनके लेखन की विशेषता रही। उनकी जयंती पर हम उन्हें भी नमन करते हैं। आपको बता दूं, आप ट्यून है एफएम गोल्ड 100.1 पर आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में, और आज की प्रश्नोत्तरी, आपकी बारिश की पहली यादगार क्या है, हमें बताना न भूलें। हम कर रहे हैं प्रतीक्षा।

महेंद्र कपूर की आवाज में आप सुन रहे थे गुमराह फिल्म से इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों अब बात करते हैं हरियाली की। हरियाली दिल को सुकून तो देती है, साथ ही जीवन को ना खुशनुमा भी बनाती है। इसीलिए हरियाली से बेजार होना बेमानी है। और दिल्ली जैसे बड़े महानगर में हरियाली सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की जरूरत भी है। और देखा होगा आपने कि जिस तेजी से हमारा पर्यावरण बदल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में पेड़ों के प्रति संजीदा होना जरूरी है। पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो एक परिपक्व पेड़

जो है वो साल भर में 100 से 150 किलो तक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ऑक्सीजन हमें देता है। विशेषकर शहरों में ये वृक्ष अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में अपनी खास भूमिका निभाते हैं। भाई पर्यावरण के प्रति सरकार चिंतित है, हम चिंतित हैं, इसीलिए तो स्वच्छ वातावरण, जैव विविधता और जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन पार्क भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी भागीदारी इसमें कैसे दे सकते हैं? अपने आसपास खाली जगहों और पार्कों में पौधे लगाकर उनकी देखरेख कर सकते हैं, और यदि वहां पहले से ही हरियाली है तो अपना श्रमदान कर वृक्षों की सेवा और उस स्थान पर स्वच्छता की जिम्मेदारी ले सकते हैं, है ना? क्योंकि सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं बनने वाला भाई, बल्कि उन्हें बचाने और संवारने की जिम्मेदारी भी लेना होगा, है ना? सड़क किनारे खड़े वृक्ष हमारे साइलेंट हीरो हैं दोस्तों। बिना मांगे हमें साफ हवा, छाया और संतुलित पर्यावरण देते हैं, और साथ ही एक पौधे की जिम्मेदारी अगर हम ले रहे हैं तो हम अपने शहर के ग्रीन लंग्स को मजबूत करने की दिशा में एक कवायद अपनी बढ़ा रहे हैं, है ना?

हरियाली और रास्ता इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे। और सच है दोस्तों, हरियाली का नाता बारिश की बूंदों से तो है ही, है ना। और आज की हमारी प्रश्नोत्तरी भी इसीलिए है क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं बारिश की बूंदों का। बारिश की पहली यादगार क्या है आपकी, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपको हमें बताना है fmgoldga@gmail.com पर। और

हमारे एक श्रोता साथी हैं जो हमें भेज चुके हैं इसका उत्तर, और उन्होंने भेजा है जो, उसके पहले मैं उनका नाम बताती हूँ। सुदर्शन मुखी हैं, अनिता मुखी हैं, सिमरन मुखी हैं, शांति नगर सोनीपत से। बहुत ही खूबसूरत सी याद इन्होंने भेजी है कि बचपन और बारिश दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं उनके लिए। बारिश में स्कूल बैग का भीगना भी एक मीठी याद की तरह है। कागज की कश्ती चलाना, गलियों में बारिश में दौड़ लगाना, ये सब यादगार लम्हे हैं जो हमें हमेशा याद आते हैं। जी बहुत खूबसूरत बात आप कह रही हैं। लगभग ये यादें हम सभी की मिलती जुलती हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर बहुत अच्छा लगे तो हमें जरूर ऐसी बातों के लिए, जल संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बारिश की बूंदों का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा संदेश दिया है और इसी पर ही हमारी अगली चर्चा है, क्योंकि दोस्तों देश के अधिकांश हिस्सों में इस साल मॉनसून का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। कुछ जगह हो गई है पर कुछ जगह नहीं हुई है। और देखिए ना, जून का महीना जाने को है और हमारी दिल्ली में बारिश का आता पता नहीं है। दरअसल मॉनसून के कमजोर रहने और देरी से आगे बढ़ने का जो कारण बताया जा रहा है वो अल नीनो प्रभाव को कहा जा रहा है, जिसके चलते बारिश की नन्ही बूंदों के लिए हम सभी दिल्लीवासी तो लालायित हैं ही, वैसे भी देश के कई हिस्सों में लोग बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन जैसे अभियान भी चलाए हैं और मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से वर्षा के जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने का आग्रह किया है, क्योंकि जल है तो कल है ना साथियों। पानी की हर एक बूंद को बचाने का दृढ़ संकल्प ही है कैच द रेन, जिसमें बारिश का पानी जहां गिरे जब गिरे उसे वहीं से सहेजा जाए, क्योंकि जल है सबके लिए जरूरी। इसीलिए सभी की भागीदारी का आह्वान किया गया है जल संचय जन भागीदारी अभियान में। आप भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे, बताती हूँ। अपने घर से ही इसकी शुरुआत कीजिए। नल के टैप से गिरने वाली हर बूंद का सार्थक प्रयोग कीजिए, जैसे ब्रश करते समय बेतरतीब तरीके से पानी न बहने दें, और जब जरूरत हो तभी टैप को चालू रखें। शावर की जगह बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। कपड़े धोते समय पानी को ज्यादा न खर्च करते हुए और कपड़ों को ड्रेन करने के बाद उस पानी को पोछे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप सोसाइटी में रहते हैं तो ये प्रयास करें कि आपकी सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हो सके। एसी से निकलने वाले पानी को भी एक जगह इकट्ठा करके आप पौधों में सींच सकते हैं। भाई चाहत हो तो रास्ते तो निकल ही आते हैं, है ना दोस्तों। भविष्य में बारिश की नन्ही बूंदों का इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए आज से ही सामुदायिक एकजुटता जरूरी है। और इसी के साथ ही हमें अपने अपने क्षेत्रों में पानी की बर्बादी ना होने देने का प्रण करना है, क्योंकि जल ही हल है।

परवीन सुल्ताना, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे इस खूबसूरत से गीत को फिल्म दो बूंद पानी से। दोस्तों, स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखने के लिए कौन नहीं चाहता, हर कोई उसके लिए बहुत सारे प्रयास करता है ना। और हमें से बहुत से लोग हैं ऐसे दिखने के लिए हम बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं जो तादाद में ज्यादा होते हैं और कई बार ओल्ड फैशन हो जाने की वजह से हमारे वार्डरोब को भी भर देते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मुझे लगता है हम सभी की अलमीरा में ऐसे कपड़े जरूर होंगे। अगर ऐसे में आप मेट्रो से सफर करते हैं तो एक जानकारी है मेरे पास आपके लिए जो आपके बहुत काम की हो सकती है और आपके वार्डरोब का भार भी कम कर सकती है। दरअसल दिल्ली सरकार और डीएमआरसी ने अर्पण केंद्र नाम से एक नई पहल शुरू की है दोस्तों, जिसके तहत 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशन जिनमें शाहदरा,

रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मुकेश कुमार और साथियों की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों आपको बता दें, आप हमारे साथ ट्यून है 100.1 एफएम गोल्ड के घर आंगन कार्यक्रम में। और आपके लिए जैसे हम हर बार एक प्रश्नावली लेकर आते हैं, आज की हमारी प्रश्नावली आपको बता दें वो है, बारिश की पहली यादगार क्या है आपकी? आपके साथ ऐसी कौन सी बातें जुड़ी हैं, कौन सी कहानी जुड़ी है, हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलिए। और हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com पर। आपके संदेशों की प्रतीक्षा में रुख करते हैं अगली बात की ओर। और कार्यक्रम घर आंगन का ये पड़ाव मेहनत, धैर्य और निरंतरता की एक असाधारण कहानी के साथ आपके लिए हाजिर है, और उसका नाम है चारू पांडे। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की रहने वाली चारू पांडे सिर्फ 23 साल की लड़की है, और इस उम्र में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कुल 19 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल किया हुआ है, और ऐसा करके उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कई बड़ी परीक्षाएं पास कर सफलता हासिल करने वाली चारू इतिहास रचते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जो युवाओं के लिए प्रेरणा है। फिलहाल वे चेन्नई में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर काम कर रही हैं। लेकिन चारू का सफर हर कहानी की तरह आसान नहीं है दोस्तों। सफलता की जो कहानी होती है उसमें कई मुश्किलें आती हैं। शुरुआत में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, कई परीक्षाओं में रिजल्ट उनके पक्ष में भी नहीं आया, लेकिन चारू ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपनी कमियों और गलतियों से सीखकर अपनी

तैयारी को और बेहतर किया। अनुशासनात्मक दिनचर्या और निरंतरता के साथ टाइम मैनेजमेंट ही उनकी सफलता की कुंजी है। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि स्वावलंबन और जो निरंतर प्रयास होता है ना, उससे आप किसी भी बात को, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप स्वावलंबन के साथ नवाचार के माध्यम से भी कुछ करना चाहें तो आप खुद ही मुकाबिल नहीं बनते, बल्कि अपने साथ साथ और भी कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि असली प्रतिभा केवल एक बार की जीत नहीं, बल्कि लगातार प्रयासों की ताकत होती है। इसलिए सपनों को मेहनत की रफ्तार ही वर्तमान बनाती है।

दोस्तों, फिल्म काला बाजार से आशा भोसले की मधुर आवाज में इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे हैं और इसी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ घर आंगन कार्यक्रम में यहीं पर। और फिर मिलने के वादे के साथ अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे किसी और जगह पर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी

0: जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly. Army Chief General Upendra Dwivedi today said the Indian Army derives its strength not from any single individual but from the unwavering faith of its soldiers, commanders, veterans, families and the citizens of the country. General Dwivedi said this while relinquishing the appointment as the Chief of Army Staff in New Delhi today. He emphasized that serving in the Indian Army for over four decades has been his greatest privilege.
2: भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने
4: आर स्टेडफास्ट सोल्जर्स रिमेन्स डिप्लॉयड अक्रॉस माउंटेन्स डेजर्ट्स ग्लेशियर्स फॉरेस्ट एंड चैलेंजिंग बॉर्डर रीजन सेफगार्डिंग द नेशन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस दे हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल करेज एंड रेजिलियंस इन डाइवर्स ऑपरेशनल एनवायरमेंट्स फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट टू यूनाइटेड नेशन मिशंस देयर अनवेवरिंग डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म एग्जेम्प्लीफाइज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस Operation Sindoor stands as a testament to their valor, operational excellence and steadfast commitment to the nation.
2: Operation Sindoor iska jwalant udaharan.
3: Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has emphasized that the vision of Viksit Bharat cannot be achieved without developing the agriculture sector. Addressing the closing ceremony of Khet Bachao Abhiyan in Hisar, Haryana today, Mr. Chauhan informed that the government is working on developing a mobile app that will provide information regarding soil and the amount of fertilizer it requires. He urged farmers to use fertilizers and insecticides in their farms rationally in order to maintain the health of the soil. He also advised farmers to adopt the practice of organic farming. The government has extended the due date for filing of appeals before the Goods and Services Tax Appellate Tribunal, GSTAT, till the 31st of next month. According to the Ministry of Finance, an earlier notification dated September last year had notified today as the last date for filing of appeals before GSTAT. It is noted that the due date has been extended in view of the recent representations from various stakeholders highlighting technical difficulties due to the rush to file appeals on the GSTAT portal. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters as part of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls across the National Capital Territory of Delhi began today. As part of the exercise, over 13,000 booth-level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. India has reaffirmed its strong support for the Financial Action Task Force, FATF, describing it as an indispensable pillar of the global fight against terror financing and money laundering. The statement came after Pakistan criticized the FATF following the neighboring country's placement on the organization's grey list for increased monitoring. Speaking at a UN event on the sidelines of Counter-Terrorism Week, India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said attempts to question FATF's credibility reflect fear of scrutiny rather than genuine concerns. In FIFA World Cup, Germany has been knocked out of the tournament in the round of 32. They were eliminated by Paraguay in a shocking 4-3 penalty shootout defeat in Boston after the match ended 1-1 following extra time. With this win, Paraguay advances to the World Cup round of 16. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was up 13 points at 76,742, while the Nifty added 11 points to 23,958 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

धुन समझ के आप, धुन सुनकर आप समझ गए होंगे कि कौन सा गीत है, और गीत सुनकर मतलब गीत की धुन सुनकर आप समझ गए होंगे कि इसी गीत से जुड़ी हुई किसी हस्ती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वो हस्ती जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो हैं इस सुपर डुपर हिट सदाबहार गीत के वो फिल्म संगीत निर्देशक जिनकी आज पुण्यतिथि है। जी हाँ, 30 जून 1928 को जन्म लिया था कल्याण जी वीर जी शाह ने। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के एक स्तंभ, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। कलाकार बेमिसाल में आपके साथ मैं हूं आज नईम अख्तर। आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर आप ही का अपना आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल। कल्याण जी के बारे में बात करेंगे तो देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि आनंद जी का जिक्र ना निकले, और अगर आनंद जी का नाम हम न भी लें तो भी कल्याण जी के संगीतबद्ध किए हुए हर गीत में आनंद जी बराबरी के साथ शामिल हैं। दोनों की एक ऐसी सुपर डुपर हिट जोड़ी थी जिसने फिल्म संगीत को नए आयाम दिए, नई पहचान दी, नए सदाबहार गीत ऐसे दिए जो आज भी हिट हैं और आने वाले शायद सदियों तक हिट रहने वाले हैं। उन्हीं कल्याण जी आनंद जी में से हम आज कल्याण जी के बारे में बात कर रहे हैं जो संगीतकारों की जोड़ी में से एक थे। इनका जन्म 30 जून 1928 को हुआ था। 24 अगस्त 2000 को कल्याण जी वीर जी शाह इस दुनिया को अलविदा कह गए। 40 साल से ज्यादा के करियर में उन्होंने लगभग 250 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया और कई जाने माने फिल्म निर्माताओं और गायकों के साथ भी काम किया। तो चलिए उन्हीं की फिल्मों के गीतों के साथ आगाज करते हैं और चलते हैं इस सफर पर, ऐसे सफर पर जिसमें हम आपको चाहे जितने गीत सुनवा दें 40 मिनट के इस कार्यक्रम में पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतने गीत हैं उनके कि अगर हम उनकी एक एक लाइन भी सुनवाएं तो भी कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। तो हम आपकी नजर करने की कोशिश करेंगे, कम से कम 6-7-8 गाने सुनते हैं। पहला गीत उपकार फिल्म का जो 1967 में प्रदर्शित हुई थी।

कल्याण जी आनंद जी वाले जोड़ी के संगीतकार कच्छ के कुंदरोड़ी गांव के रहने वाले थे, और ये कुंदरोड़ी गांव जो है वो गुजरात में रहता था, मतलब बसा हुआ था। तो कच्छ के कुंदरोड़ी गांव से मुंबई आकर किरियाने की दुकान शुरू करने वाले एक व्यापारी के बेटे थे। उन व्यापारी का नाम था वीर जी शाह। उनके पूर्वजों में एक बहुत जाने माने लोक संगीतकार गुजरे थे। उन्होंने अपनी शुरुआती साल जो थे मुंबई के गिरगांव इलाके में मराठी और गुजराती माहौल और आसपास रहने वाले कुछ संगीतकार बेहतरीन संगीतकारों के बीच में बिताए। कल्याण जी ने एक संगीतकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत क्ले वायलिन नाम के एक नए इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र से की। जी आज तो क्ले वायलिन आप जानते हैं कि बहुत फेमस है, लेकिन इसको फेमस करने में सबसे बड़ा जो हाथ रहा वो कल्याण जी का रहा। कैसे? जिन श्रोताओं को पता है वो तो जानते ही हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है या नहीं याद है उनकी याद ताजा करवा देते हैं कि ये वही वाद्य यंत्र है जिसका इस्तेमाल कल्याण जी ने 1954 की फिल्म नागिन के मशहूर नागिन बीन संगीत में किया था। इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने, या सिर्फ कल्याण जी ने नहीं दिया था, संगीत हेमंत कुमार ने दिया था। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में फिल्म नागिन बनी थी, लेकिन इसकी जो बीन थी वो बीन इतनी मशहूर हुई कि वो सिर्फ एक गाने में नहीं कई गानों में थी। पूरी फिल्म में कई जगह उस धुन को सुनवाया गया था, और आज भी अगर हम फिल्म इतिहास उठाकर देख ले तो फिल्मी इतिहास में आज भी सबसे ज्यादा नागिन का जो संगीत मशहूर है वो यही बीन संगीत मशहूर है। और वो बीन संगीत जो था वो बीन से नहीं बल्कि क्ले वायलिन से दिया था कल्याण जी ने। क्यों ना उसी फिल्म का उस गीत को सुनते हैं जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ये बीन धुन आप तक और हम तक पहुंच सके।

कल्याण जी अपने भाई आनंद जी के साथ हिट हुए, लेकिन इस फिल्म में संगीत देने के बाद जब बहुत उनकी ख्याति दूर दूर तक हो गई, सब लोगों को पता चल गया कि कल्याण जी जो हैं बहुत अच्छा क्लेवॉलिन बजाते हैं, तो लोगों का ध्यान उन पर गया, मतलब उस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का ध्यान उन पर गया। इधर कल्याण जी और आनंद जी दोनों पहले ही संगीत के साथ तो जुड़े हुए हुआ ही करते थे, इसके बाद कल्याण जी ने का हौसला और बुलंद हुआ और उन्होंने अपने भाई आनंद जी के साथ कल्याण जी वीर जी एंड पार्टी नाम का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप शुरू किया, जिसने मुंबई और मुंबई के बाहर संगीत कार्यक्रम आयोजित किए। शायद भारत में लाइव संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की ये पहली कोशिश थी, यानी कि इसका भी श्रेय कल्याण जी आनंद जी को जाता है, खासतौर से कल्याण जी को। संगीतकार के तौर पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कल्याण जी आनंद जी का आना एक बेहद अहम मोड़ था। ये वो दौर था जब एस डी बर्मन, हेमंत कुमार, मदन मोहन, नौशाद, शंकर जयकिशन और ओपी नैयर जैसे संगीत निर्देशक, दिग्गज संगीत निर्देशक हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में मशहूर थे, और वो फिल्म संगीत का ऐसा सुनहरा दौर था कि जिसको आज भी याद किया जाता है। उस दौर के जो गीत हैं वो हर दौर के गीतों पर हावी रहे हैं, आज भी हैं। ऐसे में उन सब दिग्गजों के बीच अपनी जगह बनाना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन कल्याण जी अपने भाई आनंद जी के साथ मिलकर इस कोशिश में न सिर्फ कामयाब रहे बल्कि अपना नाम और अपने गीतों को उन्होंने चरम तक पहुंचाया, और उस दौर के ही नहीं बल्कि हर दौर के लोगों को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि वाकई कल्याण जी आनंद जी जैसा संगीत और कहीं नहीं।

आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 1:31.02 हुए हैं। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, मैं नईम अख्तर और बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम कल्याण जी आनंद जी वाली जोड़ी के कल्याण जी की। कल्याण जी जो हिंदी फिल्मों के बहुत ही मशहूर फिल्म निर्देश संगीत निर्देशक रहे हैं और आज जिनकी पुण्यतिथि है, उन्हीं की फिल्मों के गीत आप तक पहुंचा रहे हैं हम। सुनते रहिए कार्यक्रम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा, कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीत निर्देशन में जितने भी गीत बने हैं उनमें से अगर हम सिर्फ सारे नहीं सिर्फ हिट फिल्मों की सिर्फ एक एक लाइन भी लें तो आज का कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। तो चंद गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

बाकायदगी के साथ जब कल्याण जी ने आनंद जी के साथ मिलकर अपने संगीत करियर की शुरुआत फिल्मों में की तो वो था 1950 का दशक। 1950 के दशक में 1954 की फिल्म महापूजा, 1956 की फिल्म बजरंगबली, 1959 की फिल्म

सट्टा बाजार इन फिल्मों के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि इन फिल्मों का जो संगीत था वो कोई खास फेमस नहीं हुआ। 1960 में राज कपूर की फिल्म छलिया और दिल भी तेरा हम भी तेरा ऐसी फिल्में थी जो धर्मेंद्र ने जिस फिल्म में काम किया था, इन फिल्मों से इन्हें पहचान मिली। हालांकि पहली फिल्म यानी कि छलिया जो थी उसने कमर्शियल तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया, दिल भी तेरा हम भी तेरा बहुत कामयाब नहीं रही, लेकिन दोनों ही फिल्मों के जो गीत थे वो बहुत हिट साबित हुए। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने ब्लफ मास्टर, फूल बने अंगारे, दूल्हा दुल्हन जैसी ठीक ठाक सफल फिल्मों के लिए संगीत दिया और आखिरकार 1965 में कई सफल फिल्मों के साथ अपनी जगह बनाई। इनमें से जब जब फूल खिले और हिमालय की गोद में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित हुई। आज भी इनके गीत जो हैं उस जमाने में चार्ट बस्टर थे और आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इन फिल्मों का संगीत 1960 के दशक का चौथा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ। उन्हीं में से एक हिमालय की गोद फिल्म के, क्योंकि उस फिल्म के ना सारे ही गाने हिट हैं, कौन से छोड़े कौन से बताएं समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ये एक गीत आपको सुनाना है, चुलबुला सा गीत है, मजा आएगा सुनकर आपको।

ये तो हुई बात 50 के दशक की। 1960 के दशक की अगर हम बात करें तो उपकार, सरस्वती चंद्र, हसीना मान जाएगी और बंधन जैसी फिल्मों के साथ उनकी सफलता का सिलसिला जारी रहा। ये सभी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट फिल्में साबित हुई, खासकर उपकार जो एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसकी साउंड ट्रैक एल्बम उस दशक का सबसे ज्यादा बिकने वाला छठा एल्बम था, जिसके गीत आज भी लोकप्रिय हैं और जिसके एक गीत के साथ हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। उसके बाद गोविंद सरैया की फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए कल्याण जी आनंद जी ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता। इसके

गाने लता मंगेशकर का गाया सोलो गाना मैं तो भूल चली, बाबुल का देश, और लता मंगेशकर के साथ साथ मुकेश का गाया ड्यूएट फूल तुम्हें भेजा है खत में। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों यानी के मासेस और क्रिटिक्स दोनों ने ही बहुत तारीफ दी, बहुत प्रशंसा दी, और क्यों ना उसी फिल्म का वो गीत सुनवाया जाए जो हम सबके दिलों में ताजा है और जिसको सुनकर ही जिंदगी आसपास कुछ महकने लगती है फूलों की तरह।

60 के बाद आया 70 का दशक, जिसमें कल्याण जी आनंद जी के करियर में एक मील का पत्थर साबित किया, क्योंकि उन्होंने उस साल उस दशक में दी 8 बड़ी हिट फिल्में। 1970 के साल में जॉनी मेरा नाम, गोपी, सफर, पूरब और पश्चिम, घर घर की कहानी, गीत, सच्चा झूठा और कब क्यों और कहां, एक से बढ़कर एक फिल्में। और 1971 और 72 में भी उनकी कामयाबी का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। 1971 में मर्यादा, 72 में अपराध और 72 में ही विक्टोरिया नंबर 203, इन फिल्मों के सुपरहिट गीतों का संगीत दिया। और इसके साथ ही कल्याण जी आनंद जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन के साथ मिलकर उस दौर के 3 प्रमुख संगीत निर्देशकों में अपनी जगह बना ली। जी हाँ, 3 प्रमुख संगीत निर्देशकों में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 का की तिकड़ी फिल्मों में शुरू से जारी रही है। राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार की तिकड़ी, आज के दौर में सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान की तिकड़ी। और यहाँ अगर हम फिल्म के संगीत निर्देशकों की बात करें तो कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन।

जी हाँ, तेजी का जमाना नहीं, तेजी का वक्त भी है, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 3-4 मिनट बचे हैं जिसमें हमको आपको एक गीत और सुनवाना ही है। 1970 के दशक के बीच में उनकी सफलता का सिलसिला जारी रहा। कोरा कागज, फाइव राइफल्स, जहाज की सफाई, धर्मात्मा, 1975 की फिल्म और चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक, दो अनजाने, बैराग, हेरा फेरी, कालीचरण, अदालत जैसी फिल्में उन्होंने की और ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही। उसके बाद आई अनिल गांगुली की फिल्म कोरा कागज, जिसके लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का, अपना पहला और एकमात्र फिल्म बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और इस

बहुत कामयाब, बहुत ही मुद्दे वाली फिल्म थी। अभी कल्याण जी के बारे में बहुत सारी बातें करना बाकी हैं, बहुत सारे गीत सुनवाना बाकी हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा हमारे पास वक्त नहीं है, मुश्किल से एक मिनट बचा है, तो इस गीत को पूरा सुनिए। बस इतना बता देते हैं 24 अगस्त 2000 को मुंबई में 72 साल की उम्र में कल्याण जी का निधन हो गया। अभी इजाजत दीजिए नईम अख्तर को, कलाकार बेमिसाल से।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। यूरो बैंक ने यूनान से भारत रुकूमात की मुंतकली में सहूलियत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तौसी में संगमील करार दिया है। दिल्ली और चार रियासतों में वोटर फेहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी का अमल शुरू हो गया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुसरद कर दिया है। मौसमियात महकमे ने उत्तर प्रदेश के बाज हिस्सों बिहार, वस्ती, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले दो दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मराकश नीदरलैंड्स को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। यूरो बैंक ने यूनान से रुकूमात भारत मुंतकिल करने के लिए यूपीआई पर मबनी रुकूमात की मुंतकली की सर्विस का आगाज किया है, ताकि कम से कम खर्च पर कम वक्त ही में रकम भारतीय सार्फीन को मुंतकिल करने में सहूलत हो सके। यह पहल भारत की अदायगियों से मुतालिक कौमी कारपोरेशन NPCI के साथ मस्कूरा बैंक के कलीदी इश्तराक का हिस्सा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कॉमर्स और सनातों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि यूरो बैंक में मस्कूरा खिदमात का आगाज आलमी सतह पर भारत के डिजिटल अदायगी इको निजाम की तौसी में एक अहम संगमील है। उन्होंने कहा है कि आलमी सतह पर यूपीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत और इसकी 27 से तकनीक पर मबनी हल निकालने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए में एतमाद की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश का दो दिन का दौरा कर रही हैं। वो आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की पहली तकरीब में शिरकत कर रही हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मुकम्मल करने वाले 373 तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 10 खवातीन समेत उम्दा तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 13 तलबा को गोल्ड मेडल भी पेश करेंगी। सदर जमहूरिया आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। कौमी राजधानी दिल्ली और चार रियासतों में वोटर फेहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी SIR के तहत घर घर जाकर राय दहिंदगान के बारे में मालूमात हासिल करने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कर्नाटक में सभी 31 जिला चुनाव दफातर में इस काम के लिए 59,000 से ज्यादा बूथ लेवल अफसरों को मुतय्यन किया गया है। इस अमल में

0: हजार इजाफी जिला चुनाव अफसर, 224 चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर और 7,556 बीएलओ सुपरवाइजर्स भी शामिल हैं। सियासी पार्टियों ने 1,15,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट मुकर्रर किए हैं जो बीएलओस के साथ मिलकर काम करेंगे। इधर कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली में भी एसआईआर के तहत घर घर जाकर चुनाव एनुमरेशन फॉर्म तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके तहत 13,000 से ज्यादा बीएलओस अगले महीने की 29 तारीख से घर घर जाकर सभी मौजूदा राय दहिंदगान को एनुमरेशन फॉर्म तकसीम करेंगे। दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में दावे और एतराजात 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि राय दहिंदगान ये इनोमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। इधर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कौमी राजधानी में सभी अहल राय दहिंदगान से अपील की है कि वो नजरसानी के इस अमल में शामिल हों। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा है कि ज़रई शोबे को फरोग दिए बगैर विकसित भारत के नजरिए को हासिल नहीं किया जा सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कर रही है जिससे मिट्टी और ज़रई जमीन को दरकार कीमियावी खाद की मिकदार के बारे में जानकारी फराहम की जा सकेगी। वजीर मौसूफ ने किसानों पर जोर दिया कि वो अपने खेतों में फर्टिलाइजर और जरासीम कुश दवाओं का इस्तेमाल मुतवाजिन अंदाज से करें ताकि ज़रई जमीन दुरुस्त हालत में रहे। उन्होंने किसानों को ये सलाह भी दी कि वो ऑर्गेनिक खेती का तरीका इख्तियार करें।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि भारतीय फौज की ताकत किसी शख्स वाहिद से नहीं बल्कि उसके फौजियों, कमांडरों, रिटायर्ड फौजियों, कुंभों और भारत के शहरियों के नाकाबिल मुतजलजल यकीनों एतमाद से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने यह बात आज नई दिल्ली में फौज के सरबराह के तौर पर अपने ओहदे से सुबुकदोश होते हुए कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 4 दहाइयों से ज्यादा भारतीय फौज में खिदमात अंजाम देना उनके लिए सबसे बड़ा एजाज रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तईं अपनी हिमायत का इरादा किया है और कहा है कि दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम किए जाने के खिलाफ आलमी मुहिम और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में यह एक अहम सुतून है। भारत के इस बयान से कबल पाकिस्तान ने FATF पर नुक्ताचीनी की थी क्योंकि ज्यादा निगरानी की खातिर पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। दहशतगर्दी से निपटने से मुतालिक हफ्ते के मौके पर अक्वामे मुत्तहिदा के एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि FATF की साख पर सवाल उठाने की कोशिश से हकीकी तशवीश की बजाय जांच के खौफ की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों को FATF के नामुवाफिक तजजिये का सामना है उन्हें अपनी कमी और कोताहियों पर तवज्जो देनी चाहिए और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम बनाना चाहिए। कई आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक्वामी बरादरी ने अफगानिस्तान के पक्तिया, पक्तिका और कुनार सूबों में पाकिस्तानी फौज के फजाई हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत आम शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इससे कबल तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने बताया कि ये फजाई हमले 28 जून की रात को किए गए थे जिनमें 36 आम शहरी मारे गए जबकि 163 जख्मी हुए। इन हमलों में 3 रिहायशी मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने फौरी तौर से मुखासमत रोकने पर जोर दिया है और सभी फरीकों से कहा है कि आम शहरियों का तहफ्फुज़ किया जाए। मगरबी एशिया में कशीदगी को कम करने की सिफारती कोशिशों में इब्तदाई रुकावटें पैदा हो गई हैं क्योंकि अमरीका और ईरान दोहा में अगले दौर के तबादले ख्याल से मुतालिक अलग अलग नजरियात पेश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि ताजा बातचीत दोहा में हो सकती है। अलबत्ता ईरान ने यह कहते हुए इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का सरदस्त कोई मंसूबा नहीं है। मौसमियात के महकमे ने उत्तर प्रदेश के बाद हिस्सों बिहार वस्ती

0: महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले दो दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय साहिली मुहाफिजी दस्ते के बहरी जहाज सचेत ने मंगलोरो के साहिल के नजदीक समंदर में तलाश और बचाव कार्रवाई में माहिगीरी के काम आने वाली मुश्किल में घिरी हुई भारतीय कश्ती मंजू माथा में से 6 माहिगीरों को बचाया है। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी नॉकआउट मरहले में टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। बोस्टन में पैराग्वे ने पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी को 3-4 से हरा दिया। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया था। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम को पहली मरतबा पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इधर पैराग्वे इस कामयाबी के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। यूरोबैंक ने यूनान से भारत रुकूमात की मुंतकली में सहूलत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तौसी में संग मील करार दिया है। दिल्ली और 4 रियासतों में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी का अमल शुरू हो गया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुस्तरद कर दिया है। मौसमियात महकमे ने उत्तर प्रदेश के बाज हिस्सों बिहार, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले दो दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and 4 states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Central Maharashtra, Konkan and Goa for next 2 days. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in 4-3 penalty shootout. Morocco enters round of 16 defeating the Netherlands. The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India, enabling Indian customers to transfer money near instantly at minimal costs. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly, with transaction costs reducing drastically to a fraction of conventional transfer costs. Mr. Goyal said the increasing global acceptance and appreciation of UPI reflects the trust in Prime Minister Narendra Modi's vision of building technology-led solutions that create value beyond borders and deepen partnerships for shared growth and prosperity. The Special Intensive Revision SIR of electoral rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise, in Delhi over 13,000 booth-level officers, BLOs, will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Addressing the media yesterday, Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, said claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. In Karnataka, door-to-door enumeration of voters has

0: Brazil has entered the round of 16 after a 2-1 victory over Japan in Houston, US. Brazil will next face either the Ivory Coast or Norway on Sunday in East Rutherford, New Jersey in the round of 16. With Neelam's report, this is Jigyasa Pandey for Akashvani News, Delhi.
1: The Indian Meteorological Department, IMD, issued an orange-coloured warning for very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, Konkan and Goa for the next 2 days. Similar conditions are also expected over parts of Sikkim, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe, sub-Himalayan West Bengal for the day. IMD said a gradual fall in maximum temperatures by 4 to 5 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 to 4 days. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh today. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was down 63 points to 76,665, while the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and 4 states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. यूरोबैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया. दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू. पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया. ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान. और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर. मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है. ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है. एक रिपोर्ट.
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं. इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है. श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की. उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं. समाचार कक्ष से निखिल कुमार.
2: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके. कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के

0: अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि

0: हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जन

0: जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम किसान की बात कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ हैं।
2: जी हां किसान मित्रों, आज मैं हूं आपके साथ शशि कपूर।
1: शशि, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे अनाज की जो सेहत के लिए लाभदायक होने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आज हमारा विषय भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे लोग सुनना चाहेंगे और उस पर अमल भी करना चाहेंगे, क्योंकि ये अनाज जिसे श्री अन्न कहा जाता है, ये एक तो किसान भाइयों के लिए और हम सब के लिए सेहतमंद होने के साथ साथ किसान भाइयों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि कम लागत में ये ज्यादा उत्पादन देता है और हम सबके लिए इसलिए उपयोगी है कि इसमें बहुत ही पोषक तत्व होते हैं और पोषण से भरपूर माना जाता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अनाज की जो किसानों की आय में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है, साथ ही हम बता देते हैं कि हमारा आज का विषय है श्री अन्न मिलेट्स बाजरे से प्राप्त स्मार्ट फूड, एक नवीन उत्पाद। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रंजीत रंजन, प्रधान वैज्ञानिक कृषि रसायन विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैम।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि श्री अन्न की हम बात करें या बाजरे की बात करें, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि श्री अन्न या मिलेट्स क्या है और इन्हें स्मार्ट फूड क्यों कहा जाता है।
3: देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है आज यहाँ रखा है। बाजरे की बात करें तो बाजरा को भगवान का अन्न भी कहते हैं
1: जी,
3: क्योंकि बाजरे में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की एक जरूरत या आवश्यकता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो।

0: को मैं बताऊं कि बाजरा एक ऐसा अन्न है जिसमें कुछ इस प्रकार के फिनोलिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे आज के बीमारी जैसे डायबिटीज इनको रोकता है। तो इस ढंग से हमारी शरीर की जो एक बेसिक आवश्यकता है वो सारे पोषक तत्व इस बाजरे में पाए जाते हैं और इसलिए बाजरा को शायद हम भगवान का अन्न या स्मार्ट फूड बोलते हैं।
1: जी, तो शशि, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, हमारे सभी श्रोताओं को हम अपना टेलीफोन नंबर बता देते हैं कि अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब देंगे। तो शशि, नंबर बता दें।
2: बिल्कुल, तो किसान मित्रों, नंबर वही पुराने हैं जो आप जानते हैं, 23-42-10-81, और दूसरा नंबर है 23-42-10-83। इन दोनों नंबर पर आप फोन करके अपनी समस्या का हल, जो आज का विषय है श्री अन्न बाजरे से प्राप्त स्मार्ट फूड, एक नवीन उत्पादन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो लिए नाम लेते ही हमारे श्रोता हमसे जुड़ने जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं कौन श्रोता है हमारे साथ। हेलो
3: जी, नमस्कार। जी, आवाज आ रही मेरी?
1: बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल पूछें।
3: मेरा नाम आशीष भदौरिया है, हम इटावा से बोल रहे हैं।
1: आशीष भदौरिया जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और
3: उत्तर प्रदेश इटावा से बोल रहे हैं।
1: इटावा से बोल रहे हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सवाल पूछें।
3: सवाल मैम ये मेरा, मैं जैसे बाजरे का जो होता है कहते हैं उसका सही उपयोग सर्दियों में होता है, तो क्या गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? डॉक्टर साहब से ये पूछा था। और दूसरा, इसमें आजकल मिलावटी आ रहा, जो पहले देसी बाजरा होता था वो उसकी अब फसल नहीं मिलती, उसका अनाज नहीं मिलता है।
1: हाँ जी,
3: तो उसके लिए हम लोग क्या करें और क्या अनाज मिले तो उसकी फसल कैसे उगाई जाए? क्योंकि अब सब जगह जो मिलता है बीज वो दूसरा वो मिलता है, फार्मी वाला जो पोर्टिकल कहते हैं वो वाला।
1: अच्छा, चलिए ठीक है, आपने सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, डॉक्टर साहब बताइए।
0: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बाजरे का जो है ठंडी में तो उपयोग हम करते हैं, बट गर्मी में इसके उपयोग करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक लोगों की मान्यता है कि इसकी तासीर गर्म होती है और गर्मी में हमें बाजरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। बट जो है अनुसंधान ये कहता है कि हाँ, गर्मी में हमें थोड़ा कम उपयोग करना चाहिए, बट लेकिन इसमें इतने सारे पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि अगर ठंडी में हम, मान लीजिए हर एक दिन हम अगर बाजरे के किसी पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, तो गर्मी में एटलीस्ट एक दिन छोड़कर एक दिन हम एक ना एक कोई पदार्थ का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ये हमारे शरीर के बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर की जरूरत है उसकी पूर्ति करता है। आपका दूसरा सवाल जो बीज का है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी अधिकृत जो है संस्था है या अनुसंधान केंद्र हैं, अगर वहाँ से आप बीज लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी,
1: प्रमाणित संस्था से भी ले सकते हैं किसी। तो डॉक्टर साहब, जो बाजरा है या श्री अन्न है, तो इस दिशा में जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है बहुत बड़ा काम कर रहा है, आप भी वहीं से हैं, तो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे इससे फूड बनाए जा रहे हैं जो कि बाजार में भी आ रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं?
0: हाँ, जो बाजरा है, अगर आप इसके कुछ प्रॉब्लम्स को अगर आप समझें, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो बाजरा के प्रसंस्करण में आ रही है वो है इनकी शेल्फ लाइफ को लेके। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इस पे लगातार काम कर रहा है और हम लोगों ने ऐसी तकनीक डेवलप की है जिसमें आप इसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने तक जो है हम लोगों ने बढ़ा दिया है। अच्छा। तो ये जो एक बहुत बड़ी दिक्कत बाजरे के केस में आती थी, तो इसमें आप 6 महीने तक जो भी पदार्थ आप बना रहे हैं या उसका प्रसंस्करण जो करके आप पदार्थ बना रहे हैं उसको 6 महीने तक आप रख सकते हैं, आप उसको आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। दूसरा, आपने बात की कि क्या क्या प्रोडक्ट हमारे यहाँ बना है, तो हम लोगों ने जो इसकी दिक्कतें हैं उसको दूर करते हुए कुछ एक जो हमारे बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, जैसे हलूर। अब बाजरे में हम मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनुसंधान होकर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसमें पतली और फुलके टाइप की आप रोटी बना सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और कोई भी आदमी बना सकता है, मींस पहले मोटी रोटी बनाने के लिए भी आपको जो है एक तकनीक की जरूरत होती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने ऐसा भी प्रोडक्ट बनाया जैसे डिवाइन डो है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया डायबिटीज बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। हर एक आदमी जो है जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो नहीं खाना चाहते, लेकिन इस केस में हम लोगों ने जो है स्वीट पोटैटो के स्टार्च को निकाल कर और बाजरे में उसका जो है संस्करण किया है इस ढंग से। अच्छा। कि ये डिवाइन टू आप कितने भी खाएं ये आपके खून में शुगर को जो है नहीं वो नहीं बढ़ाएगा। और आपको इससे फायदा क्या है कि

0: आपको जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो आयरन हो, जिंक हो, अच्छे प्रोटीन जिसको जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड ज्यादा हो, या लिपिड्स, ये आप जो है बाजरे के थ्रू अपने शरीर में ले पाएंगे।
1: तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी मौसम में इसको खा सकते हैं।
0: हाँ जी,
1: कोई नुकसान नहीं,
0: कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान।
1: तो डॉक्टर साहब, ये हमारी सेहत के लिए कैसे स्वास्थ्यमंद हो सकते हैं, और आजकल जिस तरीके से बाजार में भी और हमारी सरकार भी श्री अन्न को लेकर बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, और ये भी कहा जाता है कि हर किसी की थाली में एक श्री अन्न के रूप में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये क्यों इतना हो रहा है और हमारे सेहत के लिए कितना लाभदायक है?
0: देखिए, मैं इस बात का जवाब इस ढंग से दूंगा कि अगर आप याद करें हमारे पूर्वज, जो जब वो अपने खाने में एक ना एक कोई श्री अन्न का पदार्थ उनके थाली में होता था, जब से हमने इसको दूर किया, आप देखें हमारी बीमारियां या जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज है इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और अभी 2018 में हमने जो है एक पूरा मिलेट्स को एक आगे लाया और हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया, 2023 हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया, और अब हर एक आदमी की जुबान पर जो है श्री अन्न या जो है मिलेट्स के ये शब्द हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इसके सेवन करने से हम उसको दूर नहीं, कंट्रोल कर सकते।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जैसा कि हमारे जो किसान मित्र हैं, साल में दो बार बाजरे की खेती करते हैं, दो बार बाजरा उगाते हैं, तो दोनों की जो पोषण गुणवत्ता, क्या अंतर है, दोनों में समान है?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बाजरा बेसिकली C4 प्लांट्स है, मीन्स इसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है, इसे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर हो या पानी हो इसकी जरूरत नहीं होती, इसे बहुत उर्वरक रिच जो है मिट्टी की जरूरत नहीं होती। तो दो बार जो उगाते हैं इसमें क्वालिटी वाइज, जो पोषण वाइज है, बहुत ज्यादा फर्क बीज में नहीं आता
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जो लोग, जो किसान भाई बहन इसका प्रसंस्करण करके नए नए उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो प्रसंस्करण करने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती हैं?
0: जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाजरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी शेल्फ लाइफ की है। इसके जो शेल्फ लाइफ है वो ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन में ये खराब हो जाता है, एक बदबू सी आ जाती है और बहुत बार एक कड़वापन आता है जो हमें पता नहीं चलता, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है। दूसरी दिक्कत जो है, एक ये जो सोच है, लोग ये मानते हैं कि हम सिर्फ ठंडे में ही बाजरा खा सकते हैं, और जबकि अब बहुत सारे ऐसे पदार्थ आए हैं जिसको आप पूरे साल आप इसका सेवन कर सकते हो और ये बहुत ही फायदेमंद हमारे शरीर के लिए होता है। तो बस ये चीजें हैं, अगर आपके पास तकनीक है जिससे आप शेल्फ लाइफ बढ़ा सको तो बाजरे से आप वो सारी चीजें बना सकते हो जो आप गेहूं या चावल से बना सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, एक जो जब हम अपनी परंपराओं की बात करते हैं तो ये हमारा परंपरागत फूड भी माना जाता है, और शशि देखो ना, हमारी जो दादी हुआ करती थी बाजरे की खिचड़ी बनाया करती थी, जो कि बहुत ही पोषण से भरपूर हुआ करती थी, साथ में छाछ होती थी, और गर्मियों के मौसम में तो छाछ के साथ अगर खाया जाए तो कहते हैं इसका एक अलग ही तालमेल बन जाता है। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई इसके अलग अलग उत्पाद बना रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई प्रशिक्षण का भी प्रावधान रखा गया है?
0: जी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड JTMU यूनिट है, जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट, वहाँ हम इस टाइप की ट्रेनिंग जो है वो देते हैं, किसान भाई हो या औरतें हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उनको हम बुलाते हैं और जो एक्सपर्ट्स इनके हैं वो उनको ट्रेनिंग ही नहीं देते, उनको सारी चीजें बताते हैं, कैसे बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है। तो आपका एक बार जो हाथ हम पकड़ते हैं तो आपको सारी चीजें समझाई जाती है, ताकि इसको आप अपने आय में जो है इसको जोड़ सकें और उसको दुगुना कर सकें।
1: तो ट्रेनिंग का कितनी अवधि रहती है, कितना वक्त रहता है?
0: हाँ, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, जनरली 1 वीक से हमारा स्टार्ट होता है, और अगर हम 2-3-4 प्रोडक्ट एक साथ अगर कर रहे हो तो 15 से 20 दिन तक का हम ट्रेनिंग जो है
1: निःशुल्क। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है हमारे सरकार का, और आप लोग आइए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, सीखिए कि किस तरीके से। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा शेल्फ लाइफ की, अगर शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए?
0: जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तकनीकी डेवलप किया जिसे हम हाइड्रोथर्मल इंफ्रारेड ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें हम बाजरे के अन्न जो दाने होते हैं उनको एक छोटा सा ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद फिर उसको क्विक जो है जल्दी से सुखा कर और उसके आटे बनाते हैं। तो उसमें यह है कि 6 महीने तक उसमें ना कड़वापन आएगा और ना उसमें जो है एक बदबू, जो मैंने कहा जिसको रेंसिडिटी भी कहते हैं, वो नहीं आएगी उसमें। अब उस आटे की ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके चाहो तो रोटी बना लो, चाहो तो उसके कोई प्रोडक्ट बना लो, वो प्रोडक्ट

0: खराब 6 महीने तक नहीं होगा। तो इससे फायदा ये है कि आप अपने खाने में तो प्रयोग कर ही सकते हो, यूज कर सकते हो, साथ में इसको अपने बिजनेस के लिए जो है, आई के लिए इसको आप इसके प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो ये एक जो है टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ डेवलप हुई है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात हो रही है बाजरे से प्राप्त नवीन उत्पाद की, तो हम आजकल आप बताइए कौन कौन से नवीन उत्पाद हैं वो बाजरे से बनाए जा रहे हैं, और इसके अलावा हमारे जो किसान भाई खेती तो करते ही हैं बाजरा की, अगर वो बनाएं तो

0: या जो बूढ़े लोग हैं, अगर उनको हम ये देते हैं, चूंकि प्रोटीन इसमें अप्रॉक्स 18% के आसपास, तो उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। डिवाइन डो, जैसा कि मैंने बोला, इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च बहुत ज्यादा है, तो अगर किसी को डायबिटीज है, अगर आप ये उनको देते हैं, तो उनको जो है ग्लूकोज उनके शरीर में वो स्पाइक नहीं करेगी।
1: और कहते हैं आयरन का भी बड़ा अच्छा खजाना माना
0: जाता है। आयरन और जिंक बहुत ही ज्यादा इसमें पाया जाता है, और इसमें यूनिक पॉलीफिनॉल्स जो है वो भी बहुत पाया जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि पॉलीफिनॉल्स बहुत जगह हमारे बहुत सारे शरीर के पाथवे को जो है वो मदद करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को कंट्रोल करता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, यूं तो श्री अन्न में बहुत सारी चीजें, जैसे ज्वार है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, सावा है, बहुत चीजें शामिल हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं खासतौर पर बाजरे के ऊपर एक प्रकाश डाल रहे हैं। बातें और भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: आप समय कार्यक्रम किसान की बात, और आज के इस कार्यक्रम का विषय है श्री अन्न बाजरे से प्राप्त स्मार्ट फूड, एक नवीन उत्पाद।
7: और हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रंजीत रंजन, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि रसायन संभाग पूसा नई दिल्ली से। और हमारे बहुत से श्रोता हमसे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम है ही इतना बढ़िया कि हमारे किसान भाई और अन्य श्रोताओं के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि आज का जो विषय है वो है बाजरा, यानी कि श्री अन्न। तो डॉक्टर साहब, जब हम बाजरे की बात करें, जैसे अभी हमारे एक श्रोता ने पूछा था कि मौसम के अनुसार खाना चाहिए, आपने बताया कि अब इसे किसी भी तरीके से खाया जा सकता है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उस पर रिसर्च करके एक नया उत्पाद बनाया, तो क्या इसी उत्पाद के सिलसिले में और भी आगे कुछ ऐसे नए रिसर्च किए जा रहे हैं इस पर?
8: हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि शेल्फ लाइफ जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या इसमें है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बहुत सारी तकनीकियां डेवलप की जा रही है।
7: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, पूछते हैं उनसे कहाँ से जुड़े हैं। और हेलो।
9: हेलो,
7: हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें।
9: मोहम्मद तबरेज, बिहार से बोल रहे हैं।
7: जी, आप बिहार से? अच्छा, बिहार से बोल रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें।
9: जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं, और कौन कौन सी खाद डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, इसका जानकारी हमको चाहिए।
7: देखिए, आज का जो हमारा विषय है, बाजरे से जो उत्पाद बनाए जाते हैं, प्रसंस्करण किया जाता है, उसे उत्पाद बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं, इस विषय पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम आपके सवाल का हमारे एक्सपर्ट जवाब जरूर देंगे। जी डॉक्टर साहब, बताएं।
8: एक्चुअली धान के लिए तो मेरे ख्याल से जो धान के एक्सपर्ट हैं वो अगर जवाब दें तो
7: जी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि धान की जगह हम और क्या उगा सकते हैं।
8: हाँ, आपने मेरे ख्याल से किस क्षेत्र का नाम बताया?
7: बिहार से है ये।
8: बिहार में किस क्षेत्र से है?

0: क्षेत्र तो नहीं बताया, लेकिन बिहार के आसपास की जो भूमि है वो किस तरीके की।
1: तो मेरे ख्याल से चूंकि आज हमारा टॉपिक भी है, तो मैं तो आपको ये सुझाव दूंगा कि आप भी बाजरा जो है, हाँ, बाजरे का प्रोडक्शन आप जो है बाजरा लगाएं। और बिहार में अब ये एक उभरता हुआ जो है क्रॉप है, और बाजरे को सिर्फ उगाएं ही नहीं, इसके अन्य को जो है प्रसंस्करण में लाकर और इसके पदार्थ भी बनाएं, ताकि जो दाम आपको पहले 20 या 25 रुपए किलो जो बिक रही थी, वो आप 100-150 रुपए किलो में जो है इसे बेच पाएंगे, तो आपकी आय भी दोगुनी हो जाएगी। और इसको दूसरा फायदा है कि आप अपने जो है दिन प्रतिदिन भोजन में भी
0: शामिल कर दें। डॉक्टर साहब, बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसे किसी भी तरीके की मिट्टी में उगाया जा सकता है?
1: हाँ जी।
0: या जलवायु का भी कुछ इसका ध्यान रखना पड़ता
1: है? नहीं, जलवायु का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा है और ये सी फूड प्लांट्स है, तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा तापमान का या बहुत ज्यादा पानी है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत ही कम है।
0: देखिए कितना अच्छा अनाज है और कितना पोषक तत्वों से भरपूर है, तो कोशिश करें। और डॉक्टर साहब, इसमें अगर रोजगार के रूप में हमारे किसान अपनाना चाहते हैं, तो इसको रोजगार के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है?
1: हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बट इसको मैं ऐसे जवाब दूंगा कि रोजगार में लेने से पहले इसकी खासियत को समझना जरूरी है।
0: जी।
1: अभी तक हम लोगों ने पोषक तत्वों की बात की। आपको मैं बता दूं, कॉन्स्टिपेशन आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है। आपको पता हो कि बाजरा में फाइबर 7-8% है, और ये कुछ एक ऐसे अन्न में आता है जिसमें इतनी ज्यादा फाइबर पाई जाती है, तो फाइबर हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। और जैसा कि मैंने पहले बोला, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फिनोलिक्स ये सब बहुत ज्यादा है, इसकी प्रोटीन ये सब बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। तो जो प्रोडक्ट हमने बताया, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने डेवलप किया है, तो हमारे जो यूनिट है JTMU यूनिट, वहां वो आए, उनको वो सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां दी जाएंगी और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और फिर उनको हम ये भी बताएंगे कि इस जानकारी को अपने बिजनेस मॉडल में कैसे वो शामिल करें, और इस पदार्थ को अपने जो है ब्रांडिंग करके उसको कैसे जो है वो बना भी सके, बेच भी सके और उसका फायदा भी कमा सके। ये सारी चीजें एक जगह बताई जाए।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, ये स्वास्थ्य के लिए तो है ही बहुत बढ़िया, क्या हमारे पर्यावरण के भी अनुकूल है?
1: ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसकी जो आवश्यकता है वो बहुत कम है, चाहे वो खाद हो चाहे वो पानी हो। तो अगर आप कम खाद डालते हो, तो आप जो है पर्यावरण को जो है उसको संरक्षित करते हो।
0: जी
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आप बता चुके हैं, लेकिन बात फायदे की चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो बात निकल कर ये आती है कि कोई भी हमारे किसान भाई श्री अन्न करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहिए, क्या उनको फायदा होगा,
0: किसानों को क्या फायदा होगा?
1: हाँ, देखिए, अगर आप कोई भी अनाज उगाते हो और उसको अगर आप बेचते हो, तो जो हमारी एक उसकी जो प्राइस, एक जो दाम है, वो आपको मिलती है। बाजरे के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको अपने जो है खाद्य पदार्थ में तो शामिल कर ही रहे हो, और दूसरा, अगर इसका आपने कोई भी पदार्थ, प्रसंस्करण पदार्थ बना दिया, तो उसकी आज इतनी डिमांड है। जब से कोविड, पोस्ट कोविड जो है, लोगों में एक इम्यूनिटी को लेके, एक पोषक तत्व को लेके इतनी ज्यादा जागरूकता आ गई है, स्वास्थ्य को लेकर इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि अगर आपने उसके फॉर्म को बदल दिया, तो खरीदार बहुत सारे हैं और यूज करने वाले बहुत सारे हैं।
0: डॉक्टर साहब, आजकल जब भी कोई हम खरीदारी करते हैं, तो सबसे पहले पैकेट पर ये देखते हैं कि इसमें पोषण तत्व कौन कौन से हैं, कहीं मैदा से तो नहीं बना हुआ है, कहीं ऐसा ऑयल तो नहीं है इसमें, कहीं ओबेसिटी के एक रीजन ना बन जाए। तो आजकल हमारे जो उपभोक्ता हैं वो भी बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो चलिए, इसलिए कि हमारा कार्यक्रम बहुत खूबसूरत है, तो एक खूबसूरत गीत के साथ भी इसको जोड़ते हैं।

0: बिल्कुल शशि, चित्रकार की बात आती है तो हमारी जो प्रकृति है, हमारा पर्यावरण है, हमारे पर्वत, नदियां, झील, सब कुछ अपने आप में एक बेहतरीन और खूबसूरत है जो हमारे जीवन का आधार है। और चित्रकार की बात होती है तो इसे ईश्वर ने ही बनाया है और प्रकृति ही हमारी ईश्वर है। देखिए, प्रकृति ने हमें कितने मौसम के अनुसार चीजें, फल, सब्जियां, अनाज दिए हैं। और आज एक खास अनाज, जो हम बाजरे की बात कर रहे हैं, श्री अन्न की बात करें, वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, बाजरे की बात करते हैं तो आपने एक चीज और भी, ये मिथ है, ये क्या है, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। बहुत लोग कहते हैं कि इसका छिलका उतार देना चाहिए तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है या बहुत हल्का हो जाता है, ये कहां तक सच है?
1: जो आपने बात की छिलका उतारने की, बेसिकली इसे डिकॉर्टिकेशन कहते हैं। ये एक टाइप की मिथ्या है जो लोग कहते हैं कि आप जो है छिलका उतार दीजिए और फिर बहुत ज्यादा शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। बेसिकली जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बाजरे के दाने में है, वो सारे जो है उसके छिलके कवर में ही होते हैं। तो अगर आप उसको उतार देते हो तो बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे आयरन हो गए, जिंक हो गए, आप उनको भी दूर कर रहे हो, तो वो निकल गई। तो बेसिकली जो है, जो जिसके लिए बाजरे को हम जो है अपने खाद्य पदार्थ में शामिल कर रहे हैं, वही बाहर चली गई, तो फिर शेल्फ लाइफ बढ़ाने ना बढ़ाने का कोई मतलब नहीं
0: है।
1: लेकिन ये सच्चाई है कि 2% के आसपास अगर हम डिकॉर्टिकेशन करते हैं तो शेल्फ लाइफ 2 से 3 महीने तक बढ़ जाती है।
0: तो थोड़ा करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। डॉक्टर साहब, एक समस्या और है कि जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनका तो आपको पता ही है कि वो खाने पर विशेष तौर पर कहते हैं हमें बाहर की चीजें खानी है, और अगर हम बाजरे से बनी चीजें उनको दें तो कैसे टेस्टी बनाया जा सकता है इस बाजरे के उत्पादों को, या घर में हम क्या कुछ बना सकते हैं उससे रिलेटेड?
1: देखिए, बाजरे की अगर आप मार्केट जाएं तो आज के टाइम में चाहे वो कुकीज हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे बिस्किट हो, बाजरे की जो भी पदार्थ आप ढूंढो आज मार्केट में अवेलेबल है। तो हमें ये चाहिए कि
0: हाँ जी
1: तो हमें ये चाहिए कि बच्चों को जो पसंद हो बाजरे की होनी चाहिए, हमें वो उनको देना चाहिए।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, चूंकि अब समय हमारा लगभग खत्म ही होता जा रहा है, तो चलते चलते आप हमारे सभी सुनने वालों को, किसान भाई बहनों को क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि बाजरे का उपयोग क्यों जरूरी है और किस तरीके से करें?
1: मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप ये एक नियम बना लें कि सप्ताह में 3 दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई एक पदार्थ हमारी बाजरे की होनी चाहिए। बस इस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्वास्थ्य हो, या आपकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की हो, या आपका मन हो, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, तो सारी चीजें आपकी तंदुरुस्त रहेगी।
0: क्योंकि इसे स्मार्ट फूड कहा जाता है, तो स्मार्ट फूड कहने के साथ साथ हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्गों के लिए भी क्या ये बहुत फायदेमंद हो सकता है?
1: हाँ जी, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन बहुत ही उत्तम क्वालिटी की पाई जाती है। तो चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, आज आपने श्री अन्न यानी बाजरे से बनने वाले स्मार्ट फूड और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, किसान भाइयों तक पहुंचाई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो शशि, जैसा कि आज का विषय था, और देखो शशि, आप तो खुद एक किसान हैं और ऐसे परिवार से आते हैं जहां आपके यहाँ खेती अच्छी

0: खासी होती है, तो बाजरे का जो है तो अपने थाली में भी आप शामिल करते हैं कि नहीं करते?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: करते हैं। तो चलिए अब हम भी अपने बच्चों को ये बताएंगे कि देखो बाजरा खाएं, बुजुर्ग भी खाएं, जवान भी खाएं और ताकतवर बने, और अच्छा मतलब पौष्टिक चीजें जब हमारे अंदर शरीर में जाएंगी तो हम सब मजबूत
1: बिल्कुल, और
0: बनेंगे।
1: हमारे किसान मित्र खूब बाजरे की खेती करें।
0: जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता श्री तुषार पाराशर, और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा
1: और शशि कपूर ने।
0: अब दीजिए अनुमति, नमस्कार। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। 3 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान के संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, खोज और बचाव अभियान भी चला रहे हैं और प्रभावित समुदाय को जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। इससे पहले कल भारत ने वेनेजुएला में राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान तैनात किए थे, जिनमें 41 सदस्यीय बचाव दल, 1 भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल, 30 टन राहत सामग्री, 6 टन दवाएं और चिकित्सा उपकरण और 2 भीष्मक्यू पोर्टेबल अस्पताल थे। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, लेन अनुशासन बनाए रखने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ऐसा ही कुछ इश्क है एफएम गोल्ड सुनने वालों को इस चैनल से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता, लेकर मन भावन। और इस शो के लिए आप सबका प्यार हमें दिखता है आपके ईमेल के रूप में, जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने मुझे नजर आ रहा है। और जो लोग जानते हैं ये एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है, वो ऑलरेडी हमें ईमेल्स भेज रहे हैं। और जिन्होंने आज ट्यून इन किया है उनके लिए मैं ईमेल आईडी दोबारा बता देती हूं, fmgoldairdelhi@gmail.com। इस पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट लिखकर भेज सकते हैं, जो गाने आज आप यहां सुनना चाहते हैं अब से लेकर 4 बजे तक। तो कीजिए आप रिक्वेस्ट, तब तक हम सुनवा रहे हैं आपको रफू चक्कर फिल्म से एक बहुत ही प्यारा गाना।

ढेर सारे आपके मैसेजेस हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और मधु किरण कहते हैं कि प्रोग्राम इन्हें पसंद है, अनोखी अदा फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। इनके साथ हैं भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा और आप सब हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं, स्वागत आपका एक बार फिर। कुमकुम का मैसेज मिला हमें और विजय सुरलकर मुताला महाराष्ट्र से संदेश भेजते हैं, रतनमाला सुरलकर आपके साथ हैं। रामपुर का लक्ष्मण, इस फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। जगदीश जी ने संदेश लिखकर भेजा है और आप ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से हमारे साथ हैं। आपके साथ हैं रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी भी। गंगाधर सवानकर का मैसेज हमें मिलता है और आपके साथ विजय लक्ष्मी सवानकर, राजेश, राकेश, ऋषिता आप सब भी हैं और आपने अपने मैसेज में ये बताया है कि आपको ये प्रोग्राम सुनना कितना पसंद है। इसमें आप अलग अलग तरीके के या फिर यूं कहें कि अलग अलग समय के गाने, सबकी पसंद के गाने सुन पाते हैं, शुक्रिया। और लैला मजनू फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप आप सब इस फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। और अगला मैसेज हमें मिला है, अच्छा मास्टर अशोक वर्मा के बारे में जिनके संदेश अभी हमने शामिल किया, ये बता दें कि आपने एक मेल बॉक्स का पूरा एक पेज जो है ना वो आपके मैसेजेस से भरा हुआ है, तो आपका नाम लिया जा चुका है। और मैसेजेस ना भेजें और लिसनर्स के मैसेज मैं शामिल करना चाहती हूं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि किसकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे पास चंडीगढ़ से मैसेज आता है, अनीता फिल्म से आप गाना सुनना चाहते हैं, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, तो आपकी पसंद का गीत मैं ऑलरेडी प्ले कर चुकी हूं और प्रिल्यूड म्यूजिक के साथ साथ मैं चाहती हूं कि मैं कुछ और नाम शामिल कर दूं। ओम बगड़िया प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा आपके साथ हैं। साजन मेरा उस पार, इस फिल्म से आप गाना सुनना चाहते हैं। बोधराज खोरवाल भी हैं हमारे साथ और

बहुत सारे आपके संदेश पहुंच गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और नीटू मल्होत्रा याराना फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी चंद मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का भी मैसेज में नाम अपने शामिल करवा रहे हैं। राधेश्याम देवांगन प्रोग्राम सुन रहे हैं, हीरा पन्ना से गाना सुनना चाहते हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से आपके साथ हैं चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन। और अगला मैसेज है मोहम्मद इम्तियाज का, आपके साथ हैं सलमा बेगम। जवाहर कैंप कीर्ति नगर से आप हमें मैसेज कर रहे हैं, शराबी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। और मैं मानती हूं कि आप सभी की रिक्वेस्ट एक से बढ़कर एक है, लेकिन अगली फरमाइश किसकी पूरी होने वाली है ये जानने के लिए तो कुछ और नाम सुनने पड़ेंगे। कुमकुम जी का मैसेज मिलता है हमें विजय सुरलकर रतनमाला के साथ, और मेरे हमदम मेरे दोस्त से आप गाना सुनना चाहते हैं। गणेश सूतर का मैसेज आया है, आपके साथ हैं चेतन सारिका। और आप कोल्हापुर से फर्ज फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट

हमें लिख भेजते हैं। आफताब अंसारी हैं और आप शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपके साथ है रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और आप हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है ना, आप राजिता की पसंद का भी गाना सुने। वैसे यकीन मानिए, जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है, और तो इसे अगर हम वाइस वर्सा करके बोले तो जो मेरी पसंद है वो आपकी पसंद भी होनी चाहिए, है ना। तो अगला गाना जो सुनना चाहते हैं, उनका मैसेज हमें मिला है जलालाबाद से, और आप हैं सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी, निमित और प्रिया। आप सबके लिए आपकी कसम फिल्म से ये गाना आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

बिल्कुल, कस्में वादे जो हैं हमने भी आपसे किए और हमने कहा कि आपकी पसंद के गीत यहां आपको सुनवाएंगे, जो हम सुनवा रहे हैं मन भावन में। अगली जो पसंद है वो होगी किशन वंजनी, नीलम स्वाति कीशु की पसंद का गाना होगा यहां पर। ये हमें आनंद विहार से मैसेज भेज रहे हैं और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूं। सॉन्ग आपकी पसंद का है मैं कहीं कवि न बन जाऊं, बहुत ही खूबसूरत ये गाना। प्यार ही प्यार फिल्म से आप सुनना चाहते हैं, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कुछ नाम मैं यहां शामिल कर लेती हूं। नईम खान है हमारे साथ विष्णु गार्डन से, और आपके साथ है अक्रम सुभाष और जी धीरे से धीरे चलो, ये गाना आप सुनना चाहते हैं। संदीप मक्कड़ का मैसेज हमें मिलता है और आप क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। एक दूजे के लिए, फिल्म एक दूजे के लिए से आप गाना सुनना चाहते हैं। और ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गौरैया जालंधर से आप हमारे साथ हैं। और आज ज्योति जी और संदीप जी की एनिवर्सरी है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एफएम गोल्ड सुन रहे हैं तो आपका दिन तो बहुत सुहावना जा ही रहा है, ऐसा मैं मानती हूं, है ना। इस समय में आप अपनी रिक्वेस्ट लिखकर भेज रहे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और आप सबके, आपके परिवार के सभी लोग हमारे साथ हैं। बुलंदशहर से संजय साहू पोटिया कला दुर्ग से प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके साथ हैं सुजाता, शशांक, सीमा साहू। काला पत्थर फिल्म से आप एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं। अरुण सेन भी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में। मेरे महबूब कयामत होगी ये गाना सुनना चाहते हैं हम गौतम सेन के साथ। और मध्य प्रदेश से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। परमिंदर सिंह रंधावा का मैसेज हमें मिलता है, चौकीदार फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और आपके साथ हैं संगरूर से लखन पाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा। फिलहाल हमने नाम लिए थे एक परिवार का और आपकी पसंद का गाना, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया, पहुंचा रही हूं आप तक प्यार ही प्यार फिल्म से। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो एफएम गोल्ड AIRDelhi@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं।

अगर आपने अभी ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, तो मैं आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं मनभावन, मैं हूं आपके साथ अपराजिता, और ये है रिक्वेस्ट बेस्ड शो। आप अपनी पसंद के गाने यहां सुन सकते हैं, और अब लगभग आधा टाइम जो है वो शो का जा चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास करीबन 23 मिनट हैं। आप अपनी पसंद के गाने अभी भी सुन सकते हैं ईमेल भेजकर अपनी रिक्वेस्ट के साथ। अगली ईमेल जो हमें मिली है वो गंगाधर सावनकर की आई है, और आप निकाह फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ विजय लक्ष्मी सावनकर भी हैं, मोहम्मद फरमान प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और आप अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेजते हैं। जिला मुरादाबाद से आपके साथ मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। भाई मूसा शेख प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपने भी निकाह फिल्म से गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। ओम कुमार का मैसेज मिलता है, कुदरत फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, और आपके साथ हैं शेख जागीर, शेख वजीर, विजय कुमार बाजार चौक मुताला से आप हमारे साथ हैं, हरजिंदर सिंह भाटिया और सोनू एंजल पप्पी भाटिया का मैसेज हमें जमशेदपुर से मिला है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं आप। प्रकाश वर्मा भी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में। पिघलता आसमान फिल्म से आपने एक रिक्वेस्ट लिख भेजी है। प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा आपके साथ हैं। तो अगला जो मैसेज है या अगली जो रिक्वेस्ट है वो किसकी पसंद की होगी, मैं आपको बता देती हूं। संदीप और ज्योति मक्कड़ का मैसेज हमें मिला था इस गाने से पहले जो हमने गाना सुनवाया, और क्योंकि आज आप लोगों की एनिवर्सरी है, आपने गाने की रिक्वेस्ट की एक दूजे के लिए फिल्म से, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये गाना आप

पहुंच रहा है, तब तक कुछ और नाम शामिल करना चाहती हूं। हमारे पास संदेश आया है, देखिए पढ़ते पढ़ते मैसेज कैसे सेकंड पेज पर भाग जाते हैं। जगदीश कुमार प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके साथ है राहुल रितिका नांगलोई से। साथ ही मैसेज मिलता है उजमा शेख का, आप आन फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं गंज डुंडवारा से। शिफा शेख और रिफा शेख आपके साथ हैं। राजू मिगलानी प्रोग्राम सुन रहे हैं, ममता फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से। बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू आपके साथ हैं। और नेक्स्ट ईमेल जो आई है वो अकरम हुसैन प्रिंस की है। आप मुसर्रत जहां, नाज तलत जहां, फरहत जहां, रिफत जहां, नुजहत साजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज के साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल ये गाना आप सब एंजॉय कीजिए, मैं भी कर रही हूँ स्टूडियो में बैठकर।

गिरीश बम, वैशाली बम, अजिंक्य बम हमारे साथ हैं वडोदरा से, और आप गाना सुनना चाहते हैं बॉर्डर फिल्म से। अगली जो ईमेल आई है वो कुणाल सिंह की हम तक पहुंचती है। दादरी गेट भिवानी से आपके साथ है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, और आप कोई भी गाना हमारी पसंद का सुनना चाहेंगे एफएम गोल्ड पर। इसी के साथ मैसेज आता है हमारे पास अमन सचिन जयराम खोरवाल का। आपके साथ दीपांशु खोरवाल भी हैं, अनोखी अदा से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, उत्तम नगर से। तुलसी मस्कीन का मैसेज हमें मिलता है, आपके साथ शाहदरा से हैं वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। अगली ईमेल आती है शमशूल कमर राही की, गंज डुंडवारा से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, और आपके साथ है शाहीन, फातिमा, अनू खान, अदनान खान और फैजान खान। इसी के साथ धर्मेंद्र छीपा का भी मैसेज हमें मिल जाता है भोपालगढ़ राजस्थान से। कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार आपके साथ हैं, और शिकायती संदेश है, मैं जरूर इसे भी शामिल करूंगी। आप कहते हैं कि 45 मिनट पहले आपने संदेश भेजा था, लेकिन आप ये बताइए कि कब मैंने ऐसा किया कि किसी और का संदेश ना शामिल किया हो, और ऐसा वादा किया हो कि मैसेज शामिल करूंगी और ना किए हों। कॉन्टिन्यूस मैसेज शामिल कर रहे हैं, इतनी सारी ईमेल्स आप लोगों की आती हैं कि सभी को समेट पाना, ऐसा मैं कई बार कहती हूं इस शो के दौरान, सभी को समेट पाना 50 मिनट के भीतर थोड़ा असंभव होता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम बैक टू बैक आपके संदेश गानों के साथ शामिल करने का प्रयास करते रहें, और वो हम करते भी हैं। तो आपका नहीं ईमेल शामिल होता तो आपके किसी दोस्त का नाम उस समय पढ़ा जा रहा होता है। सुरेश नारंग हमारे साथ हैं, आप सहारनपुर से आशा नारंग के साथ और सोनाली नारंग के साथ प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, घर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। इसी के साथ हमारे पास रिक्वेस्ट आई है मोहम्मद इरशाद और दिलावर खान की, आपके साथ हैं हसीना बानो, दिलावर खान, एलिजा नायब और लड्डू, और पिघलता आसमान फिल्म से ये गाना आप सुनना चाहते हैं। मैं पहुंचा रही हूं आप तक किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में। खूबसूरत ये गीत मेरे भी दिल के बेहद करीब है।

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और प्रोग्राम है मनभावन, जहां हम आपकी पसंद के गीत, आपके रिक्वेस्ट किए गए गीत, आपके दिल के बेहद करीब जो गाने हैं, ऐसा मैं मानती हूं, उन्हीं की हम रिक्वेस्ट करते हैं ना। जो गाने हमें बेहद पसंद होते हैं उन्हें हम बार बार सुनते हैं और कई बार सुनना पसंद करते हैं, अलग अलग मौकों पर सुनते हैं। कई बार तो एक दिन में एक साथ ही कई बार एक ही गाने को सुन लिया जाता है, तब भी कम लगता है, ऐसा भी होता है ना। तो चलिए देखते हैं कि अब किसका पसंदीदा गाना जो है वो हम यहां सुनवाएंगे। अगला मैसेज हमें भारत भूषण का मिलता है और आपके साथ है अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष। बेंगलुरु से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, अफरोज शेख प्रोग्राम सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका नाम शामिल नहीं होता। तो अफरोज जी, खुशी मनाने का समय आ गया है, आपका नाम तो हम शामिल कर चुके हैं। जॉन डिकोस्ट्रो, पर्ल विलिस और रोजी आपके साथ है जनकपुरी सहारनपुर से। यादों की बारात फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट की है। मैसेज आता है हमारे पास भगवती सिंह का और प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं, दिल्ली से ही हमारी पुरानी लिसनर हैं। नवाब अहमद का मैसेज आता है, आपके साथ है अशरफ अली, सिराज बबलू खुराना। और अगला मैसेज संजय ढींगिया का हमें मिलता है बागपत से, आपके साथ नमन ढींगिया और अपार ढींगिया भी हैं। प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं आप और हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। बबलू ठेकेदार का भी मैसेज हमें मिलता है, शेख वजीर शेख शगीर और साहिल शेख आपके साथ हैं। अगला मैसेज जो है वो कौशल्या देवांगन का हमें मिला है, आपके साथ डिम्पल और हेमलता देवांगन भी हैं। धनवान फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट की है। मोहम्मद इरशाद प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपके साथ हैं अहमद शाह, शाह जहां बेगम और कस्बा बिलराम से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। अगला संदेश अंकित कांगड़ा का है और आप प्रिंस पोर्ट, मोनी कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा के साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आप ही के साथ आपके दोस्तों के कुछ और संदेश हमारे पास पहुंच गए हैं। लश्कर सुशील, अकेले हम अकेले तुम फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ हैं करण, पारस, शिवानी, रुद्रांश और मोनी। इसी के साथ डीबी राणा साहब का मैसेज मिलता है हमें, आरजू फिल्म से आप गाना सुनना चाहते हैं रफी साहब की आवाज में। बोधराज खोरवाल प्रोग्राम सुन रहे हैं, जॉन सीना, बिया टेलर, सुमन सरिता के साथ नांगलोई से। और मैसेज आता है दिलावर खान का, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू आपके साथ हैं। असलम मंसूरी मैसेज करते हैं हमें, फहीम मंसूरी के साथ। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, नवाब अहमद हमारे साथ हैं, सलीम अख्तर, सुराज मिथुन और बबलू कश्यप हैं आपके दोस्त, उनके नाम भी आपने शामिल किए। अनिल मोहन का मैसेज हमें मिलता है, मुल्तानी डांडा से उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक आप

के साथ हैं। नवी हसन अब्बासी का भी मैसेज हमें मिलता है, एटा से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी के साथ और सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी भी हैं आपके साथ। किदवई नगर सिद्धपुरा से जुबैर अली खान का भी आपने नाम शामिल कर दिया। डीकेपी परिहार यानी कि धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार प्रोग्राम सुन रहे हैं। जगदीश कुमार का मैसेज हमें मिलता है नांगलोई से, और कुछ और मैसेज हैं, फैज अहमद खत्री, भारत भूषण, राजकुमार डूडी, महेश साहब, यूनिस खत्री, नासिर शेख, असलम मंसूरी, राजवीर सिंह, दिग्दर्शन गौर, सीताराम कांगड़ा, अल्तमश खत्री, संजय ढींगिया, बब्बल, अनिल मोहन, एसपी गोयल, गुरप्रीत, गुरमीत सिंह, दारा सिंह, इशाक मोहम्मद और आपके साथ हैं खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, हसनैन रजा और गसैया फातिमा। तो इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंची है छत्तीसगढ़ से, जो नाम अभी हमने शामिल किए। उमराव जान से यह खूबसूरत गीत आप सभी सुनने वालों के लिए जिन्हें लगता है कि हमारे नाम शामिल नहीं हुए, तो पूरी कोशिश रही सभी के नाम शामिल करने की, और आप मान लीजिए आप हमारे दिल में बसते हैं, कुछ नाम छूट जाते हैं समय की कमी की वजह से। ये गाना आप सबको सुनवा रही हूं।

इस गीत के साथ आप सबको छोड़े जा रही हूं। फिलहाल कुछ समय के लिए आपसे लूंगी विदा। समाचारों के बाद एक बार फिर आपसे मिलना होगा एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ 29 जुलाई तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तथा देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपी। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज सचेत ने मंगलुरु के तट पर एक समुद्री खोज और बचाव अभियान के दौरान मुश्किल में फंसी भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब समुद्र में मंजू माथा के ढांचे को नुकसान पहुंचने और नाव में पानी भरने के बाद सभी बचे हुए लोगों को रिमोट से चलने वाले लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बचे हुए लोगों को मदद और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मैंगलोर लाया जा रहा है। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देशभर में दुर्घटना की आशंका वाले और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पेराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और सुनवा रही हूं आपको अमर अकबर एंथनी से एक बहुत ही प्यारा गाना।

0: elt.gov.in. The Central Forensic Science Laboratory, Bhopal, under the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, Government of India, has invited applications for 3 posts of Upper Division Clerk, UDC, in Level 4 as per the 7th CPC on deputation basis. The maximum age limit is 58 years, and the application in the prescribed format along with required documents must reach the Director, CFSL, Bhopal, within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions are available through the Directorate of Forensic Science Services. Kindly refer to the website at www.dfs.nic.in. The Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahong, Arunachal Pradesh, an autonomous body under the Ministry of Culture, Government of India, has invited applications for 3 assistant professor posts in Tibetan and English. The posts carry pay level 10 as per the 7 CPC and requires a postgraduate degree with at least 55% marks in the relevant subjects. The vacancies include 1 unreserved post and 2 OBC posts. Eligible candidates must submit their applications by 6th August 2026. Detailed eligibility criteria and application forms available on the Institute's website. Kindly do refer to www.cihcs.edu.in. I repeat the website, it is www.cihcs.edu.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar, Rozgar Samachar ke aaj ke ank ke saath main hoon Munish Sharma. Aaiye ab jankari lete hain riktiyon se sambandhit. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विद्यालय इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. पद सहायक प्रोफेसर, विभाग हैं जैविक विज्ञान और इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, डिजाइन, भू सूचना विज्ञान, गणित और भौतिक विज्ञान. कुल 39 पद उपलब्ध हैं. एसोसिएट प्रोफेसर के लिए विभाग हैं जैविक विज्ञान और इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, डिजाइन, भू सूचना विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान. कुल 19 पद उपलब्ध हैं. दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का विवरण इस प्रकार से है. पदों की श्रेणी समूह क शिक्षण में सहायक प्रोफेसर के कुल 2 पद और एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे. अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nsut.ac.in. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. वाणी चिकित्सक, वरिष्ठ आशु लिपिक, रेडियोग्राफर ग्रेड 1 और प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड 1. इसके लिए विस्तृत जानकारी यदि आप चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट recruitment.svnirtar.in. राष्ट्रीय डोपरोधी एजेंसी नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. वैज्ञानिक निदेशक, विधि अधिकारी और निजी सहायक. इन रिक्तियों के लिए आवश्यक भर्ती का विवरण अर्थात निर्धारित योग्यता, पात्रता मानदंड आदि की जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय डोपरोधी एजेंसी की वेबसाइट www.nadaindia.org. भारतीय प्रेस परिषद में प्रधान निजी सचिव का एक पद रिक्त है जिसे भरा जाना है और आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रेस परिषद की वेबसाइट www.presscouncil.nic.in. कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ओडिशा आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. कर सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 2, बहुकार्य कर्मचारी. कुल 12 रिक्तियां उपलब्ध हैं इन पदों के लिए. पात्रता मानदंड और आवेदन प्रारूप

0: विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त हो गया है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रोज की तरह चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, ये जानने क्या कुछ है उनके पास खास। और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती ही है हमारी नजर बराबर। और उसके बाद हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा और हमारे साथ हैं सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
3: नमस्कार मुनीष, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एंड एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ परिक्रमा। मुनीष ने आपको बता ही दिया है क्या कुछ है आज के हमारे शो में, एंड ऑफ कोर्स विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द शो मुनीष विद द लेटेस्ट हेडलाइंस। Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion.
0: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू।
3: India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency.
0: ईरान के दोहा में बैठक से इनकार के बाद अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार।
3: IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, central Maharashtra, Konkan and Goa for the next 2 days.
0: और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हार कर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है।
3: एंड नाउ हस्बे दस्तूर मुनीष, हम लोग शुरू करते हैं देश की परिक्रमा, लेकिन उससे पहले हमारा सबसे पहले जो सेगमेंट होता है डेटलाइन इंडिया, ऑफ कोर्स इन विच वी टेक लुक एट द डेवलपमेंट्स दैट टेक प्लेस एट द नेशनल और ग्लोबल लेवल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 स्पेशल डेज दैट आर ऑब्जर्व टुडे मुनीष। ऑफ कोर्स फर्स्ट इज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, सेकेंड इज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म एंड वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व टुडे। लेकिन सबसे पहले जो है सोशल मीडिया की बात की जाए मुनीश।
0: बिल्कुल सायरा, देखिए आदिम गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए जो भित्ति चित्र यानी शैल चित्र भी जिन्हें कहते हैं, उनसे लेकर आज स्मार्टफोन की स्क्रीन तक, इंसान ने हमेशा अपने विचारों, अपने अनुभवों और भावनाओं को साझा करने और दूर दराज के लोगों से जुड़ने की इच्छा का परिचय दिया है। और यही यात्रा भाषा लिपि मुद्रण क्रांति और अंततः इंटरनेट के जरिए सूचना क्रांति तक आ पहुंची, जिसका सबसे प्रभावशाली और व्यापक स्वरूप आज हमें दिखाई देता है सोशल मीडिया के रूप में, है ना?
3: दैट्स राइट मुनीष। Today is 30th of June, a day that is observed across the world as a social media day. Well, social media day is all about recognizing how social media has transformed the way we connect, communicate and share our lives. Whether it's posting a photograph, learning something new or just chatting with friends across the globe, social media has become a part of our everyday routine, and not just routine, I think it dictates our lives today, isn't it?
0: बिल्कुल, ये सोचना अद्भुत है सायरा कि सिर्फ एक क्लिक से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी भी इंसान से जुड़ जाते हैं, विचारों को साझा करने से लेकर उपलब्धियों का जश्न मनाने तक। सोशल मीडिया ने सचमुच दुनिया को बहुत ही छोटा बना दिया है।
3: That's right, Monish. And it's not just about staying connected, but social media has become a powerful platform also for students, artists, entrepreneurs and creators to showcase their talents and reach audiences worldwide.
0: दरअसल 21वीं सदी में सोशल मीडिया सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि विचारों के आदान प्रदान, जनमत निर्माण, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, सामाजिक आंदोलनों और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का

0: सशक्त वैश्विक मंच भी बन गया है। इसने समय और दूरी की सीमाओं को लगभग खत्म कर दिया है और पूरी दुनिया को एक जीवंत वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। कोविड-19 के दौरान YouTube, Facebook और Telegram जैसे मंचों ने लाखों विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई। वहीं प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों, रक्तदान, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और लापता लोगों की खोज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया का समाधान प्रतिबंध नहीं बल्कि प्रभावी नियमन, डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार उपयोग है।
1: That's right, Monish. It has made possible for people to stay in touch with friends and family who live very far away, to connect with people who share their interests and to learn about news and events from all over the world. Social media has also had a significant impact on businesses. Companies use social media to connect with customers, promote their products and services and build brand awareness. It can also be used to gather customer feedback and insights, which can help businesses improve their products and services.
0: लेकिन सोशल मीडिया के कई फायदे होने के साथ साथ इसका समझदारी से इस्तेमाल करना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मुनीश। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन विच हैज बिकम द नॉर्म अनफॉर्चुनेटली दीज डेज, और प्रॉब्ली बिलीविंग इन फेक न्यूज, क्योंकि बहुत से अभी भी लोग हैं जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते हैं विदाउट इवन री चेकिंग, हम लोग जो है उनको जो है बिलीव कर लेते हैं एंड दैट ऑब्वियसली गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ रूमर्स एंड फेक न्यूज और इवन कंपेयरिंग आवर सेल्स विद अदर्स, बिकॉज सबकी दूसरों की जिंदगी जो सोशल मीडिया पे लगाते हैं ऐसा लगता है कि वाह कितनी परफेक्ट लाइफ है, बट ऑफकोर्स वी नो बडी पोस्ट देयर स्ट्रगल्स देयर हार्ड डेज ऑन सोशल मीडिया, सो वन शुड नॉट बिलीव दैट यू नो एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज यू नो रोजी, वी हैव टू ऑफकोर्स काउंटर इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी एज वेल। दैट्स वाई वी से दैट डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज थिंक before we post or even forward, verify information before sharing it, and remember that kindness matters online just as much as it does offline. इसलिए जो ट्रोल एक वर्ड हम लोग ने साथ साथ जैसे सोशल मीडिया का यू कह सकते हैं कि राइज हुआ, तो ट्रोलिंग का भी बहुत ज्यादा उसमें राइज हुआ, सो वी शुड रिमेम्बर दैट रिस्पेक्ट शुड मार्क आर कॉन्वर्सेशंस ऑन सोशल मीडिया।
0: जी हाँ, विश्व सोशल मीडिया दिवस सिर्फ उत्सव का अवसर नहीं है बल्कि आत्म मंथन का भी एक दिन है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम सोशल मीडिया की अपार संभावनाओं का सकारात्मक, जिम्मेदार और तथ्यपरक इस्तेमाल करें और इसे मानवता, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के हित में अधिक उत्तरदायी और रचनात्मक माध्यम बनाएं। और शायद इसीलिए सायरा आप जानती हैं कि अब नाउ इट हैज बिकम ऑलमोस्ट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर न्यूज बुलेटिन ऑल्सो टू प्रेजेंट फैक्ट चेक, बिकॉज इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ओनली fact reaches our audience and especially those who follow us and have faith in us. Or baki kya kaha jaye, world social media day hame social media ke sambhavit sakaratmak aur nakaratmak dono prabhavon ki yaad dilata hai.
1: That's right, and at the end of the day social media is just a tool. It can inspire, educate, entertain and connect us, but it's up to us to use it in a positive or meaningful way, as you rightly said, Monish. So on this day, let's celebrate the incredible opportunities that it offers while also remembering to stay safe, respectful of others and balance in our online lives.
0: सोशल मीडिया का जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ इस्तेमाल करके हम एक ज्यादा सकारात्मक और उत्पादक ऑनलाइन समूह बनाने में मदद कर सकते हैं।
1: Now let's talk about our second topic, Monish. We are observing the International Day of Parliamentarism. This day celebrates the important role that parliaments play in strengthening democracy and giving people a voice in how their country is governed.
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह दिन 30 जून को मनाया जाता है क्योंकि 1889 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिसे IPU भी कहते हैं की स्थापना हुई थी।
1: एंड इन 2018 द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 30 जून एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रांग एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड।
0: और अब आपसे एक छोटा सा सवाल। दोस्तों, जब आप पार्लियामेंट या संसद शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है?
1: Well, debates, discussions, of course, making laws is the place where elected representatives come together to discuss issues that affect the lives of all the citizens.
0: आधुनिक संसदें ज्यादा महिलाओं और युवा प्रतिनिधियों को शामिल करने तथा नागरिकों की

0: बेहतर सेवा के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही हैं।
1: And I think that's the beauty of democracy, Munish, that it gives people the opportunity to participate, express their opinions and contribute in building a better society.
0: और भले ही हर कोई सांसद नहीं बनता, लेकिन हर नागरिक की भूमिका होती है जानकारी रखना, जिम्मेदारी से वोट देना, अलग-अलग विचारों का सम्मान करना और नागरिक जीवन में हिस्सा लेना।
1: Well, Lok Sabha Speaker Om Birla has extended greetings to all elected representatives on International Day of Parliamentarism and to democratic institutions across the world. So, on this International Day of Parliamentarism, let's appreciate the institutions that help uphold democracy and remember that good governance begins with active and informed citizens.
0: Kyunki jab log hissa lete hain, to loktantra mazboot hota hai.
1: Now coming to our last topic, Munish, we are also observing World Asteroid Day today on 30th of June. It's a United Nations recognized day that is dedicated to raising awareness about asteroids, space science and the importance of protecting our planet from potential asteroid impacts.
0: World Asteroid Day की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 2014 में अंतरिक्ष के शौकीनों के समूह ने से शुरू किया था जिनमें एस्ट्रोफिजिसिस्ट ब्रायन मे अपोलो 9 के अंतरिक्ष यात्री रस्टी श्वेकार्ट फिल्म निर्माता ग्रेगोरिच रिजर्ट्स और B612 फाउंडेशन की प्रेसिडेंट डेनिका रेमी शामिल थे।
1: Later in 2016, the United Nations officially proclaimed 30th of June as World Asteroid Day, highlighting the need for global cooperation in monitoring objects that travel close to the Earth. In fact, aaj 30 June hai, 3 din pehle, agar aapko yaad ho, har taraf news mein tha, that a very large asteroid is just passing through the Earth aur khali choti telescope ya even binocular se wo visible tha. So I think, thank God that obviously it did not impact the Earth, but of course, asteroids continue to intrigue a lot of curiosity.
0: और अब एक मजेदार सवाल दोस्तों, जब आप एस्टेरॉयड शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? अंतरिक्ष में तेजी से घूमते विशाल काय चट्टानी टुकड़े और शायद कुछ साइंस फिक्शन फिल्में, है ना?
1: बट इन रियलिटी एस्टेरॉयड्स आर एक्चुअली फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट हेल्प साइंटिस्ट लर्न मोर अबाउट द हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम।
0: बिल्कुल, दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का पता लगाते हैं, उन पर नजर रखते हैं ताकि उनके रास्तों को बेहतर ढंग से समझा जा सके और ये पक्का किया जा सके कि हमारा ग्रह सुरक्षित रहे।
1: Well, World Asteroid Day is a wonderful reminder that anyone interested in astronomy or space exploration can start exploring the universe, whether by joining an astronomy club, visiting a planetarium, just using a telescope, or simply learning more about the wonders of space through books and documentaries.
0: कौन जानता है, आज का जिज्ञासु छात्र कल का खगोल शास्त्री, अंतरिक्ष वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यात्री भी बन सकता है।
1: That's so right, Monish. Let's celebrate the mysteries of our universe. Appreciate the work of scientists who keep a watchful eye on the skies and continue exploring the incredible universe that lies beyond our planet.
0: क्योंकि हर बड़ी खोज की शुरुआत जिज्ञासा से होती है और हर सवाल हमें ब्रह्मांड को समझने के कदम और करीब ले जाता है। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं और करीब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के और उनसे ये जानना चाहेंगे हम क्या कुछ है खास उनके पास।
1: Yes, so that means we'll be true to the spirit of the show. हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलने वाले हैं और आज के सफर की शुरुआत सबसे पहले करेंगे from the northeast, from the beautiful state of Manipur. Music became a key to preserve ancient Meithei and tribal traditions and functions as a powerful tool for socio-political resistance and community healing. Acknowledging its importance, Manipur observed World Music Day every year. This year's observance became more important for Manipuris as Foundation Day of Bhagichandra Open Air Theatre or BOAT Imphal was also held alongside World Music Day. Let's hear more from our Imphal correspondent.
2: Manipur observed the foundation day of Vaigya Chandra Open Air Theatre Board Palace Compound Imphal along with World Music Day on 21st of this month. The Vaigya Chandra Open Air Theatre Board in Imphal was established and inaugurated on June 21, 1996 and it is the prominent cultural venue. The state's Public Works Department designed the theatre to host large-scale performances.

0: The observance of World Music Day in Manipur symbolized the importance and inseparableness of music with the Manipuris. The ritual singing and drumming named Nath Sankirtana of Maitri community is recognized on the UNESCO Intangible Cultural and Heritage List, and traditional music of the state is the foundation to local folklore and myths. Jaje Thoksom, Akashvani News Parikrama, Imphal.
1: बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने देश के बच्चों और माताओं की पूरी बेहतरी के लिए, मैं आपको कह रहा था कि एक बहुत ही बड़ी डिजिटल छलांग लगाई है, और वहीं गुजरात में भी हेल्थ सेक्टर में पहले से हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और जन्म से 18 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के नतीजों में बड़े बदलाव लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई पहल की है। इसके तहत मातृत्व और बाल विकास के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसके साथ ही अब गर्भावस्था से किशोरावस्था तक हर बच्चे पर इस पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की नजर रहेगी। इतना ही नहीं, अब कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों का सारा ब्यौरा एक मंच पर रहेगा। इस परियोजना की सफलता को मापने के लिए एक विशेष परिणाम उन्मुख संकेतक तय किए गए है। उन्हें प्रत्यक्ष निगरानी में रखा जाएगा। इसमें उच्च जोखिम वाली गर्भधारण, एनीमिया, बीएमआई और टीकाकरण की स्थिति की निगरानी शामिल होगी, और 1.5 किलो से कम वजन वाले नवजात शिशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पायलट परियोजना की सफलता के बाद इसे पहले चरण में पूरे गुजरात में और फिर देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्मार्ट ट्रिगर्स कैपेबिलिटी है। अगर कोई खतरा पता चलता है तो सिस्टम अपने आप अलर्ट कर देगा, और वह अलर्ट तालुका, जिला या राज्य स्तर के अधिकारी को भेज दिया जाएगा। समस्या हल होने तक एक्शन ट्रैकिंग जारी रहेगी। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अड़ियचा।
3: एंड फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट वी कम बैक टू द नॉर्थ ईस्ट इन अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड इंडियन पैरास्पोर्ट्स। Subedar Hokato Hodorje Sema of the 9th Assam Regiment has become the first Indian Paralympian to be conferred the Ati Vishisht Seva Medal. President Draupadi Murmu presented the prestigious award during the Defence Investiture Ceremony 2026 at Rashtrapati Bhavan yesterday. We have more from our Kohima correspondent.
4: Subedar Hokato Hodorje Sema's journey is one of extraordinary courage and determination. A native of Newland district in Nagaland, he joined the Assam Regiment in 2000. 2 years later, he lost a leg in a landmine blast during a counter-infiltration operation along the line of control in Jammu and Kashmir. Instead of giving up, he embraced parasports, trained in shot put at the Army Paralympic Knot in Pune, and rose to international acclaim. He won bronze at the 2022 Asian Para Games and followed it with another bronze at the 2024 Paris Paralympics, earning the original award the same year. His latest honor, the Ati Vishesh Seva Medal, not only recognizes his distinguished military service but also his remarkable contribution to Indian para sports, making him the first Paralympian to receive this prestigious military decoration.
5: Subedar H. Hokato सेमा 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉट पट कांस्य पदक विजेता, वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित।
4: Congratulating Subedar Sema, Nagaland Chief Minister Nipirio described the honor as a fitting recognition of his exceptional service, dedication and commitment to duty. From a soldier grievously injured in the line of duty to a Paralympic medalist and now a recipient of one of India's highest peacetime military honors, Subedar Hokato Hodorje Sema's inspiring journey stands as a powerful symbol of courage, resilience and the indomitable spirit of the Indian Army. For Parikrama, Asunyo from Kohima.

0: join the Indian forces, overturning their guns and cutting the traces on the horses. The British were forced to retreat to the British Residency.
1: And now when we remember some other personalities, today is the death anniversary of Dadabhai Naoroji. We all know that he was among the founding members of the Indian National Congress and served as its president on three occasions, from 1886 to 87, 1893 to 1894, and 1906 to 1907. And well, while Naoroji himself maintained a moderate stance, his engagement with transnational political groups reflected his broader concern with issues of labor, empire, and global inequality. In later years, Naoroji received posthumous recognition in both India and the United Kingdom as well. In 2014, the British government introduced the Dadabhai Naoroji Awards that was launched by the then Deputy Prime Minister Nick Clegg to honour contributions to UK-India relations. And India Post commemorated him with postal stamps issued in 1963, 1997 and 2017.
2: और आज जयंती है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव की, जो एक रसायन वैज्ञानिक के रूप में उनकी पहचान है, जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया। इन्हें सीएनआर राव के नाम से भी जाना जाता है। 1500 शोध पत्र और 45 वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी और 16 नवंबर 2013 को भारत सरकार ने इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। चंद्रशेखर वेंकट रमन और अब्दुल कलाम के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वे तीसरे वैज्ञानिक हैं।
1: Today is also the birthday of Saeed Mirza. We all know he is an accomplished screenwriter and director, predominantly in Hindi films and television. The maker of notable parallel films such as Mohan Joshi Hazir Ho, Albert Pinto Ko Gussa Kyun Aata Hai, Saleem Langde Pe Mat Ro, and Naseem, which won two National Film Awards. He was honored with Lifetime Achievement Award at the International Cultural Artifact Film Festival in 2020. Agar aapko yaad ho, ek Doordarshan ke zamana jab hum log dekhte the, to ek serial aata tha Nukkad. वो भी सईद मिर्जा ने ही बनाया था।
3: गुरु ये झगड़ा हूं, तुम तमाशा देख रहे हो?
4: अबे ओ, इन लोग रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, मगर ये रिहर्सल होते होते झगड़ा क्या हो रहा है?
3: गुरु अपन तो हरी को बोलता है टांग तोड़ता है।
4: गुरु ये बोला जा रहे ला। अबे चुप।
3: गुरु ये ड्रामा की रिहर्सल काहे को?
4: अरे यार अपना नुक्कड़ ना ड्रामा कॉम्पिटिशन में उतर रहा है।
2: और दोस्तों आज ही जयंती है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह की, जिन्होंने कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी यानी अपने दोस्त जो आनंद जी थे उनके साथ मिलकर हमें बड़े ही प्यारे प्यारे यादगार से ऐसे गीत दिए जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। वर्ष 1992 में संगीत के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उन्हीं के संगीतबद्ध कुछ रचनाएं जिन्हें आज भी उनके चाहने वाले याद करते हैं।

तो दोस्तों ये थी वो यादगार रचनाएं जिन्हें कल्याण जी ने अपने भाई, जिनके साथ उनका व्यवहार जो है वो बड़ा ही दोस्ताना था, उनके साथ मिलकर के ये संगीत रचनाएं हमें दी। और अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का।

0: दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और सायरा को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मंगलुरु लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
2: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
2: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही

नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एफएम गोल्ड सुनने वाले सभी लिसनर्स का 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम का ये समय होता है बहुत स्पेशल, जब हम ले आते हैं आपके लिए गाते गुनगुनाते, जहां मैं अपराजिता आपको बताती हूं कुछ ट्रिविया, देती हूं कुछ हिंट्स और क्लूज हमारी बेहतरीन हिंदी फिल्मों से जुड़े, और फिर आपको गेस करना होता है फिल्म का नाम। तो सवाल और जवाब के इस सिलसिले से पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गाना माचिस फिल्म से।

तो रेडी है ना आप सब हमारे सवाल सुनने के लिए और फिर जल्दी से आंसर टाइप करके हमें भेजने के लिए। तो पहला सवाल है 90s में आई एक फिल्म से जिसने 9 कैटेगरीज में फिल्मफेयर पुरस्कार में नॉमिनेशंस प्राप्त किए और 2 कैटेगरीज में इस फिल्म को फिल्मफेयर पुरस्कार मिले भी, यानी कि इसने 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते भी। ये कहानी है अमन, पूजा और आकाश की। ये फिल्म वैसे तो एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर्ड है, या यूं कहें रीमेक है, जिसमें नदीम श्रवण का म्यूजिक है और लिरिक्स इस फिल्म के गानों के लिखे हैं समीर साहब ने। आकाश और अमन बचपन में ही जिगरी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग। आकाश चुलबुला है तो वहीं अमन शांत और संजीदा स्वभाव का है। कहानी में आगे ट्विस्ट बहुत हैं और मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ और बातें आपके साथ शेयर करूंगी तो बहुत आसान हो जाएगा ये सवाल। तो आप गेस कीजिए तब तक कि कौन सी है ये सुपरहिट फिल्म। नाम लिखकर भेजना है मुझे हमारे ईमेल आईडी पर जो है fmgold@gmail.com। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं बॉम्बे फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना। तो एक बार और आपको बता दूं, वैसे मैं हर बार बताती हूं गाते गुनगुनाते में, कि जब आप फिल्म का नाम लिखकर भेजे ना, एक तो क्वेश्चन सुनने के साथ ही आपको टाइप कर देना है अगर आपको आता है तो, अगर आप चाहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपका नाम मैं अनाउंस करूं इसलिए। और दूसरी बात कि जब आप हमें जवाब लिखकर आंसर लिखकर भेजते हैं, फिल्म का नाम लिखकर भेजते हैं, तो ईमेल के सब्जेक्ट कॉलम में ही आप फिल्म का नाम लिख दें, वो मेरे लिए बहुत है। आपकी मेहनत बचेगी और जल्द से जल्द आप अपने जवाब हम तक, यानी कि एफएम गोल्ड के स्टूडियो तक पहुंचा पाएंगे। सुनवा रही हूं आपको बॉम्बे फिल्म का ये गाना। गुम्सुम, गुम्सुम।

कहने को तो बहुत कुछ है क्योंकि आपकी ईमेल्स हम तक पहुंच गई हैं और पहला सही जवाब पहुंचता है नवीन भाटिया साहब का, दूसरे नंबर पर नवीन किशोर हमें सही जवाब लिखकर भेजते हैं और तीसरे नंबर पर हैं पंकज कुमार। तो फिल्म का नाम है साजन और आंसर अनाउंस होने के बाद अगर आप ईमेल करेंगे तो मैं वो ईमेल शामिल नहीं करने वाली हूं। तो आप सभी को पहले बहुत बहुत बधाई। मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज।

फराज फरदीन सुहान अरजान अबान आपने भी बिल्कुल सही पहचाना, ऊपरकोट बुलंदशहर से। अमित नरूला सही जवाब लिखकर भेजते हैं, साथ में हैं इदरिस सैफी, ललित कुमार, इलेश कापड़िया, प्रकाश गोगिया, प्रणव शिंदे, गिरीश वैशाली बम, अजंक्य बम भी हैं इनके साथ। वडोदरा से उग्रसेन यादव, सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से सही जवाब लिखकर भेजते हैं। भगवती सिंह भी हैं दिल्ली से और पंकज मोडो हमें अमरावती महाराष्ट्र से बताते हैं कि फिल्म का नाम साजन है। दीप्ति खन्ना, जगदीश बजाज, डीबी राणा नेहरू विहार से बताते हैं सही जवाब। और सही जवाब दिया है अमित बंसल ने नजफगढ़ से और मधुकिरण भी सही जवाब लिखकर भेजते हैं हमारे पास दिल्ली से। तो साजन है फिल्म का नाम जिसकी मैंने बात की यहां पर, तो आप नाम जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे इसमें एक्टिंग किसने की। तो भाई हम बताते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता कि साजन है फिल्म का नाम और किस किसने इसमें एक्टिंग की। इसमें आकाश बने सलमान खान, अमन का रोल निभाया संजय दत्त ने और पूजा बनी माधुरी दीक्षित और फिल्म को डायरेक्ट किया लॉरेंस डिसूजा ने। फिलहाल बारी आती है हमारे अगले सवाल की। 90s में ही एक क्राइम थ्रिलर फिल्म आई जिसमें साजन की पूजा ने भी एक्टिंग की, यानी कि माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म में एक्टिंग की। अब फिल्म के लीड मेन लीड की बात करें तो इसमें मैं आपको ये जरूर बता दूंगी कि इन्हें बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मेन लीड्स के अलावा टीनू आनंद, जॉनी लीवर, सुधा चंद्रन, हिमानी शिवपुरी और श्रीराम लागू ने भी इस फिल्म में एक्टिंग की। फिल्म का म्यूजिक भी ऑडियंस को बहुत पसंद आया, जो रहा आनंद मिलन का। अगर आप फिल्म को पहचान चुके हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। जल्दी से जल्दी आंसर टाइप करना है अपना और FM गोल्ड AIR दिल्ली इस पर सेंड कर देना है। तब तक पता है आपको साजन फिल्म का गाना सुनने की बारी आ गई है। और एक बार फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये उन फिल्मों में से एक है जिसमें जब आपको गाना चूज करना होता है ना कि एक गाना कोई सुनवाया जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये गाना मैं आपके लिए चुनकर लाई हूं साजन फिल्म से।

देखिए, हम आपके लिए गाते गुनगुनाते में लेकर आते हैं बिल्कुल अलग अलग चुनकर फिल्म। पहला सवाल जो हमारी फिल्म का रहा वो रहा एक रोमांटिक फिल्म से। दूसरी जो आपको फिल्म गेस करनी थी वो है क्राइम थ्रिलर फिल्म, जिसके जवाब का आप सभी को इंतजार है और मैं जिसके आंसर अब आपको बताने वाली हूं। पहला सही जवाब इसका हमें, वैसे पहली वाली जो फिल्म थी ना साजन, इसमें सभी लोगों ने 99% लोगों ने सही जवाब लिखकर भेजा था, लेकिन ये वाली जो फिल्म है

इसमें थोड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है, जैसे किसी ने खलनायक लिखा, किसी ने 100 डेज, डर भी लिखा, सैलाब भी किसी किसी ने लिखा, लेकिन सही जवाब है अंजाम। तो पहला सही जवाब लिखकर भेजा पंकज कुमार ने, और दूसरा सही जवाब भगवती सिंह का हमें मिला, और तीसरा थर्ड राइट आंसर है प्रणव शिंदे का। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद भी सही जवाब आए, मिली वर्मा ने हमें दिल्ली से सही बताया आंसर। अब इद्रिस सैफी ने लिखा है दिल तो पागल है। अब देखिए, आपने पहला मुझे लग रहा है क्लू मिस कर दिया, मैंने कहा क्राइम थ्रिलर, तो दिल तो पागल है तो एक रोमांटिक फिल्म है। खैर कोई बात नहीं, आप अगले उसमें भी ट्राई कर सकते हैं अगले क्वेश्चन में। इसके बाद सही जवाब देते हैं जगदीश बजाज विकासपुरी से, सुदर्शन अनीता सिमरन मुखी हमें शांतिनगर सोनीपत से सही सही बताते हैं फिल्म का नाम, सतप्रकाश सनौटिया रोहिणी से सही आंसर लिखकर भेजते हैं, वैशाली गिरीश बम वडोदरा से लिखते हैं सही जवाब, और फिर मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान बुलंदशहर से सही जवाब लिखते हैं, डीबी राणा नेहरू विहार से बताते हैं हमें कि सही जवाब है क्या। और भाई, अब आंसर सुनने के बाद जिन्होंने लिखकर भेजा उनका नाम तो नहीं होगा शामिल। तो अंजाम जो फिल्म है इसमें इसे डायरेक्ट किया राहुल रेवल ने, और 1994 में ये फिल्म आई। शाहरुख खान ने विजय अग्निहोत्री का इसमें किरदार निभाया और माधुरी दीक्षित ने शिवानी चोपड़ा का। अब इससे पहले कि हम अंजाम का गाना आपको सुनवाएं, मैं जिक्र कर रही हूं अगले अपने उसका अगली फिल्म का, अगली फिल्म के लिए आपको हिंट्स दे रही हूं, कुछ ट्रिविया बता रही हूं। तो ये जो फिल्म है ये एक्शन कॉमेडी है, तो अलग अलग तरीके की फिल्में हम आपके लिए लेकर आए, अलग अलग जॉनरा की फिल्म। अगली फिल्म भी 1994 में आई जो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म रही, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया राजकुमार संतोषी ने। दो हीरोइन और दो हीरोज वाली इस फिल्म ने ऑडियंस को खूब हंसाया। ये कहानी है अमर और प्रेम की, जो ऊटी पहुंचते हैं और वहां उन्हें मिलती हैं फिल्म की हीरोइंस। फिर कैसे इनकी प्यार की कहानी कॉमेडी और एक्शन के साथ आगे बढ़ती है, इसी के आसपास घूमता है फिल्म का प्लॉट। मेन लीड्स के अलावा फिल्म में परेश रावल, विजू खोटे, शक्ति कपूर, देवेन वर्मा, शहजाद खान, महमूद, जगदीप, इन सब ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की और लोगों को हंसाया भी। अब आपको गेस करना है फिल्म का नाम और जल्दी से लिखकर भेजना है fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। तब तक चलिए सुनते हैं अंजाम फिल्म से ये गाना।

बिल्कुल, अभी आपने अंजाम फिल्म से गाना सुना और देखिए अंजाम तक पहुंच गया है अपने गाते गुनगुनाते। आप हैं अपराजिता के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब लिखकर भेज रहे हैं। तो आज का जो आखिरी सवाल है उसके सही जवाब किसने लिखकर भेजे हैं ये मैं आपको बता देती हूं। पहला सही जवाब हम तक पहुंचता है नवीन भाटिया साहब की तरफ से, मोतीनगर से आप हमारे साथ हैं। दूसरा सही जवाब मिली वर्मा ने लिखा है और तीसरा सही जवाब अमित नरूला ने। मुझे खुशी पता है किस बात की है कि कुछ नए नाम हमारे जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी वो आ रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। रोहित ठाकुर हैं इसके बाद गुड़गांव से, आपने बिल्कुल सही बताया। प्रणव शिंदे, पंकज कुमार, नवीन किशोर दौलूपुरा से सही जवाब लिखकर भेजते हैं। भगवती सिंह हैं दिल्ली से, बहुत पुरानी लिसनर हैं हमारी। भारती भी हैं, संदेश कुठावले हैं, इद्रिस सैफी और प्रफुल मोहडो का अमरावती से सही जवाब आता है। जगदीश बजाज हमारे साथ हैं विकासपुरी से। सतप्रकाश सनौठिया हैं रोहिणी से और उग्रसेन यादव ने भी सही जवाब लिखकर भेजा है। एके रंडन साहब का जवाब सही नहीं है, हालांकि मैंने उनका नाम शामिल कर दिया है। डीबी राणा हैं नेहरू विहार से हमारे साथ, बिल्कुल सही बताते हैं और साथ ही सही जवाब शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम में लिखकर भेजते हैं। शांति नगर से सुदर्शन, अनीता और सिमरन मुखी, ए ए ए अंदाज अपना अपना, साथ में इन्होंने अंदाज अपना अपना भी बताया है हमें। और नवीन चौहान हैं, एस रैना हैं आपके साथ नोएडा से, और प्रकाश गोगिया ने भी सही जवाब बताया दिल्ली से। सही जवाब देने वालों में नाम आ जाता है अब मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान का बुलंदशहर से, और सुदर्शन मुखी ने भी बिल्कुल सही

यही पहचान लिया है फिल्म का नाम। तो मैं आपको बता दूं अंदाज अपना अपना में किस किस ने एक्टिंग की। शाहरुख खान, सलमान खान, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन इस फिल्म में लीड रोल में रहे और शक्ति कपूर इसमें क्राइम मास्टर गोगो के रोल में नजर आए। ये जो इनका किरदार है ये बहुत फेमस रहा और इस नाम से अभी भी इन्हें लोग बुलाते हैं, क्योंकि जब आपका कोई किरदार फेमस हो जाता है तो आपको लोग उसी नाम से बुलाने लग जाते हैं। परेश रावल इसमें डुअल रोल में नजर आए। तो मैं फिलहाल आपको सुनवा रही हूं इसी फिल्म से एक गाना।

आप लोगों ने इतनी शिद्दत के साथ हमारे इस छोटे से कंपटीशन में पार्ट लिया, जिसे हम क्विज भी कह सकते हैं, जहां हम आपके लिए हिंट्स लेकर आते हैं और आप उनके जवाब लिखकर हमें भेजते हैं। इसके लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। आशिकी फिल्म से ये गाना आप सबके लिए कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

इसी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, फिर किसी रोज किसी मोड़ पर आपसे जरूर यही मिलना होगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इस गाने के बाद आप सुन सकेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और

0: प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries. Speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said the collective responsibility of nations is to combat illegal

सफर जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ न कुछ सीखना है। मंजिल मिले ना मिले पर रास्तों को यादगार बनाना है, और रास्ते तब और ज्यादा यादगार बन जाते हैं जब हम सफर उसमें खूबसूरत हो।

और आपके शाम के सफर में हम आपके साथ एक खूबसूरत सफर में अक्सर निकलते हैं और सफर का नाम है सदाबहार, गीतों का सफर।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहे हैं आप। और वक्त की ओर अगर इशारा किया जाए तो 6:15 हो चुके हैं। प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गाने, और सदाबहार गानों में हमारे साथ हैं आप।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर सदाबहार गीतों का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपको हम ले चलते हैं और बहुत जल्द आपसे पुनः मिलेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। यूरोबैंक संस्थया ग्रीसतः भारतं प्रति यूपीआई आधारित धन प्रेषण सेवा समारब्धा। उपक्रमोयं

0: देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे। आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक
1: वार्म वेलकम। सिद्धार्थ,
2: गुड इवनिंग आप दोनों को।
0: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर इससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स 250 पॉइंट्स, Nifty settles at 23,866. Most Asian stock market indices end in positive territory and global crude oil prices rise.
0: घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 23,866 पर स्थिर रहा। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए और कच्चे तेल के वैश्विक स्तर पर दाम बढ़े।
1: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और श्रोताओं, अब आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक इस तिमाही के आखिरी कारोबारी सत्र में लगभग 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 76,479 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 81 अंक लुढ़ककर 23,866 पर आ गया। हालांकि विस्तृत शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप 100 सूचकांक में 0.4% की बढ़त हुई और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1% का उछाल आया। अच्छी शुरुआत के साथ बाजार खुले, लेकिन जल्द ही लड़खड़ा गए और सत्र के अधिकांश समय लगभग स्थिर दायरे में कारोबार करते रहे। आखिरी घंटे में उतार चढ़ाव बढ़ गया, क्योंकि मासिक निफ्टी वायदा और विकल्प की एक्सपायरी के कारण सूचकांकों पर दबाव आया।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड द फाइनल ट्रेडिंग सेशन ऑफ द क्वार्टर अराउंड 0.3% लोअर। द सेंसेक्स फेल बाय 250 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,479, व्हाइल द निफ्टी लॉस्ट 81 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,866. हाउएवर, द ब्रॉडर मार्केट ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंडेड इन पॉजिटिव टेरिटरी। The mid-cap 100 index added 0.4% and the small-cap 100 index surged 1%. After a positive start, the market soon lost their footing and spent most of the day trading in flattish range. Volatility picked up in the final hour as heavy pressure from the monthly Nifty futures and options FNO expiry dragged the benchmark indices in the losses.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इन्फोसिस 3.5%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 3% और एचसीएल टेक में 2.8% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में मारुति में 5% से अधिक, टाइटन लगभग 3% और बजाज फाइनेंस में 2% से अधिक की तेजी देखी गई।
1: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑफ द बीएसई 14 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन पॉजिटिव जोन। Among the key gainers, realty climbed 1.2%, services as well as consumer durables rose 1%, and consumer discretionary added 0.8%. In contrast, focused IT fell 2.6%, IT lost 2.5%, and PSU banks slipped 0.7%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,332 companies advanced, 1,904 declined and 185 remained unchanged.
0: और अब जानेंगे रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 13 पैसे कमजोर होकर ₹94.67 पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.38 पर कारोबार कर रहा था। सिद्धार्थ, आज 0.3% के लमसम में बाजार में गिरावट देखने को मिली। क्या, जैसा हम अभी पीछे शो शुरू होने से पहले भी बातचीत कर रहे थे, क्या ये किसी किकस्टार्ट की डिमांड है या चारों तरफ से एक हताशा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ?
2: नहीं प्राची, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस थी, तो जो कि बहुत बड़ा चिंता का सबब था, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश के लिए जो कि बहुत बड़े पैमाने पे एनर्जी जो इम्पोर्ट करता है, एनर्जी की जो बास्केट है हमारी कम्प्लीटली ऑलमोस्ट 90% हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जो वो अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति जो हुई है, कायम हुई है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अभी भी उस पर अनसर्टेनिटी है, एक दूसरे के तरफ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो उसका फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि क्रूड ऑयल जो है उसकी जो तेल की कीमतें हैं वो काफी गिरावट आई है, और वो सीधे सीधे हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन जहां तक आपका जो सवाल है कि हताशा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अनसर्टेनिटी मैं निश्चितता जरूर कहूंगा, और खासकर वो जो हमें बाहर से आ रही है, अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अभी भी काफी
0: वैश्विक संकेत ज्यादा प्रभावित कर रहे
2: हैं। हाँ, काफी हद तक आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हाई हैं, और ऐसी संभावना है कि वहां पे, और ये तब हो रहा है जब अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, जबकि वहां पे लेकिन साथ साथ महंगाई का जो डर है वो वहां पे भी बना हुआ है। तो ऐसा अपेक्षा की जा रही है कि वहां का जो फेड रिजर्व है, जो वहां की मॉनिटरी अथॉरिटी है, कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स को और बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं उसका एक दबाव आ रहा है। और साथ साथ ये भी, अगर ऐसा होता है तो जो अमेरिकी कंपनीज हैं वो जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो खर्चा करती हैं, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहते हैं तो वो उस पर भी कहीं ना कहीं, मतलब उस पैमाने पे शायद नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो रहा है। साथ साथ मैं कहूंगा जो डोमेस्टिक कारण है, जहां तक आप देखेंगे जिस तरह से हमने जो तकरीबन 100 दिन से ज्यादा जो वेस्ट एशिया की जो ये समस्या जो लड़ाई थी वो चली, उसके बावजूद जिस तरह से हमने अपनी जो पॉलिसीज हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज, जहां तक एलपीजी को लेके हो, पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेके हो, फर्टिलाइजर को लेके, उसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से जो है उसका संचालन किया, उसको मैनेज किया। हाँ, ये जरूर है कि अभी एक फियर और जो आप कह सकते हैं जो हमारे लिए डोमेस्टिक लेवल पे बना हुआ है, हालांकि तेल की कीमतें कम होने से हमको बहुत राहत मिली है, लेकिन साथ साथ जो मॉनसून को लेके एक चिंता बनी हुई है वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा अभी होल्ड कर रही है।
1: सो सुधाफ, इज द मार्केट रिएक्टिंग टू इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स और मेयरली ब्रीदिंग आफ्टर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस?
2: नो राजेश, आई वुड से एज फार एज आर फंडामेंटल्स आर कंसर्न्ड, आई थिंक दैट वाज नेवर अ रीजन फॉर वरी फॉर इंडियन मार्केट। इफ यू लुक एट आर ग्रोथ फोरकास्ट और इफ यू लुक एट आर इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री एंड ऑल्सो इफ आई वुड टेक यू बैक टू दी स्टेटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा अ फ्यू डेज बैक व्हेन ही सेड दे डू नॉट सी एनी सेकेंड राउंड इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी प्राइजेस हैविंग अ ह्यूज no impact on inflation. So yes, I would also at the same time, and plus he also said that it is premature to talk about a hike in interest rate. So I don't think it's a question of any reason for domestic our own fundamentals. So as far as our fundamentals are concerned, I think we are completely safe and sound. Yes, the West Asia conflict would have definitely has an impact on our growth for the current financial year. Also there is a little bit pressure on the prices, inflation, but yes, I would say the overarching or the big factor which I think would get cleared in times to come is obviously how monsoon fares. But there also I would say for now India is far better prepared. If you look at the reservoir levels plus the area under irrigation, artificial irrigation has also gone up in a huge manner. We have very high stocks of food grains, both rice and wheat, so nothing to worry. Government has also procured pulses also essential goods like onion and tomatoes, so that also is going on. So I don't see, plus also there has been a lot of diversification of our agriculture in terms of people getting into fisheries, animal husbandry. So yes, there could be some impact, but it needs to be seen how much and if at all it will be there.
1: Okay. We'll soon be joining our representative in Dubai, Vinod Kumar, who will let us know how the talks between Iran and US is taking place. In fact, we'll be joining him shortly. So, Vinod, Can you hear us?
3: Yes, Mr. Rajeshwari, I can hear you.
1: Okay, so what is the current status of

0: for, I think, the West Asia.
1: Correct. So that what is heartening to notice the plan B that the countries are coming up with, like Delhi government has approved an ambitious electric vehicle policy. They are giving cars up to 30 lakh rupees exemption from registration fees and road taxes. Now, all these steps are in a right direction. And as a result of which, the EV stocks have also gone up.
0: Yeah, Rajesh, because I think already Delhi is now announced it. Yes, I think the Delhi CM announced it yesterday. A lot of other states have also already taken the same initiative. And I think as a policy also, we've been pushing non-fossil fuels in terms of wind energy, solar. So because if you see on the rooftop, solar program also came in, not in this year's budget, a year before this. So I think the focus of the government has also been in terms of diversifying the sources of energy, also diversifying the non-fossil fuel side. So I think that has yielded good results. Also, the way we managed our own energy needs in terms of huge LPG, natural gas and petrol diesel requirement. And if you look at the way we put in a system to deal with the needs of the industry as well as the households, obviously the households were given priority now, but we are returning back to normalcy.
2: सिद्धार्थ, ईवी स्टॉक की आपने बात की, तो आईटी स्टॉक की बात कैसे ना हो. आईटी स्टॉक में हम देख रहे हैं कि गिरावट हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो कंपैरेटिवली रेजिलिएंट है. इसे आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, देखिए प्राची, जो ये सवाल आपने पूछा आईटी स्टॉक्स को, तो इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखेगा. आज अमेरिकी बाजार में ये जो क्वार्टर खत्म हो रहा है आज, इसको आप कहेंगे तो 6 साल की सबसे बड़ी बढ़त के साथ अमेरिका के शेयर बाजार बंद हो रहे हैं. और उसमें जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो बेस्ड कंपनीज हैं या जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उनकी वजह से ये मतलब वो फाउंडेशन है इस बढ़त का अमेरिकी बाजार. लेकिन उसके उलट अगर आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान के बाजार में जो हमारी आईटी कंपनीज हैं उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है, काफी पिटाई भी हुई है. और इसके में दो प्रमुख कारण मतलब मुझे लगता है, एक ये परसेप्शन है कि हमारी कंपनियां कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल आईटी जो सप्लाईज मतलब आईटी का जो काम करती थी, जो ट्रेडिशनल जो हेडकाउंट बेस्ड था, तो वो एक परसेप्शन है ऐसा. मैं उसको सही नहीं मानता कि कहीं ना कहीं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे हैं. दूसरा जो कारण फिर अमेरिका से आता है, जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स हाई है उसकी वजह से एक ये परसेप्शन है कि वहां पे जो कंपनियां जो जिनकी आईटी के क्षेत्र में जो आउटसोर्सिंग करेंगे वो कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो आईटी कंपनीज हैं उनको कम काम मिलेगा. तो मुझे लगता है एक तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके परसेप्शन है बहुत जल्दबाजी, क्योंकि मुझे लगता है जितने हम गेन्स देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मुझे नहीं लगता अब दुनिया में एक ये परसेप्शन भी डेवलप हो रहा है कि हो सकता है कि जितना हम सोच रहे थे कि जितने बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमको फायदा मिले, ऐसा ना हो. और मुझे लगता है हिंदुस्तान की आईटी कंपनीज फिलहाल जो बिल्कुल ठीक बात आपने जो बात कही कि, लेकिन मुझे लगता है यही प्रमुख दो कारण है जिसकी वजह से हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा दिन ये स्थिति बनी रहेगी.
2: रुख करते हैं श्रोताओं एशिया और यूरोपीय बाजार की तरफ. प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज बढ़त देखी गई. ताइवान का ताइएक्स 2.5%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1% ऊपर, जापान का निकेई 0.9% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.5% ऊपर गया. वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.7% गिरा और हांगकांग का हैंगसैंग सूचकांक 0.6% नीचे आया. बात अगर यूरोपीय बाजारों की करें तो ये बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 1.7%, लंदन का फुटसी 1.2% और फ्रांस का कैक 0.6% बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया.
1: US equities ended higher yesterday as weekend hostilities between the United States and Iran eased, while major technology stocks rebounded following recent selling. Among the major indices, the Nasdaq Composite surged 2.1%, while the S&P 500 climbed 1.2%. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average rose 0.6% to close at a record high of 52,183, following the inclusion of Alphabet in the index. Now, Siddharth, the big question

0: question whenever we talk about the U.S. markets is, will the rates be raised by the Fed or not? If so, then what will be the repercussion of that on the Indian markets?
1: Rajesh, I think that apprehension is already being felt in the Indian markets. I think the impact, the range bound, we are seeing the behavior, range bound behavior of Indian markets is basically because of that. So I think, you look also, there's a feeling this is happening despite U.S. economy doing well. There is obviously fears of inflation there. And obviously, if the interest rates remain elevated, obviously, U.S. Treasury being the safest instruments, investment instruments, obviously, there is a flight of capital towards U.S. And also, if you look the world around, if you look at the yen depreciating against dollar, obviously, that the big reason is obviously the differential, interest rate differential between Japan and U.S. And also, as I said earlier, the companies in US are expected to invest less in technology outsourcing, and that is why we are seeing some kind of impact on our own Indian IT companies also.
2: सिद्धार्थ, हम अगर कॉस्पी के अभी पिछले एक महीने के ग्राफ को देखें तो उसे आप किस तरीके से आप उसे कैसे अवलोकित करते हैं?
1: नहीं, देखिए, कॉस्पी जो वो उनका जो इंडेक्स है वो बेसिकली दो बड़ी कंपनियां जो है उसका ऑलमोस्ट 55% जो 55% जो उसका जो मार्केट कैप है कॉस्पी का, वो दो बड़ी कंपनियां जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चिप मेकिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं. तो कहीं ना कहीं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कोई भी खराब खबर आती है, कोई भी ऐसी निराशा वाली खबर आती है, तो उसका इम्पैक्ट वहां दिखता है. साथ साथ वहां की सरकार ने एक अभी प्रस्ताव रखा है, अभी इस पे कोई फैसला नहीं किया है, कि जो अनरियलाइज्ड गेन्स, कि मतलब हम ये मान लें कि आपको इस साल जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है या जब से भी वो कट ऑफ लें उसको, तो ये वो मान लें कि आपको फला स्टॉक में भले आपने उसको बेचा नहीं है, लेकिन आपको 10 रुपए में आपने उसको खरीदा था और आज उसकी कीमत 15 रुपए है, तो जो अनरियलाइज्ड गेन है, जो आपने आपको जो गेन है उस पर कहीं ना कहीं टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव सेंटिमेंट उसने किया था उस कॉस्पी पे. बट मुझे लगता है दोबारा फिर आफ्टर दिस यूफोरिया जो दिखा हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, अमेरिका में जो तेजी दिख रही है, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के की कंपनियों द्वारा, तो मुझे लगता है अभी दोबारा वो जो है वहां पे things are normalizing.
0: So that's what will bring positive sentiments back in the global markets.
1: I think this, Rajesh, I think we'll have to wait and watch how interest rate scenario, how Iran US talks pan out, so and what kind of impact we have on, and how much impact do we have in terms of inflation, US, what kind of interest rate hike we see in US. I think all those factors will determine what happens globally all around. Plus also I would say another important factor is the metal prices, the prices of metal, especially gold, which is always seen as a safe haven. We are seeing, so a lot of new things are also happening. The old phenomena where gold was always seen in times of instability, we used to see investment in, but here we are seeing selling in gold. Okay. Especially obviously when dollar prices are going up, obviously you gold is priced in dollar. So I think all these kind of instability also, things till things settle down, I think we will see this kind of scenario.
2: आगे बढ़ते हैं. सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी. विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की. सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते अपील दायर करें.
0: एथेंस हेडक्वार्टर्ड यूरोबैंक हैज लॉन्च्ड द यूपीआई बेस्ड रेमिटेंस सर्विस फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स फ्रॉम ग्रीस टू इंडिया. द इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ द बैंक्स स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड. इन अ सोशल मीडिया पोस्ट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड that the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with

0: UPI now live in Greece. Eligible customers can transfer money instantly, securely, and seamlessly, with transaction costs reducing drastically to a fraction of conventional transfer costs. Mr. Goel also met the Chief Executive Officer of Eurobank, Fokion Karavias, in Greece. During the meeting, both leaders held discussions on expanding the India-Greece economic partnership and encouraged Greek businesses to invest in India. Now, this is ease of doing business, part of ease of doing business. Siddharth.
1: Rajesh, we are pioneers, leaders in digital payment structure. Our UPI is going all over the world, and I think now almost 15 countries would be using our UPI interface, and the convenience which it brings, you can also, you know, kind of, it is portable, you can use it with other apps, you can make payments, plus you can make cross-border.
0: And the fraction of a cost, as I just read
1: up. There is hardly any cost. Cross-border payments you can make, you can use when you're traveling outside overseas, plus also the best part is security.
0: Okay. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.4% up at $73.43 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.8% up at $71.34 per barrel when reports last came in. And after this Doha talk, I'm sure the prices will come down.
1: Yeah, and prices haven't gone up also very, I don't think it's around $73 per barrel, which is acceptable to us. It's very, we are at a very comfortable level.
0: In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.2% up at 1,43,120 rupees per 10 grams, while silver was trading 2% higher at 2,27,600 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi commodity exchange mein August anubandh wala sona 0.1% badhkar 1,42,622 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki September anubandh wali chandi 2% ki badhat ke saath 2,27,069 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. क्या इसी तरीके से अभी आप करेक्शन देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस में?
1: मुझे लगता है जबकि डॉलर मजबूत हो रहा है, एक बड़ा कारण है वो करेक्शन का. और जहां तक हमारी इंडियन मार्केट्स में, तो बहुत बड़े पैमाने में लोग जो है, एक तो सरकार की तरफ से अपील हुई कि ऐसे समय पर मत खरीदें जब हमारे ऊपर इस तरह का संकट है, क्योंकि हम ज्यादातर गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं. और उसके अलावा जो बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो अपना पुराना सोना है वो लेके बाजार में आ रहे हैं और उसको जो है एक्सचेंज कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो मुझे लगता है कि हाँ, फिलहाल जो है कीमतें शायद अभी जो गिरावट है वो इसी लेवल पे रेंज बाउंड रहनी चाहिए
2: या थोड़ी और गिर सकती है.
1: जी बिल्कुल गिर सकती है, क्योंकि चांदी में खासकर, क्योंकि उसको भी सस्ता इस्तेमाल कैसे किया जाए, कम से कम किया जाए इंडस्ट्रियल यूज, उसकी वजह से भी कीमतें नीचे आई हैं.
2: सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में भाग लेने के लिए.
0: एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन. Benchmark domestic indices decline. Sensex drops 250 points. Nifty settles at 23,866. Most Asian stock market indices end in positive territory. And global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। यह पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा

0: है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: धन्यवाद, शुक्रिया।
1: तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तनेजा साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरतों का 80% ऊर्जा जो है, तेल है, गैस है, वो आयात करता है। पूरी तरीके से हम 80% के लिए आयात पर निर्भर हैं, और पश्चिम एशिया जो है भारत के कच्चे तेल के आयात का एक प्रमुख स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है। हालांकि हम अभी रूस से भी ले रहे हैं, बाकी दूसरे देशों से भी ले रहे हैं, लेकिन हाल के संकट को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इतनी गंभीर चुनौती क्यों माना गया, जबकि हम काफी कुछ डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं?
0: देखिए, भारत में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेल की अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आज भी तेल की अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो ईंधन का प्रयोग जो होता है, ऊर्जा का प्रयोग जो होता है, वो कहीं ना कहीं वो तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले से आती है। पूरी दुनिया की यही स्थिति है। हालांकि काफी जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी फोकस है, बहुत उसमें दुनिया में काम हो रहा है, भारत में तो बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। भारत तो काफी हद तक उसका जो सौर ऊर्जा का जो क्रांति है उसका नेतृत्व कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि हम बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे देश में बड़ी आबादी है, तो हमको जितने भी तरह की ईंधन चाहिए, हमको चाहे वो पारंपरिक ऊर्जा है जैसे तेल है, गैस है, कोयला, हमको वो भी भारी मात्रा में चाहिए, और दूसरी तरफ जो नवीन ऊर्जा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हमको वो भी चाहिए। अब चूंकि हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी भी काफी हद तक पारंपरिक ऊर्जा पे चलने वाली अर्थव्यवस्था, और उसमें भी खासतौर से तेल का, जैसे आपने जिक्र किया, हम लगभग अपनी जरूरत का 88% तेल आयात करते हैं, 8%। हालांकि उसमें वो हिस्सा शामिल है जो हम कच्चा तेल आयात करते हैं, उससे पेट्रोल डीजल वगैरह बना के उसका फिर निर्यात करते हैं, वो एक अच्छा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, हमको उससे विदेशी मुद्रा की कमाई होती है, और हम चूंकि रिफाइनिंग की एक सुपर पावर है तो वो भी हम करते हैं। जब हम 88% तेल आयात की बात करते हैं, उसमें वो हिस्सा शामिल होता है जो कच्चा तेल आयात होता है, और उसको हम उसमें कुछ हिस्सा उसका पेट्रोल डीजल बना करके, ATF बना करके, टर्बाइन फ्यूल बना के निर्यात कर देते हैं, और 56% जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, वो हम आयात करते हैं। LPG हम भारी मात्रा में आयात करते हैं। इसके अलावा जो सौर ऊर्जा के उपकरण वगैरह है वो भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, यूरेनियम भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हमारी आयात पर निर्भरता काफी है, और चूंकि हम एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लगभग 7% हमारा GDP ग्रोथ है औसतन, तो ऐसे में बिना ऊर्जा के वो नहीं होता। हमारी ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा है, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हम ऊर्जा के जो है कंज्यूमर है, 3rd largest in the world, और दूसरी तरफ भारी आयातक भी हैं। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति के अंदर जो है, जो पश्चिम एशिया के जो हालात बने, अभी तक पारंपरिक रूप से वहां से ज्यादा इसलिए तेल मंगाते रहते थे, और गैस भी क्योंकि हमारे बहुत नजदीक है, समुद्री जहाज से वहां से लाने में मात्र 5 से 7 दिन लगते हैं, तो जहाज का भाड़ा कम होता है, इंश्योरेंस की कीमत कम होती है, और पश्चिम एशिया के तमाम देश है से हमारे बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो इसीलिए ये युद्ध जो ये हुआ, और इसने, जैसे देखिए, तेल के बारे में तो खासतौर से कहा जाता है कि वो जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है, तो तेल और गैस दोनों के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता है। तो ये युद्ध हुआ, लेकिन इससे ये उम्मीद किसी भी देश ने नहीं करी थी कि युद्ध जो इस स्तर पर पहुंच जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है, निर्यात होता है, उसको जो है वेपनाइज कर दिया जाएगा या उसको बंद कर दिया जाएगा। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, ना भारत ने, ना किसी देश ने सोचा था ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ, और उससे पूरी दुनिया में बेचैनी आई। चूंकि हम भारी आयातक हैं, हमारे लिए भी बहुत सारी परेशानियां पैदा हुई।
1: इन अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में न तो ईंधन की बहुत भारी कमी कहीं देखी गई, और न ही खरीदारों के बीच इस तरह की कोई घबराहट भी देखी गई। इस स्थिरता को बनाए रखने में भारत सरकार के कौन कौन से कदम रहे, और किन्हें आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप ये देखते हैं, हम दुनिया के, जैसे मैंने पहले कहा कि तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं, दूसरे सबसे बड़े हम आयातक हैं, रोजाना प्रतिदिन हम 58 लाख बैरल तेल जो है उसकी खपत करते हैं, आप अंदाज लगाइए 58 लाख बैरल, और उसमें से 52 लाख बैरल हमको आयात करना पड़ता है, और काफी बड़ी मात्रा में ये तेल उस इलाके से आता था जिसको हम पश्चिम एशिया या खाड़ी के देश बोलते हैं। और जब वहां युद्ध शुरू हुआ तो तमाम जो वो सप्लाई थी पूरी दुनिया के लिए 20% कम हो गई, लेकिन भारत के लिए तो कई मामलों में 50% से ज्यादा जो डिस्ट्रप्शन हो गया सप्लाई का। तो ऐसे हालात के अंदर जो अगर आप देखते हैं, तो जिस तरीके से हमारे भारत सरकार ने, और भारत सरकार में जो भी हमारे नीति निर्माता हैं, हैं या जो सरकार को चलाने वाले हैं, और उसमें भी खासतौर से जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे दूतावास हैं, और इस साथ साथ जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तेल की, इंडियन ऑयल हो गई, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, इन सब लोगों ने जिस हिसाब से आपस में कोऑर्डिनेट होकर के एक टीम बन करके जो क्राइसिस मैनेजमेंट किया, वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। मैं एनर्जी सेक्टर पूरी

0: दुनिया का देखता हूँ, लगभग हर देश पे को मैं ट्रैक करता हूँ, एक लंबे समय से करता हूँ। पर मुझे लगता है 2 महीने अगर आप देखते हैं, जब युद्ध शुरू हुआ था 2 महीने, तो भारत का जो उपभोक्ता है और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है और भारत का इंडस्ट्रियल उपभोक्ता उसमें शामिल है, जिस हिसाब से उसको शील्ड किया गया, बचा के रखा गया, लेकिन उसके अलावा अगर आप ये देखते हैं तो जिस हिसाब से हमने मैनेज किया कि जहां एक तरफ तो जो खाड़ी के देशों से लगभग जो तेल गैस का आना ठप हो गया, हमने अन्य देशों में जाकर के लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना गए, ब्राजील गए, गुयाना गए, अमेरिका, कैनेडा, नॉर्वे, अंगोला, नाइजीरिया, इजिप्ट, ओमान, इन देशों से लाना शुरू किया, और उसमें हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे उन लोगों की बड़ी बड़ी भूमिका थी, और हमारे मंत्रीगण खुद उन लोगों ने फोन उठा करके बातचीत करी, अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करी, कई जगह तो हमारे विदेश मंत्री स्वयं गए, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके अलावा कतर, तो उसमें हमारे और मंत्री लोग गए, तेल मंत्रालय से लोग गए, तो हमने और अमेरिका से जो क्योंकि भारी मात्रा है वहां से हमने इम्पोर्ट किया, तो रियल टाइम पे हमारे यहाँ पॉलिसी जो है उसमें कदम उठाए गए, रियल टाइम बेसिस पे बिना किसी ईगो के ये देखा गया कि कहां से भी तेल उपलब्ध है उसको लेके आओ। एक बात कि भारत ने इसलिए पक्का करने के लिए कि आम उपभोक्ता को, खासतौर से गरीब उपभोक्ता को कोई दिक्कत ना हो कुकिंग गैस में या पेट्रोल में या डीजल में, भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश से दुनिया में जहां भी तेल मिलता है उसको खरीदो, यहां तक भी कह दिया गया था कि अगर महंगा मिलता है तो महंगा लो लेकिन उसको लेके आओ, तेल उपलब्ध कराओ। तो हमारी कंपनियों ने दुनिया भर में जाकर के कई दफे ऐसा भी हुआ तेल बड़े महंगे दाम पे मिला लेकिन उसके बावजूद आम उपभोक्ता को बर्डन पास ऑन नहीं करा गया, सरकार ने उन कंपनियों ने उसको एब्जॉर्ब किया और ये पक्का किया कि सारे देश के अंदर तेल उपलब्ध हो। हमारे पड़ोस के देशों में जिसमें पाकिस्तान जैसे देश शामिल है, वहां पे 2-2 दिन लोगों को लाइन में लगना पड़ा पेट्रोल लेने के लिए और कुकिंग गैस लेने के लिए। भारत में आम उपभोक्ता ने इस तरह की कोई तकलीफ नहीं देखी। थोड़ी बहुत दिक्कत कुछ इलाकों में कुकिंग गैस एलपीजी को हुई थी, जिसमें भारत सरकार ने हमारे रिफाइनर्स को कहा कि जो तेल का और चीजों का उत्पादन आप कम करिए लेकिन एलपीजी का उत्पादन बढ़ाइए। उसका नतीजा हुआ धीरे धीरे जो जहां भी शॉर्टेजेस थी, कमी आई थी, उसको तुरंत उसकी भरपाई कर दी गई। दुनिया भर की सरकारों को मैंने देखा इन क्राइसिस के मोमेंट पे, और ये दुनिया का, वर्ल्ड का, इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक था, झटका था। 70 के दशक में भी इतना बड़ा झटका नहीं था, सबसे बड़ा। लेकिन भारत ने जिस तरीके से, भारत सरकार ने और भारत की कंपनियों ने और हमारे पॉलिसी मेकर्स ने और हमारे डिप्लोमेट्स ने जिस तरीके से इस पर रियल टाइम बेसिस पे काम किया, और आम उपभोक्ता, खासतौर से गरीब उपभोक्ता, देश की अर्थव्यवस्था, देश का रुपया डॉलर के अगेंस्ट, उस सबके लिए काम किया और उसको शील्ड किया, बहुत ही काबिले तारीफ है।
1: बिल्कुल। और तनेजा साहब, साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि संकट के दौरान भारत के पास कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार जो है वो उपलब्ध था, और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक्स, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं और सरकार ने लोगों को सांत्वना दी थी, भरोसा दिलाया था, ये बफर स्टॉक का कितना महत्व है और कितना दिन का भारत के पास बफर स्टॉक होता है?
0: देखिए, हमने अपने देश में इनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, एसपीआरस, वो हमने जो आमतौर से जमीन के नीचे बनाए जाते हैं और उसमें तेल भर के रखा जाता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन, स्थिति आ जाए तो देश की अर्थव्यवस्था को कोई परेशानी नहीं हो। तो हमने 25 दिन का तो वो बना रखा है। इसके अलावा 25 दिन का जो है हमारे जो जगह जगह जो टैंक फार्म्स हैं उनको बोलते हैं कॉमर्शियल रिजर्व्स, वो हमारे पास थे। तो 50 दिन का तेल हमारे पास रिजर्व में था और वो आज भी बरकरार है, और उसको जब जब हमने कंज्यूम किया उसको तुरंत भर दिया गया फिर बाद में। और अब इसके बाद जो अब युद्ध हुआ है उसके बाद अब तैयारी है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं इनको कम से कम 3 महीने का बना दिया जाए। और लेकिन अब जो रिजर्व्स बनाने की बात हो रही है उसमें खाली पेट्रोल डीजल की नहीं या खाली कच्चे तेल की नहीं, अब जो एलपीजी है उसकी भी बात हो रही है कि उसका भी रिजर्व, और एलएनजी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है का प्रयोग सीएनजी की तरह से होता है, या घर में जो गैस आती है पेट्रोलियम नेचुरल गैस बोलते हैं पीएनजी, उसकी तरह होता है पाइप नेचुरल गैस पीएनजी, तो उस पर भी अब जो है काफी काम हो रहा है।
1: और आप बात कर रहे थे एसपीआरस की, यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी सामरिक पेट्रोलियम भंडार, ये देश में कहां कहां पर हैं?
0: देखिए, अभी ये हमने 4 जगह बना रखे हैं और अभी ये है कि इसको उन्हीं को वहां भी एक्सपेंड किया जा रहा है, और अब लग 3 जगह और जो है उस पर काम चल रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें काफी भारी मात्रा में इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसमें होता क्या है कि जो ऐसे इलाकों में बनाए जाते हैं जो थोड़ा सा पहाड़ी है और समंदर के नजदीक है, जिससे कि आसानी से समुद्री जहाज से वहां तेल लेके आया जा सके, और दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे एक तरीके से अंदर जो आप आम भाषा में बोलो तो जैसे गुफाएं बना दी जाती हैं, वो गुफाएं बना करके उनमें कच्चा तेल भर दिया जाता है, उसमें एक ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद उसमें भर दिया जाता है। दूसरा एक तरीका यह भी होता है कि जो तेल के कुएं हैं जहां से तेल आपने निकाला है, वहां जो जगह खाली होती है, क्योंकि वहां से तेल तो निकल गया तो वो जगह खाली हो जाती है, तो उसमें भी तेल को, कच्चे तेल को भर के इस एक तरीके से स्टोरेज बना के रखा जा सकता है। अमेरिका ये काम बहुत ज्यादा करता है, भारत में भी इसके बारे में भी अब काफी काम हो रहा है।

0: चूंकि हमारी हम दुनिया के अंदर जो है आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो कच्चे तेल की कीमत होती है वो जो ड्राइव करती है वो डिमांड ड्राइव करती है यानी मांग, और वो जो डिमांड में इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो भारत से आ रही है। भारत आज भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर तेल के बाजार का बिल्कुल सितारा है, और भारत में जो जिस हिसाब से भारत में विकास हो रहा है, तेल की मांग बढ़ रही है, उस हिस्से पूरी दुनिया की जो तेल की अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर करती है, हमारे लिए एक अवसर भी है। इसीलिए आपने देखा कि कोई देश ये नहीं चाहता था, तेल निर्यातक देश कोई भी आज भारत से संबंध नहीं खराब करना चाहता, सब भारत जैसे संबंध रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी निर्भरता भारत पे आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि हम दुनिया की जो वर्ल्ड की जो ऑयल इकोनॉमी है आज उसको अगर डिमांड को कोई ड्राइव कर रहा है तो वो भारत है। पहले चीन होता था, उससे पहले अमेरिका होता था, लेकिन आज भारत है।
1: बिल्कुल। और आपने तनेजा साहब तेल विपणन कंपनियों यानी OMCs की भी बात की, ये जब आपदा चल रही थी पश्चिम एशिया में संकट चल रहा था, इसमें OMCs की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी और कैसे सभी चीजों को मैनेज किया?
0: हमारा बहुत बड़ा देश है और देश में कई इलाके, आपको शायद ही कोई इलाका होगा जहां पे आपको पेट्रोल और डीजल ना मिलता हो, यहां तक भी लोग कहते हैं कि कई दफे ऐसा हो सकता है आपको पानी ना मिले लेकिन वहां तेल आपको मिल जाएगा, इतनी बढ़िया काम हमारी कंपनियां ये करती हैं। और इन्हीं को मैंडेट है कि पूरी दुनिया में आप जाइए, चूंकि हम भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं, इनको मैंडेट है पूरे विश्व में जाइए, तेल खरीदिए, उसको जहां से लेकर के आइए हमारी रिफाइनरी में उसको रिफाइन करिए, और उसके बाद पूरा जितना विशाल देश है उसका वितरण हिसाब से करिए कि हर जगह पेट्रोल डीजल और एलपीजी उपलब्ध हो। ये कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन चुनौती इनके सामने आ रही थी युद्ध के दौरान कि कच्चा तेल महंगा मिल रहा था, कच्चा तेल के जो निर्यातक थे वो कुछ ऐसे देश जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, उनकी तरफ ज्यादा झुकाव उनका कभी कभी बीच में होता था, कभी कभी ज्यादा कीमत भी मान ली जाती थी, लेकिन उस सब कठिनाइयों को नेविगेट करते हुए हमारी कंपनियां वहां से लेकर के आई। और दूसरी बात, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस भारी मात्रा में हम तेल आयात करते हैं या कंज्यूम करते हैं और उसको हैंडल करने के लिए इस कंपनियों को चाहिए, इसीलिए सरकार शुरू में नहीं चाहती थी और ये कंपनियां भी शायद ना चाहती थी, लेकिन जब इनके तेल इन जो बाहर से ले रहे थे वो बहुत महंगा आ रहा था, खासतौर से अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, तब इन कंपनियों को लगा कि दो महीने इन्होंने दाम नहीं बढ़ाया था लेकिन इनको जो है 7.5 रुपए प्रति लीटर चार अलग अलग किस्तों में दाम बढ़ाना पड़ गया, और वो इसलिए बढ़ाना पड़ गया क्योंकि जो कच्चा तेल आ रहा था वो बहुत महंगा पड़ रहा था। और दूसरी तरफ सरकार भी ये समझती है, ये वो कंपनियां थी जिनके ऊपर मैंडेट है, जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया से तेल आए, तो इनकी फिजिकल या फाइनेंशियल हेल्थ को बचा के रखना, तो फाइनेंशियल हेल्थ इनकी दुरुस्त रहे, पुख्ता रहे, जिससे ये अपना काम पूरी दुनिया तेल लाने का करते रहे, इसीलिए वो 7.5 रुपए बीच में बढ़ाने पड़ गए।
1: बिल्कुल। नरेंद्र तनेजा जी, पश्चिम एशिया संकट के दौरान किस तरीके से भारत ने अपने तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई जारी रखी, आम नागरिकों को कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, तेल विपणन कंपनियों की क्या भूमिका रही, इन सब पर बहुत विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
0: धन्यवाद। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता पर चर्चा। भाग ले रहे थे इसमें ऊर्जा विश्लेषक नरेंद्र तनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सुर्खियों में कार्यक्रम के पश्चात एक बार फिर से इस मधुर प्रोग्राम को, जिसका नाम है सांस ढले, हम बढ़ाते हैं आगे। हर शाम को 7:25 और 12 सेकंड हो चले हैं और इस वक्त हमारे तमाम सुधीर श्रोता बड़ी ही बेसब्री से करते हैं इस प्रोग्राम का इंतजार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं और जो गीत आपने सुना आशाताई की आवाज में था। लता जी को जब हम सुनते हैं तो उनकी आवाज हमारे कानों में मिस्ट्री खोलती है, लेकिन कई बार जब हम आशा जी को सुनते हैं तो उसकी खूबसूरती लाजवाब होती है। उस वक्त हम लता जी को याद नहीं कर पाते। ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, fmgold@gmail.com पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सांझ ढले और तौबा ये मतवाली चाल। ये गीत मुकेश जी की आवाज में पत्थर के सनम से और ये फिल्म आई थी 1968 में।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर ये गीत था जूली फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। किशोर कुमार के गीतों के बीच में अपनी आवाज के बीच उसे यूडलिंग का जो शौक था वो उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई उस यूडलिंग ने। एक बार किशोर कुमार एक

में आरडी बर्मन के गाने की नकल करके उनकी नाक वाली विशिष्ट आवाज निकाल रहे कि तभी दरवाजा खुला और उन्होंने देखा कि खुद एसडी बर्मन वहीं पर खड़े थे। उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। शर्मिंदगी से बचने के लिए किशोरदा ने बिना किसी से कुछ कहे होटल के कमरे से की जो खुली खिड़की थी उससे कूद गए और पानी के पाइप के सहारे नीचे उतर गए। ये किशोरदा की चुलबुली हरकतों में से एक हरकत थी। आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं।

0: रफी साहब की आवाज में जीने की राह फिल्म से इस गीत के साथ सांझ ढले का ये प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में ईवी पॉलिसी कल से लागू होगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने द्वारका फेज वन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन किया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाता

0: दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। दिल्ली में 1,45,10,298 मतदाताओं के लिए कुल 13,033 मतदान केंद्र हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से अपना गणना प्रपत्र सही जानकारी के साथ भरकर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने अपने BLO को जमा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही और अद्यतन मतदाता सूची एक मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद होती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि कल से दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 लागू होने जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने बताया कि नई नीति में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 30,000 रूपये तक का खरीद प्रोत्साहन जारी रखा गया है। इसके साथ पहली बार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर 10,000 रूपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की पहली अप्रैल से दिल्ली में नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की पहली जनवरी से L5 श्रेणी के नए ऑटो रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पहले केवल सीमित संख्या में ई कार्गो वाहनों को प्रोत्साहन और कुछ मार्गों पर नो एंट्री समय से छूट का प्रावधान था, लेकिन अब N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1,00,000 रूपये तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा विकास के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार हमारे स्मारक हमारा गौरव योजना के अंतर्गत दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना और दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना को शुरू कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने जानकारी दी कि दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियां, ट्रस्ट संस्थाएं और इच्छुक नागरिक स्वैच्छिक योगदान के जरिए सरकार के ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाओं को अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा सकेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी और सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि ये संस्थाएं मानवीय सेवा की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम और शीतकालीन राहत कार्य शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज द्वारका फेज 1 में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सीवर लाइन बिछाने के विकास कार्यों की शुरुआत भी की। श्री विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक व्यापक और निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों पर प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध रहता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, जच्चा बच्चा देखभाल और बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए 12 प्रकार के मुफ्त टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन क्षेत्र में स्थित विभिन्न सरकारी खाली पड़ी जमीनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली परिवहन निगम सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली खाली भूमि का विस्तृत आकलन किया गया। दिल्ली के शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को

0: और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अतिरिक्त स्वच्छता संसाधनों को हरी झंडी दिखाई। एक रिपोर्ट।
1: शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण क्षेत्र के लिए कुल 76 आधुनिक स्वच्छता वाहनों और उपकरणों को स्वच्छता अभियान में शामिल किया गया है। इनमें 52 स्वच्छता वाहन शाहदरा उत्तरी और 24 वाहन शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 24 टिपर ट्रक्स, 10 हुक लोडर और 28 बैटरी रिक्शा भी शामिल हैं। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और वित्तीय सहयोग से स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजधानी के सभी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित यह बेड़ा दिल्ली की सफाई व्यवस्था को नई गति देगा। शिवांकी रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने शाहदरा दक्षिण क्षेत्र का निरीक्षण कर विभिन्न विकास परियोजना और आधारभूत संरचनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में अपेक्षित गति लाने के निर्देश भी दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र DRIC का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना दिल्ली रिज की अनूठी पारिस्थितिकी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए की गई है।
2: इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री गोयल ने कहा कि यह केंद्र उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जो दिल्ली रिज के इतिहास और विरासत के बारे में जानना चाहते हैं। यह केंद्र मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। सोमवार तथा सार्वजनिक अवकाश के दिन ये केंद्र बंद रहेगा। रेल निगम ने बताया कि जो आगंतुक मेट्रो से नहीं आ रहे हैं वे इस केंद्र को देखने के लिए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के कस्टमर केयर से 11 रुपए का प्रवेश टिकट खरीद सकते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
0: नई दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित एक रेस्तरां में आज आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार घटना की सूचना दोपहर लगभग 3:40 पर प्राप्त हुई। अग्निशमन विभाग के अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि बचाव कार्य के लिए दमकल की 7 गाड़ियां तैनात की गई। उन्होंने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है।
3: मौके पे जब फायर सर्विस के लोग आए तो ये पाया गया कि किचन के अंदर उनकी चिमनी और उसके अंदर जमा जो ऑयल होता है उसके अंदर फायर थी और अब जो है आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया। पूरी घटना के अंदर कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। अभी हम खाली बिल्डिंग को इवैक्यूएट करा रहे हैं।
0: पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम सभाओं में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के सदस्य डॉ आर बालासुब्रमण्यम ने यह रिपोर्ट जारी की। यह अध्ययन ग्रामीण भारत में सहभागी लोकतंत्र, स्थानीय जवाबदेही और समुदाय केंद्रित विकास के एक जीवंत संस्थान के रूप में ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए साक्ष्य आधारित एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव राज विवेक भारद्वाज ने कहा कि पिछले दशक में देश के ग्रामीण हिस्सों में सड़क संपर्क, जल और बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है।
4: पिछले दशक में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है। गांव में जैसे पानी की समस्या थी, हर घर में हर नल में जल है, समस्या थी बिजली की, सड़कों की। 98% गांव में आज की तारीख में संपर्क है, सड़क, बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज ILBS के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
5: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के

0: कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 विदेशी और 1 भारतीय नागरिक शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 71 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि वो अब मादक पदार्थ के स्रोत, वित्तीय लेनदेन और अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र, जनप्रतिनिधित्व, संवाद और जनभागीदारी की मजबूत नींव पर आधारित है। श्री विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र संवाद, सहमति और उत्तरदायित्व की सशक्त परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शिक्षाविद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में श्री वर्मा ने सार्वजनिक जीवन में सेवा के उच्च मानदंड स्थापित किए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में श्री वर्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्री वर्मा ने दिल्ली में भाजपा संगठन को मजबूत बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में ईवी पॉलिसी कल से लागू होगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने द्वारका फेज वन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में

0: भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दे दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1,600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी सारागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। इस खंड पर यात्री रेलगाड़ियों के साथ ही गेहूं, मक्का, गिट्टी, उबले चावल, सीमेंट, उर्वरक, चावल, नमक, रेत, पत्थर और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई होती है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचा लिया है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की जानी चाहिए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president said every educated youth should help to bring forward those left behind and contribute towards achieving the goal of a developed India by 2047. On the occasion, Union Education Minister Dharmendra Pradhan urged students to become job creators rather than job seekers. Indian Railways has approved the doubling of over 44-kilometre Mansi Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. The project will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passenger and freight movement on this important route. In a series of approvals, Indian Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 stations or cabins on the high-density network HDN and highly utilized network HUN routes of Asansol Division of Eastern Railways. The cost of the project is over 400 crore rupees.

प्रोग्राम मधुरिमा में हम बात करते हैं किसी एक राग की, और आज जिस राग की हम बात कर रहे हैं वो राग है राग दीपक। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी रागों में से एक है राग दीपक, जिसे संगीत के जनक भगवान शिव के मुख से उत्पन्न माना जाता है। यह राग मूलतः अग्नि और ऊष्मा से जुड़ा है और इसके गायन का प्रभाव इतना तीव्र माना जाता है कि बिना दियों के भी ये वातावरण में आग और गर्मी उत्पन्न कर सकता है।

कार्यक्रम मधुरिमा में बात राग दीपक की। और इतिहास में कहते हैं सम्राट तानसेन, क्योंकि अकबर के दरबार में नवरत्न के थे, उन्होंने दीपक राग से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ एक प्रसंग आता है। एक बार दरबार के ईर्ष्यालु गायकों ने साजिश के तहत तानसेन से दीपक राग गवाया। ये राग रात में गाया गया। जैसे ही तानसेन ने राग गाना शुरू किया, वातावरण धीरे धीरे गर्म होने लगा और आग की लपटें उठने लगी। तानसेन का शरीर इस तेज से झुलसने लगा। अपनी जान बचाने के लिए तानसेन ने अपनी बेटियों से मेघ मल्हार गवाया और मेघ मल्हार के प्रभाव से बारिश हुई और तानसेन के शरीर की जलन शांत हुई। तो राग दीपक से जुड़ी हुई ये किंवदंती है जिसे आपने अभी सुना।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा। बात हो रही है राग दीपक की। राग दीपक की उत्पत्ति शास्त्रीय शास्त्र के अनुसार देवलोक में मानी जाती है। इसके गायन का जो प्रहर है वो रात्रि का दूसरा प्रहर है और राग दीपक के 5 अलग अलग प्रकार माने जाते हैं जो पूर्वी बिलावल, कल्याण, काफी और खमाज से संबंधित हैं। यह राग आज के समय में लगभग विलुप्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तानसेन के बाद इसे सही तरीके से गाने का साहस किसी ने नहीं किया, क्योंकि जरा सी चूक से भारी अनिष्ट होने की आशा रहती है।

0: बता दे।
1: कार्यक्रम मधुरिमा में राग दीपक से जुड़ी हुई जानकारी यकीनन आपको पसंद आई होगी। अमरपाली के इस गीत के साथ ही मधुरिमा प्रोग्राम को यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का यह नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। एशियन अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण पदक के साथ कुल 21 पदक जीते। वहीं अंडर 20 में कई भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से शुरू। बीसीसीआई ने एशियन गेम्स के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। टीम की कमान हरमनप्रीत को सौंपी। और रैपिड एंड ब्लिट शतरंज टूर्नामेंट क्रोएशिया के जागरेब में कल से शुरू। गुकेश और प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट से, जहां हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: मोरक्को ने मोंटेरी स्टेडियम में नीदरलैंड पर पेनल्टी शूटआउट में जबरदस्त जीत के साथ फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। 1-1 से बराबरी के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया। पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को ने 3-2 से जीत हासिल की। 72वें मिनट में कोडी गैपको ने गोल करके नीदरलैंड को बढ़त दिलाई। क्राइसेंसियो समरविले के गोल के सामने एक शानदार रन और ऑफ बैलेंस टचबैक ने गैपको को गोल करने में मदद की। गैपको अब विश्व कप में नीदरलैंड के लिए 6 गोल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वह सिर्फ जॉनी रेप से पीछे हैं, जिन्होंने कुल 7 गोल किए थे। मोरक्को ने 91वें मिनट में बराबरी का गोल करके वापसी की। सेंट्रल डिफेंडर इसा डियोप ने अतिरिक्त समय की शुरुआत में स्थानापन्न जेम्स डाइन टेल्बी के क्रॉस पर हेडर मारकर गोल कर दिया। मोंटेरी में 120 मिनट का रोमांचक मैच उतार चढ़ाव वाला रहा और रेगुलर या एक्स्ट्रा टाइम में कोई विनर नहीं बन पाया। पेनल्टी किक के दौरान दोनों देशों ने अपनी पहली 2 कोशिशों में से 1 में चूक की, तीसरी में गोल किया और फिर चौथी में चूक गए। यासीन बोनू ने क्राइसेंसियो समरविले का शॉट बचाया और इस्माइल साइबारी ने अपना गोल करके जीत हासिल करी। यासीन बोनू ने शूटआउट में बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं एक अन्य राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में पैराग्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को पराजित किया। पैराग्वे ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर यह कारनामा किया। बोस्टन स्टेडियम में खेला गया मुकाबला निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। फीफा विश्व कप के इतिहास में जर्मनी इससे पहले कभी पेनल्टी शूटआउट में नहीं हारा था। इस बार भी टीम ने आखिरी तक संघर्ष किया। अनुभवी गोलकीपर मैनुअल नोयर ने शानदार बचाव कर जर्मनी की उम्मीदें जिंदा रखी, लेकिन आखिरकार पराग्वे ने अपने तीसरे निर्णायक मौके का फायदा उठाकर अंतिम 16 में जगह बना ली। मैच के 42वें मिनट में जूलियो एंसेसो ने गोल करके पराग्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में फ्लोरियन विटर्स के क्रॉस पर काई हेवटर्स ने हेडर से गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद जोनाथन टाह ने भी हेडर से गोल किया, लेकिन उसे अमान्य करार दे दिया गया। तय समय तक कोई और गोल नहीं हुआ, इसलिए मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा। शूटआउट की शुरुआत जर्मनी ने की, लेकिन कोई हेवर्ट्स की पहली पेनल्टी पराग्वे के गोलकीपर के हाथों बचाव किया गया। इसके बाद मॉरिसियो ने गोल कर पराग्वे को बढ़त दिला दी। हालांकि जोशुआ किमिख ने अगली पेनल्टी पर गोल करके जर्मनी की वापसी कराई। इसके बाद गुस्तावो गोमेज ने गोल कर पराग्वे को 2-1 से आगे कर दिया, लेकिन जमाल मुसियाला ने शानदार शॉट लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया। रोमांच तब और बढ़ गया जब मटियास गोलार्जा ने गोल करके पराग्वे को जीत के करीब पहुंचा दिया, जबकि जर्मनी के लिए निक वोल्टमेट का अगला प्रयास रोक दिया गया।
2: Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history. Germany are leaving a World Cup.
1: उधर 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने भी जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद कासेमिरो और गैब्रियल मार्टिनेली के गोलों की बदौलत ब्राजील ने आखिरी मिनटों में यादगार जीत दर्ज की।
3: Belongs to Brazil. Brazil march on to the round of 16.
1: Vishesh Shukla, SportsScan.
0: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप में हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं और हर मुकाबला एक नई दास्तां लिख रहा है। और अब रुख कर लेते हैं टेनिस की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में इस वक्त एलिना रिबाकिना का मुकाबला लोइस बॉयसन से जारी है। वहीं पुरुष सिंगल्स में जे मेंसिक और टी सैमुअल के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। वहीं कल यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच

0: विच ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आइए जानते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: पुरुष सिंगल्स के पहले चरण में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने 3.5 घंटे तक चले मुकाबले में मियोमिर कैटमेनोविच को 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 से हराया। लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में सिनर ने कई गलतियों के बावजूद मुकाबला अपने नाम किया। कैटमेनोविच ने तीसरे सेट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अहम पॉइंट्स हासिल किए। अनफोर्स्ड एरर को कम करके निर्णायक सेट तक पहुंचने के बाद सिनर ने मैच पर पकड़ बनाई और जीत हासिल की। दूसरे राउंड में सिनर का मुकाबला पुर्तगाल के नोनो बोर्जेस से होगा। सिनर ने इस जीत के साथ ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में 94 मैच जीत लिए हैं। उन्होंने इटली के खिलाड़ियों में निकोला पियत्रांगेली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं 3 घंटे और 11 मिनट तक चले एक और रोमांचक मुकाबले में 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने अपने 21वें विंबलडन अभियान की शुरुआत चीन के येबुंग वू को 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 से हरा कर की। पहले सेट में दुनिया के 102वें नंबर के चीनी खिलाड़ी ने 15 विनर्स लगाए, हालांकि उतनी ही संख्या में अनफोर्स्ड गलतियां भी की। इस साल केवल 5 टूर्नामेंट खेलने वाले जोकोविच ने तीसरे सेट के अंत में पूरी ताकत झोंक कर वू की सर्विस ब्रेक की। जोकोविच ने संघर्ष करते हुए तीसरा सेट अपने नाम किया और फिर चौथे सेट में अहम मौकों पर पूरी तरह नियंत्रण बनाकर विंबलडन के पहले दौर में अपना रिकॉर्ड 21-0 कर लिया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात कर लेते हैं कुश्ती एशियन चैंपियनशिप पर। थाईलैंड के पटाया में एशियन अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण पदक के साथ कुल 21 पदक जीते। वहीं अंडर 20 के अलग अलग वर्ग में नीरज पटेल, आर्यन मलिक, विकास और दिशांत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 15 फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम पहले स्थान पर रही। भारतीय लड़कों ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। 52 किलो में प्रथमेश सूर्यकांत पाटिल, 62 किलो में नैतिक, 75 किलो में हर्षद केशव और 85 किलो में विवेक चौहान ने स्वर्ण पदक जीते। नीतीश ने 57 किलो में एकमात्र रजत पदक अपने नाम किया। 41 किलो में गौतम, 44 किलो में अहलावत वंश और 68 किलो में अरमान ने कांस्य पदक हासिल किए। वहीं ग्रीको रोमन में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही। 62 किलो में दर्पण राजू चौधरी ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। 48 किलो में यश, 75 किलो में गौरव पाटिल, 85 किलो में जतिन ने रजत हासिल किए। एकमात्र कांस्य पदक 57 किलो में धौनचक ने जीता। प्रतियोगिता के अंतिम दिन महिला कुश्ती टीम ने शानदार प्रदर्शन कर दूसरा स्थान हासिल किया। 33 किलो में समृद्धि पाटिल, 46 किलो में विनाक्षी और 66 किलो में दिशा ने स्वर्ण पदक जीता। दिव्या रानी ने 36 किलो में और ध्यानेश्वरी ने 42 किलो में रजत पदक जीता। निशा ने 54 किलो, दीपांशी ने 58 किलो, अंजलि ने 62 किलो वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत मेजबान इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल चेस्टर ले स्ट्रीट में खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम हाल ही में आयरलैंड से मिली हार के बाद नई शुरुआत की तलाश करेगी। वहीं इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर दावेदारी पेश करना चाहेगा। इस सीरीज में सभी की निगाहें 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्हें आयरलैंड के विरुद्ध T20 सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था। इस बीच एशियन गेम्स 2026 के लिए बीसीसीआई ने आज 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। ये प्रतियोगिता जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
3: एशियाई खेलों 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टीम इंडिया उतरेगी। भारत ने इससे पहले चीन के होंगजाऊ में हुए एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। टीम की बात करें तो उप कप्तान स्मृति मंधाना के साथ शैफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिगेस बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी को मजबूती देंगी। विकेट कीपर के तौर पर ऋचा घोष और कामलिनी को टीम में जगह नहीं मिली है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्विंग स्पेशलिस्ट रेणुका सिंह ठाकुर और अनुभवी अरुंधति रेड्डी के कंधे पर होगी। राधा यादव और श्रेयंका पाटिल स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को छकाएंगे। श्रेयंका चोट के कारण T20 विश्व कप से बाहर हो गई थी। यस्तिका भाटिया जो विश्व कप टीम का हिस्सा थी, उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। अमीषा, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं आईसीसी ने महिला टी20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। श्री चरणी गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जॉर्जिया वोल पहले स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। टी20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज ने शीर्ष पर अपनी जगह बनाए रखी है। और अब बात हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आज बेल्जियम के आगामी एक्सपोजर टूर के लिए 22 सदस्यीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर 5 से 18 जुलाई के बीच खेला जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: इस एक्सपोजर हॉकी टूर के दौरान युवा भारतीय टीम यूरोप की मजबूत टीमों का सामना करेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रिया और बेल्जियम के खिलाफ 2-2 मैच जबकि जर्मनी और नीदरलैंड्स के खिलाफ 1-1 मैच खेलेगी। इस एक्सपोजर टूर से टीम को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही महाद्वीपीय टूर्नामेंट से पहले उन्हें अपने कॉम्बिनेशन और खेलने के तरीके को परखने में मदद मिलेगी। इस टूर के लिए डिफेंडर अनमोल इक्का को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। गोलकीपिंग यूनिट में विवेक लाकरा और कुणाल तेवतिया शामिल है। डिफेंस लाइन में कप्तान अनमोल इक्का, रोहित कुल्लू, चिराग रविंदर, प्रशांत बारला, संजीत तिर्की और वी मणिमारन शामिल हैं। मिडफील्ड की जिम्मेदारी अद्रोहित इक्का, हरपाल, जीत पाल, मुकेश टोपो, मन्नू मलिक और ऋतिक लाकरा संभालेंगे। फॉरवर्ड लाइन में अजीत यादव, रवदीप सिंह, अर्जुन हरगुड़े, आर्यन जेस, लवनूर सिंह, कोनैन और गुरुसेवक सिंह शामिल हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 और 8 जुलाई को ऑस्ट्रिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 10 जुलाई को मेजबान बेल्जियम, 13 जुलाई को जर्मनी, 14 जुलाई को फिर से बेल्जियम और 17 जुलाई को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलकर दौरे का समापन करेगी। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात शतरंज पर। क्रोएशिया के जागरेब में कल से रैपिड एंड ब्लिट शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। गुकेश और प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे। ये प्रतियोगिता ग्रैंड शतरंज टूर का हिस्सा है जो शीर्ष खिलाड़ियों को एक साथ लाने का सबसे बड़ा मंच है। ग्रैंड शतरंज टूर के अंतर्गत इस साल की ये तीसरी प्रतियोगिता होगी और इसके बाद 3 और प्रतियोगिताएं होनी है। इस प्रतियोगिता में रैपिड शतरंज के 9 दौर जबकि ब्लिट शतरंज के 18 दौर खेले जाएंगे। रैपिड में हर जीत के लिए 2 अंक और ड्रॉ के लिए 1 अंक मिलेगा जबकि ब्लिट्स में जीत के लिए 1 अंक और ड्रॉ के लिए आधा अंक दिया जाएगा। उज्बेकिस्तान के नोदरबेक अब्दुल सत्तरोव, सर्बिया के इवान सारिक और रोमानिया के डीएक बोगदान डैनियल भी प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेंगे। और अब बात बैडमिंटन पर। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने आज अगले 2 विश्व के विश्व टूर कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट फरवरी 2027 और जनवरी 2028 में खेला जाएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 27 जुलाई से 1 अगस्त 2027 के बीच लखनऊ में होगा। वहीं 2028 में 25 से 30 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से

0: को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिल्क

0: पर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the two key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBGRAMJI Act 2025, will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VBGRAMJI Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged the students to become agents of social transformation, saying education should go beyond securing employment and help strengthen society, culture, traditions and economic progress. She said every educated youth should help bring forward those left behind and contribute towards achieving the goal of a developed India by 2047.
5: वर्ष 2047 तो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है. मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्त करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
4: Union Education Minister Dharmendra Pradhan urged students to become job creators rather than job seekers and said universities should lead innovation to help realize the vision of a developed India by 2047. The Indian Railways will launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44-kilometre Mansi-Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passengers and freight movement on this important route. The Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 stations or cabins on the high-density network and highly utilized network routes of Asansol Division of the Eastern Railway. The sanctioned work includes the replacement of 28 relay-based interlocking installations. It will cost over 432 crore rupees. The Railways has approved the provision of balanced 48 fibre optical fibre cable across Southeastern Railway at a cost of about 200 crore rupees. The move will strengthen the digital communication backbone of the railways network in the country. Union Home Minister Amit Shah today launched the Foreign Contribution Regulation Act 2.0 portal and the electronic Overseas Citizen of India card in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that both the initiatives will improve citizen services and address the difficulties faced by those receiving donations through the FCRA portal. He said when the intention is clear, the policy is transparent and there is a mindset to embrace technology, then all forms of governance becomes easier for honest people. He underlined that a strict surveillance system is established against wrongdoers and the country becomes increasingly secure. The Home Minister informed that the new system will bring great convenience to more than 50 lakh OCI cardholders. He added that after 20 years, when a new passport is issued, there will be no need to reissue the OCI booklet and the cardholder's registration number will remain unique. General Dheeraj Seth took charge as the 31st Chief of the Army Staff from General Upendra Dwivedi, who superannuated after more than four decades of distinguished service to the nation. General Seth is an alumnus of the National Defence Academy, Pune, and was commissioned into the Armoured Corps in December 1986. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the news.

0: मंथन।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, कल सांख्यिकी दिवस के मौके पर सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कई खास रिपोर्टें जारी की और इन रिपोर्टों में भारत की जो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार है, इसके बारे में हमें एक तस्वीर जानने को मिली। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है और भारत इस दिशा में कैसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो संकेतक हैं उनमें भारत कैसे अच्छी प्रगति दिखा रहा है। तो आज हम मंत्रालय की जो ये रिपोर्टें जारी हुई हैं उनका एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे मेहमान आज हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: तो सिंह साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इन तीन मुद्दों पर हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने इन रिपोर्टों में फोकस किया है कि उसमें तेज गति से हमें प्रगति देखने को मिली है। शुरुआत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं सभी देशों के लिए और कैसे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है।
3: देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जब 2015 में एक सतत विकास लक्ष्य तय किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करी जाएगी, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और सभी के लिए समृद्ध एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें भारत ने बड़ी पहल की और इसे 2026 तक में ही उसने एक तैयार किया खाका और 277 मानकों पर आधारित 17 SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया और इसमें जो बनाया गया वो सबसे पहला है गरीबी समाप्त करना, यानी सभी तरह की गरीबी को हर जगह से उन्मूलन इसका किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत मेहनत से पूरे देश में इसको लागू किया है और

0: जितनी भी उसकी जरूरतें होती हैं बेसिक, सबसे पहला उद्देश्य था भारत सरकार का कि उनको कैसे हम दिया जाए, दूसरा था कि उनको स्वास्थ्य कैसे उनका सही किया जाए, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण उनका सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था, तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन सबको प्राइमरी मिल रही थी लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से कैसे आगे बढ़ा जाए, ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल जाएं तो वो फिर आगे की शिक्षा ले सकें, सबसे बड़ी जरूरत थी इस देश में लैंगिक समानता,
1: बिल्कुल
0: जेंडर इक्वलिटी, जैसे इस रिपोर्ट में भी आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को कहा जाता था कि कुशल महिला मजदूर हमारे देश में कम उपलब्ध होती हैं वनस्पति पुरुषों के, लेकिन इस रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के जो स्किलफुलनेस है वो बढ़ी है, यानी उनकी निपुणता प्रवीणता काम करने की दक्षता में सुधार हुआ है, और यह एक बड़ा संकेत है इस देश के लिए कि जिस वर्ग को हम हाशिए पर रखकर चलते थे महिलाओं को, उस वर्ग की भागीदारी इस देश के विकास में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा स्वच्छता क्लीनलीनेस, जिसके लिए प्रधानमंत्री जब से सत्ता में आए हैं 2014 से जब से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है, तब से इस देश में स्वच्छता का एक कल्चर डेवलप हुआ है जो लोगों को यह बता रहा है कि स्वच्छता से क्या क्या मिल सकता है, और हमें लगता है कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचाने में यह सरकार सफल रही है।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में इन पैमानों को रखा जाता है, और इसमें आंकड़ा भी सामने आया है जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन है यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा है वो 2016 में करीब 22% आबादी तक थी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं इन रिपोर्टों में उनके मुताबिक ये कवरेज 65% से भी ज्यादा आबादी तक पहुंचा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे ये संभव हुआ है और इसको कैसे मापा जाता है।
0: सतत विकास लक्ष्य का जो हमारे 17 तय किए गए हैं, ये 100% कवरेज होनी चाहिए, हर व्यक्ति को ये सुविधा मिलनी चाहिए, खास तौर से जिन्हें जरूरत है, और ये 22% से अगर 65% हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती थी, जिन एक सीमित दायरे में ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त सरकारी सबको मिला करती थी, जिनका दायरा बढ़ा है, जैसे आयुष्मान को अगर हम ले लें, आयुष्मान की सुविधा जो भी उसके योग्य होगा दक्ष होगा उसके लिए होगा वो सबको उपलब्ध होने लगी है, इसका सीधा सा मतलब है कि सबके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सबके बच्चे को प्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सुविधा देने की सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिले। इस देश में IIM, IITs और इस तरह के विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इसमें कैसे समाहित किया जाएगा, सरकार ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई है, IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की संख्या बढ़ी है, तो इससे क्या है कि ये दायरा बढ़ने का मूल वजह ये है। दूसरा है कि खाद्यान्न की सुविधा, आप सोचिए इस देश में 2/3 आबादी को यानी करीब करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से मिलता है, इसका यह मतलब है कि जिन्हें जरूरत होगी मुफ्त अनाज की उन्हें मुफ्त भी दिया जा रहा है, यानी सरकार किसी को भी भुखमरी का शिकार नहीं होने देगी। एक हमारे 17 जो गोल्स हैं इसमें एक गोल भुखमरी का भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा इस देश में, जो हंगर इंडेक्स में हम कभी बहुत पीछे हुआ करते थे उसी को देखते हुआ ये बात लाई गई कि भला हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी इतनी मजबूत है, सब कुछ सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति को उपलब्ध है, तो इससे क्या हुआ कि दायरा बढ़ गया।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि विस्तार से बताया कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की स्थिति में और मूलभूत सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उससे निश्चित तौर पर जो विकास के मानक हैं या संकेतक हैं वो ऊपर आए हैं। इसी तरह से आपने लैंगिक समानता की बात की तो अपने श्रोताओं के साथ मैं ये आंकड़ा जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि 2015 से 17 के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 896 थी, जिसे हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं, यानी जन्म के वक्त लैंगिक जो अनुपात होता है, जन्म के वक्त लैंगिक अनुपात बढ़कर 2022 से 24 में ये हो गया 918 और आगे आने वाले समय में इसके और तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में कौशल की हमने चर्चा की उसमें महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में जो 48% थी वो 2025 में बढ़कर 51% हुई। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ रोजगार पर। हमने इन रिपोर्ट्स में ये देखा कि जो पहले बेरोजगारी दर 6% थी वो घटकर अब 3.1% के आसपास आ गई है। तो बेरोजगारी दर के घटने के किन कारणों को आप देखते हैं और कैसे ये संभव हो रहा है?
0: देखिए, बेरोजगारी का घटना इस देश में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही है। सरकार जो सोच रही है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल है। सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को कैसे रोजी और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार के मायने सिर्फ सरकारी

0: नौकरी नहीं, पहले तो इस धारणा से बाहर आना होगा लोगों को। और इस देश में सरकारी और गैर सरकारी के अलावा रोजी रोजगार छोटे उद्यमों को भी सरकार ने इस श्रेणी में रखा। छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मान लीजिए किसी के यहाँ 5, 7, 6, 5 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, इससे भी कम लोग काम करने वाले थे, तो पहले इनका नाम दर्ज नहीं होता था ईपीएफ में। सरकार ने कहा कि आखिर कैसे इसको आंकड़ा कैसे जुटाया जाए, किस मानक पर माना जाए कि ये लोग नौकरी इनको मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। एम्प्लॉयमेंट मिलने का जो मानक माना गया कि जिनका पीएफ कटता होगा यानी प्रोविडेंट फंड कटता होगा, भविष्य निधि में जिनकी कटौती होती होगी, उन्हें मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी दे दी गई। अब होता यह था कि सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी देने में प्रॉब्लम एक आती थी, पीएफ कटवाने के चक्कर में वो उद्यमी डरता था कि किसी नए आदमी को नौकरी दे दें हम और उसका पीएफ कटने लगेगा तो सरकारी ढेर सारे हमारे पर नियम कानून लाद दिए जाएंगे और वो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, प्लस जितना पीएफ कटता है उतना और हमें तनख्वाह वेतन देना पड़ेगा। सरकार ने एक नई योजना लागू की कि नहीं, जो भी आपके पास जितने दिन भी और जितने लोग भी काम करते हैं, कम से कम हो ज्यादा से ज्यादा हो, तनख्वाह कितनी देते हैं या आप तय करेंगे, न्यूनतम तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए या न्यूनतम तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, उसमें से जितनी आप पीएफ कटेगा उतना सरकार आपको एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में, यानी उस उद्यमी के, यानी ताकि आपको अतिरिक्त बोझ न पड़े। इससे क्या हुआ कि हर उद्यमी इस बात के लिए खुश हो गया और अपने यहाँ जो भी लोगों को नौकरी पे रखता उनका पीएफ कटने लगा, तो ऐसे में संख्या रोजगार की बढ़ी। और वो जो डेटा दिख रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि रोजगार बढ़ा है।
1: बिल्कुल,
0: रोजगार बढ़ने की वजह और भी है कि आप देखें कि भाई पीएफ तो नहीं कटता। आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, इस गोल में एक चीज दिया गया है ब्लू इकोनॉमी को लेकर कि जल के नीचे की कैसे संरक्षित किया जाएगा, उसमें इन लोगों ने क्या किया कि भाई ब्लू इकोनॉमी हमारे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमें उसमें रोजी रोजगार इस गति से बढ़ा है कि मछुआरों की जिंदगी में सुधार आया है, लोगों के जेब में पैसे जाने लगे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और खेतिहर लोगों के खासों से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है।
1: बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया। और एक और बड़ा रोचक तथ्य यहाँ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति जो नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आदि ऊर्जाओं को शामिल करते हैं, उसमें खपत जो थी वो 64 वाट थी प्रति व्यक्ति, वो बढ़कर अब 193 वाट पहुंच गई है। यानी अब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हर व्यक्ति जो 2014-15 में जिस गति से करता था उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। आप कैसे देखते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम रुख कर रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए और विकास के लिए बहुत अहम है?
0: देखिए, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है ना नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो वो ऊर्जा जो तेल यानी पेट्रोलियम, कोयला या ताप विद्युत गृह से नहीं आती थी, वो इन्होंने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइडल यानी पानी से, जिनमें इस तरह की ऊर्जा की खपत तेजी से इसलिए बढ़ी है कि अब उसकी बड़ी वजह है क्योंकि इसका जनरेशन शुरू हुआ पहले। भाई पहले ऊर्जा होगी तो खपत होगी ना, हमारे यहाँ सप्लाई पहले बढ़ाई गई। सप्लाई बढ़ाने का मतलब कि सरकार की योजना यह है कि हर घर की छत पर बिजली पैदा होनी चाहिए, हर किसान के खेत में बिजली पैदा होनी चाहिए, यानी सौर ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। जितने भी पंपिंग सेट लगेंगे, जितने भी ट्यूबवेल लगेंगे किसानों के खेतों में, हर ट्यूबवेल के ऊपर वो योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना के तहत यह है कि किसान के खेत में जो उसका पंप चलेगा वो सौर ऊर्जा से चलेगा या पवन चक्की से चलेगा। तो इसका मतलब है कि देश में लाखों की संख्या में कुसुम योजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेत में अपने ही खेत से पैदा हुई ऊर्जा, यानी जो ऊपर की धूप है, धूप से पैदा हुई ऊर्जा से खेत की सिंचाई हो रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, बाकी उसके काम हो रहे हैं। इसी तरह से हर घर में जो खपत होती है ऊर्जा की, अपनी छत पर आदमी लगा लेता है पैनल, सौर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल, और सोलर पैनल से बिजली आ रही है। बिजली से अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी बिजली खर्चा होती है उसके अलावा जो फालतू यानी सरप्लस जो बिजली पैदा होती है वो चली जाती है सरकार के नेटवर्क में, यानी बिजली कंपनी की ओर चली जाती है, यानी वो क्रेडिट हो जाती है उसके अकाउंट में, जब उसकी जरूरत होती है तब उसका वो खर्च कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यानी बिजली की खपत भी करता है और उस बिजली को लोगों को बेचता भी है। ऐसे में खपत बढ़ती आज स्थिति यह हो जाएगी एक दिन आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमारे हर छत पर ऊर्जा पैदा हो रही है, सौर ऊर्जा पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हमारे पास सौर ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी दहन की, जो हमारे अभी ताप विद्युत गृह और हाइडल से पैदा।
1: बिल्कुल, तो कई और संकेतक हैं, जैसे पर्यावरण के मामले में भी कई सकारात्मक नतीजे आए हैं। और एक खास विषय जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी किस तेजी से बढ़ी है, इसका उदाहरण हमें इससे मिलता है कि करीब 32 करोड़ लोगों के पास 2015 में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन था, जो बढ़कर अब पहुंच

0: का है 98 करोड़।
1: इसके सीधा सीधा मतलब है, आप समझिए, पूरी दुनिया में जिस गति से डिजिटल ताकत बढ़ी है, लोगों में ताकत आई है, इस देश की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं आधारभूत अगर मजबूती आई है तो वो आई है डिजिटल क्रांति से। इस देश में प्रधानमंत्री की ये योजना जो डिजिटल क्रांति आई है, चाहे वो जीवन के किसी भी हिस्से में आप देख लें, भाई आप डीबीटी कैसे होता है, डीबीटी बिना फोन के तो हो नहीं सकता, फोन में तब होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, सरकार ने इतना सस्ता, दुनिया में इतना सस्ती डिजिटल सुविधा और कहीं नहीं है,
0: और पूरा इकोसिस्टम बना है,
1: पूरा इकोसिस्टम बन गया, हमारे जीवन का हर हिस्सा इसी से प्रभावित हो रहा है, हम बैंक का संचालन यहीं से कर रहे हैं, हम अपने घर के बैठे हुए यहीं पर सब कुछ देख रहे हैं, कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है इस देश में। आप समझिए, हमारे एक जमाना था रूरल इंडिया, सबसे गरीबी का मानक क्या था मालूम है, कनेक्टिविटी का अभाव आदमी को गरीब बना देता था, कनेक्टिविटी के चलते आज छोटा सा छोटा उद्यम करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा कमा रहा है, सिर्फ कनेक्टिविटी अगर उसकी आज कट कर दी जाए तो हमें लगता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। सरकार ने यह इतनी बड़ी ताकत लोगों के हाथ में पहुंचा दी है, डिजिटल ताकत से हमारे देश के गरीबों का सबसे बड़ा उद्धार हुआ।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सिंह साहब कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने इन पूरी रिपोर्टों पर अपना विश्लेषण रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMJI अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह

0: को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शीर्ष 48 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दे दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे से 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमरीका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today had a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Sevatirth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of the people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBGRAMJI Act 2025, will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VBGRAMJI Act 2025, Union Minister for Rural Development, Shivraj Singh Chauhan, said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged the students

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता बहाल रखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश गैर कानूनी घोषित किए। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया। ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने उभरते खतरों से निपटने के लिए 298 अरब पाउंड की रक्षा निवेश योजना प्रस्तुत की। और फीफा विश्व कप में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से न्यूयॉर्क में होगा, जबकि आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से टेक्सस में होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमरीका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमरीका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमरीकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ट्रंप बनाम बारबरा मामले में न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आदेश अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। यह फैसला दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की किसी प्रमुख नीतिगत पहल को रोका है। इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने उनकी टैरिफ नीतियों के महत्वपूर्ण हिस्सों को अमान्य घोषित किया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन गतिशीलता मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी दान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान ने पिछले 5 महीनों में अफगानिस्तान में 10 से अधिक हवाई हमले किए हैं। इनमें 800 से अधिक अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की मीडिया एजेंसी के अनुसार ये हमले खोस्त, पक्तिया, पक्तिका, कुनार, काबुल, नंगरहार और कंधार सहित कई प्रांतों पर किए गए। इन हमलों में आवासीय मकान, अस्पताल, स्कूल और विश्वविद्यालय सहित नागरिक अवसंरचनाओं को भी निशाना बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में
3: संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 लोग घायल हुए। अफगान मिशन ने कहा कि ये हमले अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। मिशन ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर नजर रखने और अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से तुरंत संघर्ष रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की। यूरोपीय संघ ने भी संयम बरतने और तनाव कम करने का आग्रह किया। उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हर हाल में पालन होना चाहिए। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश की ड्रोन युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ी रक्षा योजना की शुरुआत की है। श्री स्टारमर ने बताया कि यह रक्षा निवेश योजना अगले चार वर्षों में 298 अरब पाउंड की होगी। इसमें 15 अरब पाउंड की अतिरिक्त धनराशि भी शामिल है। श्री स्टारमर ने कहा कि यह योजना सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमरीका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता बहाल रखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश गैर कानूनी घोषित किए। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया। ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उभरते खतरों से निपटने के लिए 298 अरब पाउंड की रक्षा निवेश योजना प्रस्तुत की और फीफा विश्व कप में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से न्यूयॉर्क में होगा, जबकि आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से टेक्सस में होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Kiran Jha with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi hold telephonic conversation with Iranian President Masoud Pezeshkian, reiterates the need for continued efforts to ensure lasting peace in the region. U.S. Supreme Court upholds birthright citizenship, rules President Trump's execution, executive order unlawful. Afghanistan accuses Pakistan of violating its territorial integrity, urges the UN and international community to closely monitor the situation. Britain unveils £298 billion defence investment plan to counter evolving threats. And in the FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the case of Trump's B. Barbara, the court ruled 6-3 that the executive order is unlawful and concluded that the order violates the 14th Amendment to the U.S. Constitution. President Donald Trump signed the executive order on his first day back in the office as part of a broader immigration crackdown. The order sought to deny automatic U.S. citizenship to children born in the United States to parents who were either in the country illegally or present on temporary visas. Afghanistan's permanent mission to the United Nations has strongly condemned the Pakistani airstrikes in the provinces of Paktika and Kunar, which killed and injured several Afghan civilians, including women and children. The mission called on Pakistan to immediately halt all military strikes on Afghan territory and ensure full accountability for alleged violations of international law. The statement followed confirmation by Taliban deputy spokesman Abdullah Fitrat that Pakistani airstrikes carried out on the night of June 28 killed 36 civilians and injured 163 others. The Afghan mission said that the strikes constituted a serious violation of Afghanistan's territorial integrity and were inconsistent with international law, including the Charter of the United Nations. It urged the United Nations and the wider international community to closely monitor the situation, reaffirm the principles of the UN Charter, and insist on respect for Afghanistan's sovereignty and territorial integrity. Britain's caretaker Prime Minister Keir Starmer has unveiled a major defence spending plan aimed at significantly strengthening the country's drone warfare capabilities, positioning it as a key part of the leadership legacy. Mr. Starmer announced that the defence investment plan will be backed by £298 billion over the next 4 years.
5: Now, we are already delivering the biggest sustained increase in defence spending since the 1980s, £270 billion over the spending review period. And I can announce today that under the Defence Investment Plan, we are increasing this by a further £15 billion, setting a new record of spending almost £300 billion over the next 4 years to back our armed forces and strengthen our national security.
4: Mr. Starmer said that the plan puts the security of the British people first by transforming the armed forces and ensuring they have the funding and equipment needed to defend the nation against evolving threats. UK Chancellor Rachel Reeves said the increased defence spending would raise investment to its highest level since the Cold War.
6: Last year, I made the decision in the national interest to reprioritise aid spending towards defence and achieve the biggest uplift in defence spending since the end of the Cold War. That was the right choice because the world has changed. National security is economic security. Today, we uplift defence spending further. An additional £15 billion worth of funding by again reprioritising spending across government.
4: This is Akashwari. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. In South Africa, thousands of demonstrators gathered across the country today to protest illegal immigration following a deadline set by some activist groups demanding that undocumented migrants leave the country. The groups argue that illegal immigration contributes to unemployment by allowing employers to hire migrants at lower wages. They also claim it is linked to rising crime and other social challenges. Meanwhile, President Cyril Ramaphosa met with representatives of some of the groups and urged them to ensure that the demonstrations remained peaceful. Union Home Minister Amit Shah today launched the Foreign Contribution Regulation Act 2.0 portal and the Electronic Overseas Citizen of Indian Card in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah said both initiatives will improve citizens' services and address the difficulties faced by those receiving donations through the FCRA portal. Home Minister informed that the new system will bring great convenience to more than 50 lakh OCI card holders. He added that after 20 years, when a new passport is issued, there will be no need to reissue the OCI booklet and the card holder's registration number will remain unique. India has reaffirmed its strong support for the Financial Action Task Force, FATF, describing it as an indispensable pillar of the global fight against terrorism, financing and the money laundering. The statement came after Pakistan criticized the task force following the neighboring country's placement on the organization's grey list for increasing monitoring. Speaking at a UN event on the sidelines of the Counter-Terrorism Week, India's permanent representatives to the UN, P. Harish, said attempts to question FATF's credibility reflect the fear of scrutiny rather than genuine concerns. India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries for safe and legal mobility. Speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi,

हम भी आप लोगों के प्यार को बिल्कुल सलाम करते हैं। आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम कुल चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आप ही की दोस्त रितिका। तो दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत गाया अलका याग्निक ने, और फिल्म जो कि 1993 में गुमराह फिल्म, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत।

भाई प्यार तो जितना मिले उतना ही कम है, आप भी मानते हैं ना, तो आप भी हमें यूं ही इतना प्यार देते रहिएगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी जो गीत आपने सुना, सलमान खान और रेवती पर फिल्माया ये गीत, इस गीत को आवाज दी चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, और ये फिल्म 1991 में आई लव। आनंद मिलिंद का संगीत और इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

भाई हमें पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और यूं ही अपना प्यार हमें देते रहिए। और हर श्रृंगार में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे फिर से मुलाकात होगी गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम में। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सांवरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow, on the eve of the nationwide rollout of VBG Ramji Act 2025. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged a student to become agent of the social transformation, saying education should go beyond securing employment and to strengthen society, culture, tradition and economic progress. The Indian Railways will launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44-kilometre Mansi-Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational

0: रफू चक्कर मूवी का आपने ये गीत सुना। शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज, गुलशन बावरा का लिखा ये गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, जिसको आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम आपका अपना मनपसंद, गीत मेरे मनमीत।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: किया क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: I like you.
1: हाँ, अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा।
3: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
4: ऐसा क्या?
1: हाँ,

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 पहली जुलाई से प्रभावी नहीं रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। दो दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस साल के सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047 आर्टिफिशियल

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। समय हुआ है 12:11 और 20 सेकंड। मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमेशा की तरह शुरुआत कुछ अल्फाज के साथ। ये रात मुझसे बहुत कुछ कहती है, ये रात मुझसे बहुत कुछ कहती है। तुम्हारी यादों की लहर आंखों में बहती है। दुनिया सो जाती है चैन की नींद, मगर एक तन्हाई ही है जो रात भर मेरे संग जागती रहती है।

मैं चाहती हूँ ये साथ रहे तेरा मेरा सदियों तक यूं ही, जैसे चांद का नाता है तारों से हर कहीं। बदल जाए चाहिए पूरी कायनात मगर तू रहे मेरे पास और मैं तेरे पास यूं ही।

मैंने चुरा लिया है मन कुछ इस अदा के साथ, मैंने चुरा लिया है मन कुछ इस अदा के साथ कि अब धड़कनें चलती हैं बस तुम्हारी सदा के साथ।

धूप तेज हो तो मैं आंचल बन जाऊंगी, धूप तेज हो तो मैं आंचल बन जाऊंगी, तुम्हारी हर राह में मैं छाया बनकर साथ निभाऊंगी।

समय हुआ है 12:32 और 45 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा। अंजू के साथ आप हैं इस खूबसूरत सफर पर।

चेहरा तुम्हारा जैसे कोई ताजा गजल हो, चेहरा तुम्हारा जैसे कोई ताजा गजल हो, तुम्हें देखकर हर पल नया तराना गुनगुनाता हूं मैं।

मेरे अरमानों को पंख तुम्हारी मोहब्बत ने दिए हैं, मेरे अरमानों को पंख तुम्हारी मोहब्बत ने दिए हैं। देख लो, अब जहां भी जाओगे मुझे अपने साथ पाओगे।

नजरों ने मेरी ऐसा जादू देखा है हरसो, नजरों ने मेरी ऐसा जादू देखा है हरसो कि जिधर देखूं उधर बस तुम्हारी ही सूरत दिखाई देती है।

दोस्तों, एक घंटे का इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अगले घंटे यानी 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रूकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित की हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रूपये से घटकर 8.50 रूपये हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12.50 रूपये से घटकर 7.50 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि उसका 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम अभी भी एक प्रयोग है, जिसका प्रभाव अगले वर्ष तक स्पष्ट हो जाएगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया खबरों में एथेनॉल आवंटन के बारे में तेल विपणन कंपनियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका संबंधी कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अटॉर्नी जनरल के बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। नॉर्वे ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के अगले दौर में जगह बना ली है। नॉर्वे के लिए एंटोनियो नूसा ने 39वें और एरलिंग हालंद ने 86वें मिनट में गोल किया और टीम को जीत दिलाई। इस तरह नॉर्वे राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में सफल रहा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi yesterday. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the PM stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. On the implementation, Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. The 29th National E-Governance Conference will be held in Jaipur from today. The two-day conference will take place at the Rajasthan International Centre and is being jointly organised by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Electronics and Information Technology and the Government of Rajasthan. The theme of this year's conference is Viksit Bharat 2047, AI-enabled, data-driven and secure digital governance. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma will inaugurate the event. An exhibition will also be inaugurated, while several digital governance initiatives and innovations of the Rajasthan government will be launched. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi this evening on a three-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with PM Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Our correspondent reports that India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity, and shared values of freedom, democracy, and respect for the rule of law. Centre has revised the export levy rates on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight starting today. According to a notification issued by the Ministry of Finance, under the revised rates, the export levy on petrol has been fixed at 4 rupees per litre. The levy on diesel will now be 8 rupees and 50 paise, down from 14 rupees. The ministry stated that the special additional excise duty on exports of aviation turbine fuel will be reduced from 12 rupees and 50 paise to 7 rupees and 50 paise. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. Union Minister for Development of the Northeast Region, Jyotiraditya Sindhya, has reviewed the evolving flood situation across the region following incessant rainfall. In a social media post, Mr. Sindhya said he took stock of the ground situation, including ongoing rescue, relief and restoration efforts, and assured every possible government support to safeguard lives and restore normalcy at the earliest. He also spoke to Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang, and Manipur Chief Minister Yamnam Khemchand Singh. In the FIFA World Cup, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, USA to advance to the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night. In another round of 32 matches, France will take on Sweden at 2:30 a.m. in

दोस्तों समय हुआ है 1:11 और 13 सेकंड। मैं हूँ अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूँ गीत सुहाने। इस घंटे भी आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत, तो रहिए मेरे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दुनिया भर की नजरों से छुपा कर रख लो मुझे, दुनिया भर की नजरों से छुपा कर रख लो मुझे, उम्र भर जीना है मुझे तेरी इन निगाहों के साए में।

तुम आए तो बहार आ गई इस सूने जिंदगी में, तुम आए तो बहार आ गई इस सूने जिंदगी में, अब तो मेरी हर सांस तेरी मोहब्बत से महकती है।

तुम्हारा मेरे जीवन में होना एक खूबसूरत शायरी सा लगता है। तुम्हारा मेरे जीवन में होना एक खूबसूरत शायरी सा लगता है। हर एक लम्हा जैसे मोहब्बत की कोई नज्म सी बुनता है।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और समय कह रहा है कि 1:28 और 10 सेकंड हुए हैं।

मोहब्बत का इजहार जरा हौले से करो, ये दुनिया सुन लेगी। मोहब्बत का इजहार जरा हौले से करो, ये दुनिया सुन लेगी। क्योंकि धड़कनों की सुरगोशी भी यहां खबर बन जाती है।

नजरें मिली तुमसे और होश खो बैठे हम, नजरें मिली तुमसे तो होश खो बैठे हम, न जाने कैसा ये जादू तुम्हारी इन आंखों ने कर दिया।

तेरी निगाहों की इनायत कुछ इस तरह हुई हम पर, तेरी निगाहों की इनायत कुछ इस तरह हुई हम पर कि हम खुद को ही भूल गए तेरी मोहब्बत के सफर पर।

तुम्हें देखना जैसे खुदा की इबादत करना है, तुम्हें देखना जैसे खुदा की इबादत करना है। न जाने कितनी शिद्दत से उसने तुम्हें तराशा होगा।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025

2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रूकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजकेशन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजकेशन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान के अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित की हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रूपये से घटकर 8 रूपये 50 पैसे हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12 रूपये 50 पैसे से घटाकर 7 रूपये 50 पैसे कर दिया गया है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी विजया मेहता ने अपने थिएटर ग्रुप रंगायन के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई भाषा, नया नजरिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक दृष्टिकोण प्रदान किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। आयरलैंड से 2020 श्रृंखला 2-0 से हारने के बाद भारतीय टीम इस श्रृंखला में उतरेगी। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने अमरीका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 से फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने कल वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

इबादत की तरह पाक है ये एहसास इश्क, इबादत की तरह पाक है ये एहसास इश्क। अगर ये खता है तो ये खता बार बार हम करेंगे।

किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, लेकिन जब ये मोहब्बत किसी से पहली बार हो तब क्या होता है? तब होता यह है कि ना नींद आंखों में ठहरती है, ना दिल को कहीं सुकून मिलता है। ना नींद आंखों में ठहरती है, ना दिल को कहीं सुकून मिलता है, जब पहली बार मोहब्बत का यह हसीन फूल दिन में खिलता है।

प्यार का पहला एहसास जैसे रूह में उतरी कोई ताजी हवा है। प्यार का पहला एहसास जैसे रूह में उतरी कोई ताजी हवा है। ये दिल समझ ही नहीं पाया कि ये कोई जादू है या फिर कोई दर्द-ए-शिफा है।

कभी देखा ना था खुद को इस आईने में, खुद को खोते हुए। कभी देखा ना था खुद को इस तरह आईने में खोए हुए। ये पहले इश्क का असर है कि हम जाग तो रहे हैं लेकिन सोए हुए हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देशभर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणाली पूरी तरह तैयार है और अभी चल रहे कार्य बिना किसी रिकॉर्ड के जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत और थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार बारिश से इस क्षेत्र में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्वास सहित जमीनी स्थिति का जायजा लिया और लोगों के जीवन की रक्षा तथा सामान्य स्थिति जल्द बहाल करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने अमरीका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: रोका कई बार मैंने मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। मुमकिन नहीं कि सब कुछ मिल जाए इस एक जिंदगी में, मुमकिन नहीं कि सब कुछ मिल जाए इस एक जिंदगी में, जितनी चाहते हैं उसमें तो कई जिंदगियां लगेंगी, पर चाहत यही है और आगे भी रहेगी कि पूरी हो सभी चाहते इसी एक जिंदगी में। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अलचित के साथ।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे? नहीं,

मैंने एक ख्वाब सा देखा। रहते हैं उदास बिना किसी बात के, रहते हैं उदास बिना किसी बात के, उदासी का ये मंजर मेरी समझ में नहीं आया। उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, वरना किसी ने मुझे कहां सताया। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में, बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में, सभी अरमान पूरे यहाँ कौन ही कर पाता है। हो गए जो पूरे सारे अरमान, हो गए जो पूरे सारे अरमान, तो फिर जिंदगी जिंदगी जीने का मजा कहाँ ही आता है। 3:30 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। तीन बजकर 36 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

कर लीजिए अपने शब्दों में अब कुछ कटौती ही सही, कर लीजिए अपने शब्दों में अब कुछ कटौती ही सही, ना जाने कब रिश्तों में कटौती शुरू हो जाए। पता नहीं आजकल किसी के मिजाज का कुछ, पता नहीं आजकल किसी के मिजाज का कुछ, कौन कब किस बात का बुरा मान जाए।

जीना है जिंदगी सुकून से तो दिल में अरमान थोड़े कम ही रखिए, लेना है सफर का मजा तो साथ में सामान थोड़ा कम ही रखिए। कब तक उठाते रहोगे ख्वाहिशों के बोझ को अपने कंधों पर तुम, कब तक उठाते रहोगे ख्वाहिशों के बोझ को अपने कंधों पर तुम, ख्वाहिशों को छोड़कर सुकून को अपने साथ में रखिए। बीत ही जाएगी ये जिंदगी बड़े आराम से तुम्हारी, बीत ही जाएगी ये जिंदगी बड़े आराम से तुम्हारी, बस अपने साथ फिजूल के बवाल थोड़े कम ही रखिए। 3:47 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देशभर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणाली पूरी तरह तैयार है और अभी चल रहे कार्य बिना किसी रूकावट के जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के

0: राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपने अगले परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत और थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार बारिश से क्षेत्र में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्वास सहित जमीनी स्थिति का जायजा लिया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा विश्व कप में अमरीका के न्यूजर्सी में फ्रांस और स्वीडन के बीच राउंड ऑफ 32 का मुकाबला चल रहा है। फ्रांस ने 2 गोल की बढ़त बना ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi yesterday. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the PM stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBG Ramji Act 2025, will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. The 29th National E-Governance Conference will be held in Jaipur from today. The two-day conference will take place at the Rajasthan International Center and is being jointly organized by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Electronics and Information Technology, and the Government of Rajasthan. The theme of this year's conference is Viksit Bharat 2047, AI-enabled, data-driven and secure digital governance. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma will inaugurate the event. A major change in Uttarakhand's madrasa education system will come into effect from today. Under the new arrangement, the Uttarakhand Madrasa Education Board will be abolished and all minority educational institutions in the state will be governed under a new framework. From July 1st, the Uttarakhand Madrasa Education Board, the Uttarakhand Madrasa Education Board Act 2016, and the Uttarakhand Non-Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Rules 2019 will cease to have effect. The state government has introduced a new system under the Uttarakhand Minority Educational Institutions Act. Under the new framework, the Uttarakhand State Minority Education Authority will be responsible for granting recognition to minority educational institutions, monitoring their functioning and ensuring academic quality. The new system will cover educational institutions of the Muslim, Sikh, Jain, Christian, Buddhist and Parsi communities. Uttar Pradesh government has decided to hold a separate teacher eligibility test for in-service teachers. The decision was taken at a review meeting for UPTET 2026. During the meeting, Chief Minister Yogi Adityanath directed the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission to conduct a separate TET for teachers already in service. He said, since the Supreme Court has made the test compulsory, serving teachers should also be given an equal opportunity for employment and promotion, ensuring no teacher faces difficulties merely due to a lack of opportunity. The TET exam is scheduled to take place from Thursday until 4th of July. Government has extended full customs duty exemption on critical petrochemical products in view of ongoing conflict in West Asia till 15th July 2026. Centre had earlier provided a full customs duty exemption till yesterday as a temporary and targeted relief due to consequent disruptions in global supply chains. The exemptions was provided to ensure sufficient availability of petrochemicals in the domestic market as Indian petroleum companies had been asked to concentrate on the production of LPG during this period. The list of products covered remains the same as notified earlier. Southwest monsoon is likely to advance over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab during the next 2 days. India Meteorological Department said that similar weather conditions are expected to prevail over some parts of the North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, the remaining parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh and Daman and Diu and some parts of Rajasthan during the same period. And that is the end of this news bulletin.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 4:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, इंतजार तो हमें उस सुबह का रहता है जिसके साथ आज का दिन कुछ नया होगा। तो आइए आने वाली सुबह के इस

दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। धीरे धीरे देखना खुद को सुलझा हुआ ही पाओगे। 4:18 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मेरा साया साथ होगा। उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, पर नीचे अपनी जमीन का भी ख्याल रखना। आना ही पड़ेगा एक दिन तुमको जमीन पर नीचे, आना ही पड़ेगा एक दिन तुमको जमीन पर नीचे, सारी जिंदगी तो कोई हवा में नहीं रहता। 4:25 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में मुझे तुम मिल गए हमदम। चार बजकर 36 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पे बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें, हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें, पर हम रोना उसी का रोते हैं जो मिला नहीं। और निकल कर देखा जब घर से बाहर, और निकल कर देखा जब घर से बाहर, तब पता चला जो हमें मिला है वो बहुतों को आज तक मिला ही नहीं। 4:43 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

सिर्फ दिन रात चलने से हासिल नहीं होती मंजिलें, सिर्फ दिन रात चलने से हासिल नहीं होती मंजिलें, सही रास्ता भी चुनना पड़ता है पाने को अपनी मंजिलें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देशभर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी।

0: ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली है और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत तथा थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन, दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा, झारखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश की आशंका है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व फुटबॉल कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह बना ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MNREGA 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi today on a 3-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with PM Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian yesterday. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has discussed strengthening India-Greece economic ties by enhancing cooperation in financial services, fintech, digital payments and emerging technologies. He met Greek Minister of Economy and Finance Kyriakos Pierakakis in Greece. The two sides also explored

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। सिर्फ सोकर उठने को जागना नहीं कहते।

कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ फिर से एक बार आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम लता मंगेशकर जी की आवाज में गाए हुए एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

कमाने के चक्कर में कहीं इतना भी व्यस्त ना हो जाएं, कमाने के चक्कर में कहीं इतना भी व्यस्त ना हो जाएं कि कमाई तो हो जाए पर कहीं उसमें पूरी जिंदगी ना खर्च हो जाए।

फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। कभी यूं ही बिना वजह मुस्कुरा लिया कीजिए, कभी यूं ही बिना वजह मुस्कुरा लिया कीजिए। जरूरी नहीं कि हर बार मुस्कुराने के लिए लखनऊ ही जाया जाए। मुस्कुराइए जनाब, आप जहां पर भी हों। 5:30 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।